0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का हमारे आज की इस सभा में। और उठिए, जागिए, क्योंकि प्रातःकाल की बेरा है, एक नए दिन की शुरुआत है, आरंभ है, नई ऊर्जाओं का संचार होगा, नई संभावनाएं आज खुलेंगी। आज कितने आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तो जल्दी से जागिए, उठिए और इस प्यारी सी सुबह का स्वागत कीजिए और तुरंत ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ और जुड़ जाइए हमारे कार्यक्रमों के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्ते लखनऊ, और आज नमस्ते लखनऊ आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, नंदिनी मिश्रा। स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदिनी का। फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले हैं, तो 6 बजे का समय होता है देश दुनिया की खबर जानने का, यानी समाचारों का। तो आइए आपको सुनाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण

और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्ते लखनऊ, और आज नमस्ते लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं नंदिनी मिश्रा। जैसे कि आप जानते ही हैं, अपने नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ जो कि जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले बात कृषि की, तो कृषि चर्चा में आज की चर्चा का विषय है रामदाना की उन्नत खेती।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में जहां मोटे अनाज में आप रामदाना की खेती करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्सी का तालाब लखनऊ से सहायक निदेशक डॉक्टर शुभकरण सिंह चौहान साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि रामदाना उत्पादन जहाँ करना चाहते हैं किसान भाई इस बार खरीफ में, तो क्या सलाह है?
2: किसान भाइयों, रामदाना जो हमारे प्रदेश में खरीफ ऋतु में उगाई जाती है बहुत महत्वपूर्ण फसल है। मोटे अनाजों की जो हम बात करते हैं उसी विधा में ये भी रामदाना जो हमारा एक सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, और इसमें जो बड़ी विशेषता है इसमें 12 से 15% प्रोटीन पाई जाती है और 6 से 7% इसमें वसा पाया जाता है, और इसमें शरीर में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाने के लिए भी इसमें जो है गुण होता है जिसको एक एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं,
1: यानी एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर भी है।
2: इम्यूनिटी बूस्टर भी है, औषधि बहुत सारे गुण हैं। इसको जलपान के रूप में लेते हैं। हमारे प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं इस खेती की। पहली बात तो इस फसल की सबसे बड़ी विशेषता है कि कम पानी वाले क्षेत्रों में भी ये फसल हो जाती है। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें बीज बहुत कम लगता है। तीसरी बहुत विशेषता है कि कम लागत की फसल है, और चौथी विशेषता है कि इसमें जो है उत्पादन भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि तमाम सारी फसलें हैं जिनका बीज बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है या बहुत महंगा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है किसान भाइयों, हम लोगों के लिए ये शायद नई फसल के रूप में जाना जा रहा है।
1: खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है इसकी?
2: कड़ी जमीन ना हो, बलुई दोमट जमीन है जिसका पीएच सामान्य है और भुरभुरी है, तो उसमें

0: हमारी रामदाना की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। और इसमें जो है खेती की तैयारी में बहुत कोई खास विधा नहीं है, इसमें हमें दो तीन जो है जुताइयां मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद में खेत को जो है पाटा लगा करके चौरस और बराबर समतल कर लेना चाहिए।
1: अब ये बताएं कि प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी रामदाना की?
0: देखिए हमारे पास बहुत सारी प्रजातियां इसमें नहीं है, लेकिन जो भी प्रजातियां हैं जैसे GA1 है एक प्रजाति, GA1 प्रजाति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका पौधा जो है वो करीब करीब 180 से 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर के आसपास होता है और उसके बाद में ये करीब 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। 9-10 क्विंटल प्रति एकड़ के जो है हिसाब से इसका अच्छा उत्पादन भी है। और GA2 भी बहुत अच्छी प्रजाति है और ये लगभग 98 से 100 दिन में जो है ये पक करके तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, करीब करीब जो है 23 से 25 क्विंटल के बीच में इसका उत्पादन है।

0: बाद में ये करीब 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, 9-10 क्विंटल प्रति एकड़ के जो है हिसाब से इसका अच्छा उत्पादन भी है। और GA2 भी बहुत अच्छी प्रजाति है और ये लगभग 98 से 100 दिन में जो है ये पक करके तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, करीब करीब जो है 23 से 25 क्विंटल के बीच में इसका उत्पादन है। और तीसरी प्रजाति हमारी अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा प्रजाति भी पोषक तत्वों के दृष्टि से जो है ये प्रजाति बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें करीब करीब 16% जो है प्रोटीन होती है, 7% जो है फैट होता है और इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट के बहुत सारे अच्छे अवयव मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से तीन प्रजातियां हमारी काफी प्रचलित हैं और इन प्रजातियों को अगर किसान भाई हमारे अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो है अच्छी उपज होगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। बीज की मात्रा की जहां तक बात करते हैं तो रामदाना में 1 किलोग्राम बीज जो है प्रति हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल के लिए बहुत पर्याप्त होता है।
1: यानी एकड़ की बात करें तो 400 ग्राम
0: 400 ग्राम प्रति एकड़ में जो है बीज पर्याप्त होता है। चाहिए
1: डॉक्टर साहब, फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे हो?
0: करीब करीब 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर की जरूरत प्रति हेक्टेयर,
1: यानी ढाई एकड़ में
0: जो है। लेकिन इसको अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो अगर हम 1 क्विंटल यूरिया, मतलब 2 बैग यूरिया, 2 बैग DAP और लगभग 1 बैग हम इसमें डाल देते हैं पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। लेकिन इसमें डालने की जो विधा है, अंतिम जुताई के समय जो है हम इसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड से या छिड़कावा मेथड से DAP,
1: या अगर लाइनों में बुआई करते हैं तो पहले खाद और पीछे बीज,
0: पीछे बीज जो है। अगर हम मतलब छिड़कावा विधि से बुआई करते हैं तो खेत की अंतिम जुताई के समय हम पूरी DAP और पूरी म्यूरेट ऑफ पोटास को ब्रॉडकास्टिंग और 1 बैग यूरिया जो है इनको हम पूरे एक हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव कर देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे रामदाना की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके राज्य ग्राम्य विकास संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 87 65 95 74 09, 8765957409, 87 65 95 74 09 मेरा मोबाइल नंबर है।
1: डॉक्टर शुभकरण सिंह चौहान साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और रामदाना की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रामदाना की उन्नत खेती, इस विषय पर आज श्रोताओं आपने जानकारी प्राप्त की। कृषि चर्चा कार्यक्रम में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शुभकरण सिंह और आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ अब हमारी आज की कृषि चर्चा यहीं संपन्न हुई और श्रोताओं अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम सभी जानते हैं जीवन में सकारात्मक विचार होना बहुत आवश्यक है जीवन को खुशहाल और उन्नत बनाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ सकारात्मक विचार सुविचार हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन अपने कार्यक्रमों में। तो आज का जो सुविचार है वो है समय का सदुपयोग। स्वर एवं मालिक डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का।
3: समय शाश्वत है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। यह जिसे जहाँ पहुँचाना चाहता है उसी प्रकार की आधारभूमि बनाता है। नीर क्षीर में अंतर करने का हंस विवेक समय के पास रहता है। त्याग संस्कार और परोपकार समय की उर्वर भूमि में पनपता है। प्रतिकूलता को अनुकूलता की ओर मोड़ने की सामर्थ्य समय के पास है। बड़ी उड़ान भरने वाले रुकने का नाम नहीं लेते, पर उन्हें देखने वाले निराशा में डूबने लगते हैं। प्रयास सामान्य रहने पर समय नहीं रिझता, वह तो असंभव को संभव कर दिखाने वाले हीरों को तराशने में लगा रहता है। अभूतपूर्व कीर्तिमान रचने की अकूत शक्ति समय के पास है। नई राह बनाने में समय अद्भुत है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जो उपलब्धि हाथ नहीं लगती, समय उससे उत्कृष्ट देने के लिए विलंब करता है। सार्वभौमिक समय अग्नि परीक्षा लेता है। संघर्ष की आग में समय स्वर्ण की तरह तपाकर खड़ा बनाता है। एक के बाद एक परीक्षा लेने में समय की कोई तुलना नहीं है। बाधाओं से डरने वालों की चिंता समय नहीं करता, समय इतिहास बनाता है। वही विचार सार्थक बनता है जो अपने समय की वेदना को नया अर्थ देता है। जीवन से जूझते हुए आत्मीय के मंगल में भविष्य की विनती करते हुए कहा जाता है, पता नहीं वह शुभ समय कब आएगा। समय सभी की मंगल कामना सुनता है, वह मूल्यांकन करना जानता है। समय कभी नहीं दिखता, वो संसार की लीला से अलग है। परिश्रम करना मनुष्य के वश में है।

0: उसका फल देना समय के हाथ में है। वो प्रज्ञा की पहचान करता है, समय धैर्य को प्रतिभा बनाता है। हर अमूल्य पल अनूठे अवसर लाता है। समय का दूसरा नाम काल है, जो जीवन का नियंत्रक है। समय संयोग वियोग है। दीपक का तेल चुक जाने पर रूई की बाती जलकर मंद मंद प्रकाश बिखेर रही थी। एक गृहस्थ ने पूछा, तुम जीवन भर आलोक बिखेर कर दूसरों का पथ प्रदर्शन करते रहे, संसार के साथ इतनी भलाई करने पर भी तुम्हारा दुखद अंत देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। बुझते दीपक ने अंतिम आभा बिखेरते हुए कहा, भौतिक जगत में जिसका जन्म होता है उसका अंत भी होता है। हर क्षण का उत्कृष्ट नियोजन करके जीवन की मूल्यवान घड़ियों को व्यर्थ होने से बचाना है। रचनाकार अपने समय की उपज होता है। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। समय क्षमा नहीं करता, बीता समय फिर नहीं लौटता। बदलते समय को पकड़ने में प्रयोग का संसार मिलता है। समय की प्रतीक्षा सहनशीलता बढ़ाती है। रात बीतने के बाद सूर्योदय निश्चित है। दुख के बाद सुख आता है। समय अभाव पाने वाले को महापुरुष बनाता है। हर चीज के होने का समय होता है। परिश्रम समय के इतिहास में नया अध्याय जोड़ता है। विपरीत समय रहने पर अच्छाई से दूरी हानि कराती है। कभी कभी अभिशाप वरदान सिद्ध हो जाता है। भरतीहर का हार खूंटी निकल गई तो हरिश्चंद की सत्य परीक्षा गंगा तट पर हुई। समय के आगे किसी की नहीं चलती। दुख हर अंग में आंखें बनाता है। सफलता का उपाय समय जानता है। असाधारण उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए सर्वोच्च साधना अनिवार्य है। संकल्प विकल्प तोड़ता है। समय दान सबसे बड़ा दान है। यह धैर्य का सूत्र है। आशा देकर किसी का समय गंवाना पाप है। किसी के पास समय नहीं रहता, समय निकालना पड़ता है। समय चुनौतियों को कसौटी पर परखता है। असमर्थता कुछ भी सुनने को विवश करती है। उचित समय पर किया गया थोड़ा कार्य बड़ा उपकारक सिद्ध होता है। असमय में बड़ा उपकार निष्फल चला जाता है। असाधारण लोग विपत्ति को लौटाकर नई राह बनाते हैं। अपने जीवित रहते वे अभूतपूर्व कार्यों से अमर हो जाते हैं। समय का अपना विधान है। मर्यादा न तोड़ने वाले को समय बचाता है, खेलने का अवसर और क्षेत्र देता है। समय के हंसने पर निर्बल हरा देते हैं। समय अखंड है। पल पल का सदुपयोग परम सत्य है। समय विधान में बड़े बड़े गिरते उठते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जीवन का सर्वोच्च कवच समय की सच्चाई है। समय सकारात्मक संस्कार का शाश्वत मूल्य है। यह सत्य का साक्षात्कार करता है। लक्ष्य संधान की सार्थक भूमिका ही समय का मूल मंत्र है। समय आने पर जीवन अपना मार्ग पा जाता है।
1: आज का सुविचार था समय का सदुपयोग, स्वर एवं आलेख डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे। और इसी के साथ अब नमस्ते लखनऊ में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं अपनी भक्ति धारा की आज की आराधना की।

ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था मनुष्य के मन को संबल ही नहीं देखती, बल्कि उसे सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में सदैव सहायक होती है।

भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा से बड़ा कोई धन नहीं है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति पूरी श्रद्धा और लगन के साथ, बिना किसी लोभ के, बिना किसी वस्तु को मांगे, निस्वार्थ भाव से अगर करेंगे तो ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे।

जो भक्ति में डूब जाता है उसे दुनिया का, जीवन में किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की ईश्वर के साथ निकटता हो जाती है और मन और चित्त प्रसन्न हो जाता है।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें, इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 210। आज इसके अंतर्गत आपको सुनवाने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें शत्रुघ्न और निषाद राज के साथ भरत का श्री राम के आश्रम के समीप पहुँचने का वर्णन आता है।
1: भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहाँ केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आज आपने सुना श्री रामचरित मानस का भाग 210। इसी के साथ श्री रामचरित मानस से गान संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, इस समय कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और आज नमस्ते लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं नंदिनी मिश्रा। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छ भारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन्, येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः, येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः, आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः। लखनऊनगरे 15 छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुत कार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ 6 जनानां विरुद्धं FIR इति पञ्जीकृतवन्तः, तेषु 4 च निगडिताः। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य अग्निशामक विभागस्य विद्युत् विभागस्य च 4 अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन्। लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः BNS तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिकखण्डेषु 6 अभियुक्तानां अन्याञ्च उत्तरदायि जनानां विरुद्धं FIR पञ्जीकृतम् अस्ति, यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत्। तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माणस्य विषये 16,000-2,000 वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत्, परञ्च मासद्वय

0: अभ्यन्तरे एव आदेशः निरस्तः अभवत्। एतदतिरिच्य राज्यसर्वकारेण अग्निघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशोऽपि प्रदत्तः। घटनायाः अन्वेषणार्थं SIT इति विशेष अन्वेषणदलस्य निर्माणमपि कृतमस्ति। दलं सप्तदिनेषु एव स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति। ह्यः अपराह्णे दुःखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं 15 जनाः मृताः, तेषु अधिकतया 16 25 वर्षीयाः छात्राः आसन्। अलीगंजनगरस्य पुरैनिया क्षेत्रे एकस्य आपणस्योपरि कार्यरते एनिमेशन कोचिंग केन्द्रे अग्निप्रकोपः अभवत्, येन छात्रेषु आतंकः उत्पन्नः। नवव्रणिताः छात्राः किंग्स जॉर्ज चिकित्सकीयं विश्वविद्यालये KGMU लखनऊ इत्यत्र प्रवेशिताः च सन्ति। अधिकांशाः श्वासावरोधेन मृताः। भारतस्य हज समित्या हज 27,000 कृते तीर्थयात्रिभ्यः आवेदनपत्राणि आमन्त्रितम्। नीत्याः विमोचनं कुर्वन् अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः ह्यः अवदत् यत् यात्रिणः भारतीय हज समिति पोर्टल तथा हज सुविधा एप माध्यमेन च आवेदनपत्राणि ऑनलाइन माध्यमेन प्रेषयितुं शक्यन्ते, येन प्रक्रिया अधिका सरला सुलभा च भविष्यति। FIH प्रो लीग लंदन राउंड इत्यस्य उद्घाटन क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम अद्य पाकिस्तान दलम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में अब बारी है कि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जानकारियां प्राप्त कर ले। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे पारंपरिक मीठे विकल्प की बात करेंगे जो पुराने समय में हमारी थाली का हिस्सा होता था, लेकिन आधुनिक जीवन शैली और सफेद चीनी की चमक में कहीं खो गया है, और वो है देसी खांड। जी हाँ, वही खांड जिसे कभी हमारी दादी नानी बड़ी सादगी से दूध, लड्डू या चाय में डाल दिया करती थी। उस वक्त ना तो कोई प्रोसेसिंग की मशीनें थी, ना ही मिठास के पीछे कोई आर्टिफिशियल दौड़, सिर्फ सादगी थी और स्वास्थ्य के प्रति गहरा अनुभव। देसी खांड गुड़ से बनाई जाती है और इसे बनाने की प्रक्रिया चीनी से बहुत अलग होती है, जबकि चीनी में सल्फर, ब्लीचिंग और रिफाइनिंग की एक लंबी प्रक्रिया होती है। वहीं खांड को बिना किसी रसायन के प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है। यही वजह है कि खांड में पोषक तत्व बचे रहते हैं और इसका रंग भी हल्का भूरा या मलाई जैसा होता है। इसका स्वाद न तो तेज होता है और न ही गले में जलन पैदा करता है। ये स्वाद में नरम और शरीर में मुलायम असर डालने वाली मिठास है। आयुर्वेद में देसी खांड को शीत वीर्य यानी शरीर को शीतलता देने वाला माना गया है। गर्मियों में जब शरीर अंदर से तप रहा होता है, तब खांड का सेवन शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। ये पाचन को ठीक करता है, पेट में जलन और एसिडिटी से राहत देता है, और साथ ही साथ ये ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। छोटे बच्चों को दूध के साथ जब खांड दी जाती है तो ये उन्हें तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और उनकी हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होती है। आज जब बाजार में मिठाइयों में नकली मिठास और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जैसे तत्व डाले जा रहे हैं, तब खांड एक सरल भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरती है। देसी खांड में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिज तत्व भी होते हैं जो सफेद चीनी में लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि खांड को स्मार्ट शुगर भी कहा जाने लगा है। खास बात यह है कि ये चीनी की तरह रक्त में शुगर लेवल को अचानक नहीं बढ़ाती, बल्कि धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए ये उन लोगों के लिए भी बेहद उपयोगी हो सकती है जो डायबिटीज की पूर्व स्थिति या थकान की समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, इसका ये मतलब कतई नहीं कि खांड को बेहिसाब लिया जाए। मध्यम मात्रा में सोच समझ कर किया गया उपयोग ही सबसे फायदेमंद होता है। एक समय था जब खांड को भोजन के साथ एक औषधि के रूप में

देखा जाता था। सर्दियों में खांड, अदरक और देसी घी मिलाकर दी जाती थी, जिससे गले की खराश, जुकाम और बलगम से राहत मिलती थी। महिलाओं के लिए भी खांड विशेष रूप से उपयोगी मानी गई है, क्योंकि ये हार्मोनल संतुलन में मदद करती है और मासिक धर्म के समय शरीर को आवश्यक ऊर्जा देती है। यही नहीं, खांड को कई आयुर्वेदिक चूर्णों और औषधियों में भी मिलाया जाता है, ताकि उनका स्वाद बेहतर हो और शरीर में उनका असर धीरे धीरे हो। आज जब हम स्वास्थ्य के प्रति सजग हो रहे हैं, डाइट पर ध्यान दे रहे हैं और हर चीज के लिए एक नेचुरल विकल्प ढूंढ रहे हैं, तब देसी खांड एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। ये न केवल शरीर के लिए हल्की होती है, बल्कि मानसिक रूप से भी संतोष देती है। उसका स्वाद ऐसा है जो जुड़ाव पैदा करता है, जैसे किसी पुराने गीत की मीठी सी धुन। श्रोताओं, ये याद रखना बेहद जरूरी है कि चीनी का अत्यधिक सेवन शरीर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मिठास को पूरी तरह त्याग देना भी आवश्यक नहीं। जब आप सही विकल्प चुनते हैं, तो स्वाद और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बना सकते हैं। देसी खांड वही संतुलन है, परंपरा से आया, विज्ञान ने स्वीकार किया और आज की जरूरत के अनुसार पूरी तरह से फिट। तो अगली बार जब आप चाय में चीनी डालने लगे, तो एक बार जरूर सोचिए, क्यों ना आज खांड का स्वाद लिया जाए, क्यों ना अपने बच्चों को वही मिठास दी जाए जो हमें कभी हमारी दादी या नानी ने दी थी। देसी खांड सिर्फ एक मीठा पदार्थ ही नहीं, ये हमारी विरासत का हिस्सा है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक और देसी तत्व के साथ, जो स्वाद, पोषण और संस्कृति तीनों को एक साथ समेटे हों। तब तक स्वस्थ रहिए, परंपरा से जुड़िए और मिठास को संतुलन के साथ अपनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में अब समय हो गया है कि हम आपको आज अपनी विभिन्न सभाओं में जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उनके बारे में जानकारी दे दें। आज रात 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत सुनिए का कार्यक्रम खेल दर्पण, ये आकाशवाणी अल्मोड़ा की पेशकश होगा। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनिए का काव्य पाठ, कवि होंगे शिव ओम अंबर। जिले की हलचल में सुबह 9:15 पर आज सुनिएगा महोबा और सिद्धार्थ नगर जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आज आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा। इसमें समात फरमाइएगा मोहर्रम पर विशेष माह ए शहादत मोहर्रम, तहरीर फायजा जुबैर की, सदाकार फरीदुल्ला खां और फायजा जुबैर। इसके अलावा कलाम शायर के तहत सुनिएगा कमर हसन नकवी से उनका कलाम। श्रोताओ, आज है मंगलवार और आज हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम आज सुबह। समय रहेगा सुबह 7:30 पर। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में आज का विषय है नया भारत, स्किल्ड भारत। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता। इसमें अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंस लेनिन से की गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा भारतीय कानून में विधवा स्त्रियों हेतु प्रदत्त अधिकार और कानून। आपसे बातचीत करेंगी ममता उपाध्याय। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आज सुनिएगा जसबीर सिंह से की गई भेंटवार्ता। धान की फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम युवा तरंग। इसमें आज रमेश चंद्र तिवारी की वार्ता सुनिएगा, धरोहर सरस्वती नदी। नई उड़ान कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकेंगे शाम 5:45 पर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सुनील कुमार सिंह की वार्ता सुनिएगा, आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण सहभागिता। किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी होगा शाम 6:50 पर। इसमें डॉक्टर परमेंद्र सिंह सिक्की की भेंट वार्ता सुनिएगा, खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक। आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा सितार वादन, कलाकार होंगे उस्ताद हलीफ जफर खां। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर आज सुनिएगा भूपेंद्र सिंह की गायी गजलें। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाथुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा रंजना अग्रहरी के गाय।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा सितार वादन। कलाकार होंगे उस्ताद हलीफ जफर खां। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर आज सुनिएगा भूपेंद्र सिंह की गायी गजलें। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा रंजना अग्रहरी के गाय अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज की विविधता।

दोस्तों, आज की विविधा, आज हम एक ऐसी विषय पर बात करेंगे अपने आज इसके कार्यक्रम में, जो केवल एक नारा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों, मेहनत और भविष्य का संकल्प है। नया भारत, स्किल्ड भारत। कहते हैं कि किसी भी देश की असली ताकत उसके प्राकृतिक संसाधनों में नहीं बल्कि उसके लोगों की प्रतिभा और कौशल में होती है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे पास ऊर्जा है, उत्साह है, सपने हैं और कुछ कर गुजरने का जुनून है। लेकिन केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता, उन सपनों को साकार करने के लिए कौशल यानी स्किल भी आवश्यक होता है। एक समय था जब नौकरी पाने के लिए केवल डिग्री को ही सफलता की कुंजी माना जाता था, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज कंपनियां केवल ये नहीं देखती कि आपने कितनी पढ़ाई की है, बल्कि ये भी देखती हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है और आप समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं।

आज का भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा भारत जो केवल डिग्रीधारी नहीं बल्कि कुशल युवाओं का भारत बनना चाहता है, एक ऐसा भारत जो नौकरी खोजने वालों का नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वालों का भारत बनना चाहता है। कल्पना कीजिए उस किसान की जो आधुनिक तकनीकों को सीखकर अपनी उपज को दोगुना कर देता है, उस महिला की जो सिलाई कढ़ाई के कौशल से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल देती है, उस युवा की जिसने किसी छोटे से गांव में रहते हुए डिजिटल स्किल सीखी और आज दुनिया भर के ग्राहकों के लिए काम कर रहा है। ये सब केवल कहानियां नहीं है, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कौशल के बल पर अपनी पहचान बना रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जो युवा इन क्षेत्रों में कौशल हासिल कर रहे हैं, वे भविष्य की दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल हम सबको स्वयं से पूछना होगा, क्या हम केवल अवसरों का इंतजार कर रहे हैं या खुद को उन अवसरों के योग्य भी बना रहे हैं? याद रखिए, समय कभी किसी

इंतज़ार नहीं करता। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी वही रुक जाती है। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है निरंतर सीखते रहना, नई तकनीकों को अपनाना, नए कौशल विकसित करना और खुद को बदलते समय के अनुरूप ढालना। नया भारत हमें यही संदेश देता है कि हर युवा अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचाने, चाहे वो तकनीकी कौशल हो, संवाद कौशल हो, नेतृत्व क्षमता हो या फिर कोई व्यावसायिक हुनर। हर कौशल की अपनी शक्ति है। जब देश का युवा कुशल होगा तो उद्यम मजबूत होंगे, उद्योग मजबूत होंगे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत विश्व मंच पर और अधिक प्रभावशाली बनेगा। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने कौशल को निखारा, उन्होंने परिस्थितियों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन कौशल वो शक्ति है जो चुनौतियों को अवसरों में बदल देती है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम दूसरों के आगे निकले, जरूरत इस बात की है कि हम कल के अपने स्वरूप से बेहतर बने, हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन खुद को थोड़ा और सक्षम बनाएं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रोकेंगे। हम अपने बच्चों को केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल का महत्व भी सिखाएंगे। हम अपने युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि नया भारत केवल इमारतों, साइकिलों और तकनीकों से नहीं बनेगा। नया भारत बनेगा उन हाथों से जो कुशल हैं, उन दिमागों से जो रचनात्मक हैं और उन दिलों से जो देश के विकास का सपना देखते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर युवा आत्मविश्वास से कह सके, मेरे पास केवल सपना नहीं उसे पूरा करने का कौशल भी है। इसी विश्वास, इसी संकल्प और इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। नया भारत, स्किल्ड भारत, यही है आत्मनिर्भर, सक्षम और विकसित भारत की पहचान। इसी के साथ दोस्तों, आज की विविधा में बस इतना ही। किसी दिन और आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का।

0: पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफा

0: बरकरार रहता है। जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरा छोड़कर लखनऊ आए और सीधे घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली और बाद में केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस इमारत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, तुषाक कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई मंत्रियों ने लखनऊ के इस अग्निकांड को दुख

0: बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक तथा उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।
1: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे CBG प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य और व्यापार, पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर,

0: कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में अब बारी है आपके मनपसंद कार्यक्रम आज सुबह की। आज की ये पेशकश आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, आपकी दोस्त नंदिनी मिश्रा।
1: जी हाँ, और साथ में मैं भी हूँ लवी सिन्हा। तो स्वीकार करें हमारा
0: नमस्कार। लवी, आज मंगलवार है और सबको, हम लोगों को इंतजार रहता है शनिवार का, मंगलवार का, कि अपने श्रोताओं से मुलाकात हो, हमारी भेंट हो और उनसे हम बातचीत कर सके अपने रेडियो सेट के माध्यम से।
1: जी हाँ बिल्कुल। और साथ ही देखिए, हमें लगता है कि बहुत सारे लोग जो आज सुबह कार्यक्रम सुनते हैं उनको तो पता ही रहता है कि ये कार्यक्रम सुबह 7:30 से 8 के बीच में होता है, और बहुत सारी जो सूचनाओं के साथ, बहुत सारे दिवस के साथ में हम गीत संगीत मनोरंजन और जानकारी लेते और देते रहते हैं।
0: बिल्कुल। और इसी बात पे एक बहुत प्यारी सी बात।
1: हाँ जी।
0: अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर दुनिया जीत लेता है।
1: जी हाँ बिल्कुल। और ये तो शायद पहले से ही, यानी कि बहुत ही पहले से हम इन चीज़ों को, उनके बारे में हमें हमेशा बताया जाता है, लेकिन फिर भी हम कई बार छोटी छोटी बातों में ही खुद पर अहंकार कर लेते हैं। पर कहते हैं अहंकार तो भगवान को भी प्रिय नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले यदि आप खुद को सबल बनाना चाहते हैं, अपने आप को सशक्त और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो अहंकार का त्याग करना
0: बिल्कुल, और जीवन में विनम्रता, नम्रता को लाना बहुत आवश्यक है। अगर हम नम्र होंगे, विनम्र बनेंगे, तो निसंदेह हमारा कद उतना अधिक ऊंचा होता जाएगा।
1: वाह क्या बात कही।
0: तो इसी बात पे एक बहुत प्यारा सा गीत लीजिए, सुनवाइए अपने श्रोताओं को।

0: और लवी इस गाने में कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, यानी जो हमने बात की थी ना कि शुरुआत में विनम्रता सहजता व्यक्ति में होना अति आवश्यक है, कोमलता का भाव अगर मनुष्य में होगा तो असल मनुष्य तो वही होगा, है ना?
1: जी हाँ बिल्कुल, और इसी सहज भाव को हमने पहचाना गायक मुकेश की आवाज़ में इस गीत से, और फिल्म का नाम भी है पहचान, गीतकार नीरज और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
0: क्या बात है।
1: और इसी के साथ ही अगर हम अपने आगे की तमाम जो भी अपनी रणनीति है अपने जीवन में, बहुत सारे नियम हैं, बहुत से कानून हैं, उन सब पे अगर हम चलने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें क्या बनाना है, क्या करना है, कुछ एक खाका तैयार करते हैं, तो उस खाके के साथ ही साथ हम अपने पिछले अध्याय को भी ज़रूर देखते हैं कि हमने जो पिछले अपने कुछ टाइम टेबल बनाई थी, पिछले कुछ अपने समय को निर्धारित किया था कि हमने उस समय के मुताबिक क्या क्या चीज़ें पूरी की हैं, क्या नहीं पूरी की हैं, क्या छूट गई हैं और क्या अधूरी रह गई हैं, तो उसको आगे हम उसको कवर कर लेते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हम अपने जीवन में करते रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: तो ऐसा ही कुछ अभी हम अपने सभी श्रोताओं को यहाँ पर सुनवाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के मिस्टर नवीन भटनागर से पिछले 12 वर्ष में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र में हुए उत्कृष्ट कार्यों पर उनके विचार।

मेरा नाम नवीन भटनागर है। मैं सिंचाई जल संसाधन विभाग में, मैं 34 साल से विभाग में नौकरी मेरी पूरी हो गई है। सरकार की उन्नति और विकास से पूरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और भारत सरकार को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इन 12 वर्षों में सरकार ने बहुत सी योजनाएं क्रियान्वित की, जिनमें जो हमारा सिंचाई जल संसाधन विभाग है उसके जो जिम्मेदारियाँ हैं हमारे किसानों के

0: थी, उसमें हमारे विभाग ने अपनी पूरी कार्यक्षमता के साथ भाग लेते हुए इन योजनाओं को सफल बनाने का प्रयास किया है। और विगत 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के लिए के हित में, किसानों के हित में अनेकों कार्य किए गए हैं, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा नहरों से किसानों को पानी दिया जाता है, जो हमारे तटबंध हैं उनकी सुरक्षा की जाती है, बाढ़ से जो भी प्रदेश में बहुत ज़्यादा विभीषिका होती है उसको बचाने के लिए तटबंधों को मजबूत किया जाता है। विगत 12 वर्षों में भारत सरकार और सिंचाई विभाग द्वारा सरयू नहर परियोजना जैसी जो राष्ट्रीय परियोजना है उसको पूर्ण करा करके अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती जैसे अनेकों जनपदों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह बाण सागर नहर परियोजना जो पिछले 20 सालों से लंबित पड़ी थी उसको पूरा करा करके बाण सागर परियोजना से किसानों को लाभ किया गया। इसी तरह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक 200 किलोमीटर लंबी नहर बना करके केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी परियोजना है, इसमें भारत सरकार द्वारा इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान है और इसमें उत्तर प्रदेश का काफी बड़ा हिस्सा जो बुंदेलखंड में, जहाँ पानी की बहुत विशाल समस्या है, इस परियोजना के पूरा हो जाने से बुंदेलखंड में किसानों को पानी की समस्या नहीं होगी, साथ ही साथ बुंदेलखंड में पीने के पानी की जो समस्या है वो भी इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से काफी हद तक उसमें सुलझाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कुछ 12 वर्षों में काफी युवाओं को नौकरियां दी गई। हमारे सिंचाई विभाग में विगत 12 वर्षों में काफी बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और क्लर्क स्टाफ में काफी भर्तियां की गई हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिला है। इसके साथ ही भारत सरकार और वर्तमान में प्रदेश सरकार बहुत बड़ा अच्छा काम है, वो ये है कि सभी तरीके की, चाहे किसी भी जिले में हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो बच्चे हो, सभी सुरक्षित हैं। अब रात बिरात कहीं भी आप जा सकते हैं और सरकार निरंतर प्रदेश के निवासियों के लिए नई नई योजनाएं बना करके उनको लाभान्वित कर रही है। और मैं सिंचाई विभाग की ओर से भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जो है उनको लगातार विभाग को सहयोग प्रदान करते हैं और विभाग में अंतर उन्नति करता है।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इरिगेशन डिपार्टमेंट के श्री नवीन भटनागर से पिछले 12 वर्ष में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र में हुए उत्कृष्ट कार्यों पर उनके विचार। और लवी, जब बात कृषि की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हम मौसम का भी जिक्र करेंगे ही करेंगे।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बात आपने कृषि की कही और कृषि के साथ में जुड़ा होता है कि हम अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं और तैयारी करके खेत को तैयार करते हैं, बीज भी फैलाने को बिल्कुल तैयार होते हैं, बस इंतज़ार होता है कि अगर बूंदाबांदी बारिश की शुरुआत हो जाए तो उससे ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है और इसके बाद फिर बीज जो होते हैं अंकुरित होने की उनकी जल्दी शुरुआत होती है।
1: तो इसी बात पर मोहम्मद दानिश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
2: जी बिल्कुल,
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपसे जानते हैं कि मौसम का हाल क्या होने वाला है।
3: दानिश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि आज कैसा रहने वाला है लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम।
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मौसम की बात करें तो जैसा कि गर्मी का सबब पिछले 4-5 दिनों से बना हुआ है, ये सिलसिला आज कल परसों अगले 2-3 दिन इसी तरीके से रहेगा, गर्मी का सबब है। कहीं ना कहीं लखनऊ में एक लू का भी अलर्ट दिया गया है जो तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर की तरफ है। और अगर हम बात करें बारिश की तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट यूपी में हल्की फुल्की बारिश चल रही है वो ऐसा रहेगा, बाकी 3-4 दिन के बाद थोड़ा मौसम में बदलाव आएगा और फिर उसके बाद थोड़ा जो गर्मी है उससे थोड़ी हल्की हल्की निजात मिलने की संभावना।
3: तो क्या मॉनसून की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है?
4: देखिए फिलहाल अभी 3-4 दिन तक तो ऐसा नहीं, उसके बाद एक मानसून फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो उसके बाद हम ये

चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और कार्यक्रम में आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।

0: ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म चौधरी का चांद से। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार थे रवि और गीतकार थे शकील बदायूनी।
1: श्रोताओं, अब आइए आपको सुनवाते हैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका कॉलेज के सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार गंगवार जी के केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनहित योजनाओं पर उनके विचार।
2: नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार गंगवार है। मैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। विगत 12 वर्षों में भारत की सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व में जो जनहित के विशाल एवं व्यापक प्रेरणादायी कार्य किए गए हैं, उनके माध्यम से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास और उत्थान की दिशा में अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सरकार और समाज को बड़ी सहायता मिली है। यदि हम अब तक के 12 वर्ष के भारत सरकार के कार्यों को अलग अलग संदर्भों में विभाजित कर उनका मूल्यांकन करें तो हम ये पाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के ही परिणाम स्वरूप जो भी योजनाएं या संकल्पनाएं विचार करने के पश्चात क्रियान्वित की गई हैं, संपूर्ण समाज के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुई हैं। जैसे सबसे पहले जनधन योजना के अनुसार सभी वर्गों के निचले से निचले स्तर के व्यक्तियों के बैंकों में खाते खुलवाया जाना, मुद्रा योजना का संचालन किया जाना जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को अपनी धनराशि को अर्जित करके सुरक्षित रख करके एक आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक का स्वरूप प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके माध्यम से 5 लाख तक का निशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रत्येक वयस्क नागरिक को प्रदान करने की दिशा में व्यापक कार्य हुआ है। इसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से भी बालिकाओं की शिक्षा पुनर्वास एवं उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। बालकों के ही समान बालिकाओं को भी विकास के सक्षम और समान अवसर प्रदान किए गए हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम

0: पूरे राष्ट्र में अनेक अनेक क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा देते हुए उनके निरंतर प्रचार प्रसार के साथ साथ आयोजन की दिशा में भी सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। दिव्यांगजनों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जैसा व्यापक और परिवर्तनकारी कानून दिव्यांगजनों के अधिकारों की संरक्षण एवं सामाजिक पूर्ण भागीदारी के निर्वहन की दिशा में एक बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर साबित हुआ है, जो हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ साथ समाज में समान अवसर और सम्मान प्राप्त करने की दिशा में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। इसके साथ साथ संपूर्ण भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों को गांवों से जोड़ करके राजमार्गों तक ले जाने के लिए बड़ी जो है उल्लेखनीय कार्यवाहियां हुई हैं। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों को पक्के मकान प्रदान करके उनके सुरक्षित जीवन की दिशा में सरकार ने व्यापक भूमिका निभाई है। नल से जल की योजना के अंतर्गत गांव शहर सभी पिछड़े क्षेत्रों में स्वच्छ जल पहुंचाने की दिशा में भी सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार ने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिनके माध्यम से हमारे राष्ट्र की अस्मिता और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से ऊंचाइयों के शिखर पर विराजमान हुआ है। 12 वर्षों के शासनकाल में सभी संदर्भों में जहां देखा जाए पिछड़े अति पिछड़े दिव्यांगजन महिलाएं सभी नागरिकों को विकास के समुचित और समान अवसर प्रदान करके प्रधानमंत्री जी की व्यापक संकल्पना सबका साथ और सबका विकास के संदर्भ को मूर्त रूप देते हुए सबके लिए हितकर और लाभदायक बनाने का प्रयत्न किया गया है। ऐसे अनेक अनेक कार्य हैं जिनके माध्यम से हम इस सरकार की अच्छाइयों पर अगर प्रकाश डालें या पारदर्शी शासन व्यवस्था पर चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि राष्ट्र एक कुशल एक उत्तरदायी और एक जिम्मेदार शासन तंत्र के अधीन संचालित है और ऐसी उत्तरदायी और राष्ट्रहित ऐसी सरकार को 12 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका कॉलेज के सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार गंगवार जी के केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनहित योजनाओं पर उनके विचार।
2: तो लवी, बहुत अच्छी आपने ये सूचना दी, जानकारी हमारे श्रोताओं को सुनवाई। और जैसे कि हम जानते हैं अपने कार्यक्रम में इतिहास अवश्य बताते हैं अपने श्रोताओं के कि आज के दिन का क्या इतिहास है। तो आज 23 जून 2014 को गुजरात का रानी की वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व सचिवालय सूची में शामिल हुआ था।
1: जी हाँ, और इसी के साथ
2: धरोहर माना गया था।
1: इसी के साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम अपने टाइपराइटर की बात करें तो उसमें अमेरिकी कांग्रेस ने सरकारी मुद्रण कार्यालय की स्थापना की आज के दिन, और उसमें क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को उनके द्वारा टाइपराइटर नामक आविष्कार के लिए पेटेंट भी प्राप्त हुआ। और ऐसे ही देखिए, टाइपराइटर के बाद आ गया कीपैड और तमाम हमारे साथ
2: एडवांस होती गई। और इसके अलावा आज एक दिवस का भी जिक्र करना चाहेंगे, आज है विश्व ओलंपिक दिवस। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य खेलों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा लोगों को खेल भावना के प्रति जागरूक करना है।
1: जी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन यानी कि 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, जो कि शासन विकास और सार्वजनिक कल्याण में लोक सेवकों के योगदान, समर्पण और कड़ी मेहनत को मान्यता देने के लिए और विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करना और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देना है।

0: श्रोताओ, अभी जो आप ये गीत सुन रहे थे, इसे हमने लिया था फिल्म धुरंधर से। गायक कलाकार अरिजीत सिंह और अरमान खान, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत दिया था आदर्श विश्वकर्मा ने। और इसी के साथ श्रोताओ, अब हम आपको बताते चले कि आज शहर में क्या कुछ घटित हो रहा है या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उनके बारे में।
1: जी हाँ, बिल्कुल जानना ज़रूरी है ताकि हम ऐसी जगहों पर जहाँ पर रुचि रखते हैं वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आज बहुत ज़रूरी है ये जानना कि सेवा योजन निदेशालय की ओर से रोज़गार मेला राजकीय ITI अलीगंज में आयोजित किया जा रहा है और समय होगा 9:30 से।
0: इसके अलावा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से कार्यशाला में तैयार नाटक बूंद पानी की, उसका मंचन होगा अकादमी परिसर में ही, समय रहेगा 6:00 से।
1: जी, और साथ ही साथ यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं थिएटर में तो रंग यात्रा संस्था की नवीनतम नाट्य प्रस्तुति भूसा का मंचन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में आयोजित हो रहा है गोमती नगर में 7:00 से। चलिए भाई, सुबह हो गई और सुबह के कार्यक्रम भी हमारे चल रहे हैं और आज सुबह कार्यक्रम हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपका ब्रेकफास्ट का क्या इरादा है?
0: अब तो भूख लग रही है इतनी देर बोलने के बाद, जी, करने के बाद।
1: तो चलिए एक इंटरेस्टिंग सा आज का दिन जो मनाया जाता है वो भी बता दें। आज विश्व दलिया दिवस, राष्ट्रीय दलिया दिवस मनाते हैं और इस पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन के विषय में हम बात करने की बजाय अगर हम मीठी मीठी दलिया या नमकीन दलिया बनाकर खाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा और ये बहुत ही आरामदायक भोजन माना जा सकता है। बहुत ही नर्म होता है, मुलायम होता है, पेट भरने वाला दलिया सरल रूप में होता है और ये यहाँ तक कि मानव सभ्यता में अपनी जड़ें जमा चुका है और एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक दलिया दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करता है।
0: क्या बात है, दलिया की बड़ी गहरी जानकारी लेकर आए।
1: तो फिर हमारा इरादा हो चुका है कि दलिया को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और जब सुपाच्य भोजन हम खाएंगे, इस तरह का अच्छा गुणवत्तापूर्ण भोजन हम खाते हैं तो हमारा मन अच्छा रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा होगा मन वैसा।

0: ही होगा तन, तो हम सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मन भी खुश रहेगा, तन भी खुश रहेगा। और कहा भी गया है कि मनुष्य का सबसे प्रथम कर्तव्य है अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे प्रथम कर्तव्य है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और विशेष रूप से इस मौसम में, जब गर्मी का ये जो मौसम है, तो इसमें विशेष रूप से हमें सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
1: बढ़ती गर्मी से सावधान भी रहना चाहिए, और साथ ही साथ बढ़ती गर्मी में तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें, और अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें।
0: बिल्कुल, और टाटा बाय बाय कहें।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: तो इसी के साथ आज सुबह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा
1: और लवि सिन्हा को दीजिए आज के लिए इजाजत।
0: नमस्कार। आज सुबह कार्यक्रम श्रोताओं यही संपन्न हुआ, साथ ही संपन्न हुआ नमस्कार लखनऊ। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात सुनवाने के लिए, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
3: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
3: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा

0: सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे।

यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है।

0: दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड नियरली 25 करोड़ पीपल हैड मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन रीसेंट इयर्स, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ अ लार्ज न्यू मिडिल क्लास एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी।
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are

0: incident, four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेरे एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तस्किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत के पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीत मिली है।
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है।

0: नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65 पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा अवार्ड्स गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज़ किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनअत, अदविया, अदब व तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड्स अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड्स याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कुरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी ज़रई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मस्कुरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत करने और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमुई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी

0: पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी और सल्फर की खेप लाने वाले चार मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमुज़ को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा ज़रई ज़रूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने यह जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ्त समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहिमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुक्काम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस एलएनजी की प्रोसेसिंग के मकाम पर यह तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल जुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के एफआईएच हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मीशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम और सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोज़ा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों

को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आपको भेजनी है अपनी फरमाइश और हम आपको सुनवाएंगे आपके मनपसंद फिल्मी नकबे। आपको जिस ईमेल आईडी पे अपना मनपसंद गीत लिखकर भेजना है वो है aapkepatraapkemail@gmail.com। एक बार पुनः सुन ले, aapkepatraapkemail@gmail.com। बस फटाफट हमारे इस ईमेल आईडी पे अपनी मेल्स भेजिए और अपनी फरमाइश उसमें लिख भेजिए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं अपने श्रोताओं की फरमाइशों से। सबसे पहली फरमाइश हमारे पास आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमन दीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सतीश सुरीत रमेश साहू की, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य की, सारेमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी की। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है इज्जत हरियाणा से, हरियाणा के शहर झज्जर से ये फरमाइश आई है बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की। और फरमाइश आई है गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर की फरमाइश आई है। और एक मेल और जल्दी से पढ़ दें, ये है हमारे पास हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, शामिम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान की। आप सब सुनना चाहते हैं साधना सरगम और नितिन मुकेश की आवाज़ों में फिल्म खून भरी मांग का ये गीत।

और श्रोताओं, लगातार आपके मेल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। अगली फरमाइश हमारे पास आई है विजय पाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से, आपने अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है बीड़ शहर महाराष्ट्र से, नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा की ये फरमाइश हमारे पास आई है। और फरमाइश आई है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्नो बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की फरमाइश हमारे पास आई है। और फरमाइश आई है हमारे पास पाकिजर रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तशमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री की फरमाइश आई है। जामा मस्जिद रोड गोगांव से हाजी इसहाक लोरामी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी की फरमाइश हमारे पास आई है। और हमें मेल भेजा है ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया,

पुत्रवधू निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, आपने फरमाइश भेजी है। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म बॉबी का ये गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा के साथ। और बड़ी संख्या में आपके मेल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार।

पर हैं। और अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आई है ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप की फरमाइश हमारे पास आई है। और हमारे पास जो फरमाइश अगली आई है वो आई है आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कृपया एक बार में एक ही मेल भेजें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब्स बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, पलक, लुबना और यश मंसूरी की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है आदिल कुमार गुन्नौर की, आपने ये फरमाइश हमें भेजी है। कहाँ से भेजा है आपने अपना मेल, ये आपने अपना पता नहीं लिखा है। और हमारे पास फरमाइश आई है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम कुमार जी की फरमाइश आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे की फरमाइश आई है। और फरमाइश आई है हमारी सुमील पाठक जी की हमारे पास आई है अनारकली बाज़ार जगराओं से, आपने ये फरमाइश हमें भेजी है। इसके अतिरिक्त हमारे पास और फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाड़े, अर्चनाताई गोडाने, हिरामड शेंडे और प्रणव प्रसिद्धि ने फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग की। आप सब सुनना चाहते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म खानदान का ये गीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश। जिन श्रोताओं ने भेजी है उनके नाम आपको पहले सुना दें, फिर उसके बाद उनकी फरमाइश आपको सुनवाएंगे। ये फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान ने हमें मेल भेजा है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है ग्राम रजौरी ज़िला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और पूरा परिवार। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश भेजी है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनकी ये फरमाइश हमारे पास आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की फरमाइश आई है। और फरमाइश आई है हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी की फरमाइश आई है। अगला मेल आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शहना शर्मा और मैंडी शर्मा की फरमाइश हमारे पास आई है। और फरमाइश आई है हमारे पास कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, विजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर की फरमाइश आई है। आप सभी श्रोताओं से बहुत विनती है कि कृपया एक बार में एक ही मेल भेजा करें। ये मेल आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की ये फरमाइश आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है, ये भेजा है हमें जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्यारी गुड़िया वेदा सिंह की फरमाइश आई है। और जो फरमाइश हमारे पास आई है आप सब सुनना चाहते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म कामचोर से और गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: यमलेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। योग प्रशिक्षक शकिन गुप्ता, सुनीता कुशवाहा ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। योग सप्ताह के तहत 18 जून को विजय नगर पक्षी विहार, 19 जून को जैन तीर्थंकर मंदिर तथा 20 जून को आधारशिला वृद्धाश्रम एवं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर योग किया। योग शिविर में शामिल 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और आज विश्व में 170 से अधिक देशों में लोग योग अपना रहे हैं।
3: इस बार जो थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए, वो मंदिरों में भजन पूजन रामायण गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जब तक किए कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास नित्य करें, ताकि हम करेंगे वृद्ध जन तो हमारे बच्चे नाती पोते सब उसको देख करके करेंगे और चारों तरफ जो है एक निरोग का जो वातावरण है वो तो कायम होगा।
2: उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्ध जनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है और योग के माध्यम से बुजुर्ग न केवल निरोगी रह सकते हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से महोबा में नया जिला विकास प्रबंधक कार्यालय स्थापित कर दिया है। इससे अब जिले में कृषि व ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अभी तक हमीरपुर के जिला विकास कार्यालय की ओर से महोबा जिले में नाबार्ड की गतिविधियां संचालित होती थीं। महोबा की विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने यहां कार्यालय खोला है, ताकि बेहतर पहुंच, हितधारकों के साथ निकट समन्वय स्थापित हो सके। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर पुनीत कुमार ने बताया कि नाबार्ड पहले से ही महोबा में कई योजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, किसान समूह, वाटर सेड, विकास व आजीविका संवर्धन शामिल हैं। अब ऋण प्रवाह में सुधार होगा और जनपद के ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब तक मोरंग और गिट्टी के लिए पहचान रखने वाला महोबा जनपद जल्द ही जिरकोनियम जैसे बहुमूल्य खनिज के लिए भी जाना जाएगा। हरपालपुर और महोबकंड क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले जिरकोनियम भंडार की पुष्टि हुई है। इसके खनन का लाइसेंस बंगाल की माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को दिया गया है। जिरकोनियम का उपयोग दंत चिकित्सा, आभूषण निर्माण, रासायनिक उद्योगों और उच्च तापमान वाले संयंत्रों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस खनिज का भंडार मिला है। इससे महोबा को नई पहचान मिलेगी। इसके खनन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही खनन और उससे जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ेगा। महोबा देश के महत्वपूर्ण खनिज मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिरकोनियम उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश अब उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के बाद देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत महोबा जिले में प्याज लहसुन के आधुनिक भंडार गृह बनाए जाएंगे। इन्हें खास तौर पर बांस और टीन से तैयार किया जाएगा। यह सभी प्राकृतिक तरीके से बनेंगे। सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान देगी, ताकि पैदावार सुरक्षित रहे और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हो। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब 500 हेक्टेयर में प्याज और 200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। हर साल भंडारण न होने से 10-15% फसल बर्बाद हो जाती है। नए भंडार गृह बनाने से किसान अपनी उपज रोककर अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी देगी। योजना अंतर्गत कुल इकाई लागत का 50% या अधिकतम 30 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 13 साल बाद गोरखगिरी पहुंचे सीएम ने यहां रोपवे बनाने और इसे एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप मिसाइलों से पाकिस्तान और दुश्मन थर्रा रहा।

और इसी गीत के साथ श्रोताओं, अब आज का आपके मेल आपके गीत संपन्न करने की अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति, स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का।

0: और यहाँ के देसावरी पान को पहचान और बीड़ा के जरिए क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अर्जुन सहायक परियोजना, केन बेतवा लिंक और हर घर नल योजना का जिक्र किया, जिसने बुंदेलखंड की बहनों को पानी के संकट से मुक्ति दिलाई। महोबा जिले में शिक्षा और ज्ञान वर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सदर विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर एवं जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने संयुक्त रूप से राठ रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय में 5 स्मार्ट लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ किया।
1: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन श्रीवास्तव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार के 12 वर्ष सफल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान और जश्न मना रही है। इस अवसर पर भाजपा ने सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताया है। इस क्रम में भाजपा देश भर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित कर रही है। सरकार की इन बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए पार्टी द्वारा 5 विशेष बुकलेट भी जारी की गयी है। पार्टी का संकल्प है कि इन नीतियों के आधार बनाकर साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विकास खंड परिसर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह कार्यक्रम में पहुँचे, जहाँ पर खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी ने सभी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद व विधायक ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया, साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों में साझा की।
3: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी विकास खंडों पे केंद्र सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और एक स्वास्थ्य शिविर 14 जून से 16 जून तक भी लगाया गया।
2: जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित हिंदू भवन में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर 55 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित हिंदू संगठन के लोग व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना भी की। जनपद सिद्धार्थनगर की थाना सोरतगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है कि अपराध व अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिषेक महाजन के नेतृत्व में जिले की पुलिस व सहयोगी पुलिस टीम सक्रिय है। सोरतगढ़ थाना अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, SI संतोष यादव, मैं पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर गंचौरा तालाब के पास एक युवक को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रुपए नगद बरामद किया। जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भव्य उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया। इसके साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति की गयी, जिसकी मुख्य अतिथि द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गयी। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बघौली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्व मंत्री विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के द्वारा 12 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा और बताया गया कि किस प्रकार से इन 12 सालों में केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार विकास के कार्य किए गए। सिद्धार्थनगर जिले में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बांसी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान SDRF प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका तथा आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन कर आपात स्थिति से त्वरित कार्रवाई की तैयारियों

0: का जायजा लिया। सिद्धार्थ नगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए इन सीसीटीवी कैमरों और ककराहा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर अस्थायी कमरा और शौचालय का निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: सलाम उन पर तहे तेग भी जिन्होंने कहा, सलाम उन पर तहे तेग भी जिन्होंने कहा, जो तेरा हुक्म, जो तेरी रजा, जो तू चाहे। ऐसी हस्तियों पर सलाम भेजते हुए आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबाब अंजुम रामपुर रेडियो मरकज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सलामे सुबह कबूल करें। समीन माह मुहर्रम, इस्लामी साल का पहला माह। मुहर्रम जिसके मायने हैं मुअज़्ज़म, मुहतरम और मुअज़्ज़ज़। इस माह का शुमार अशहरे हरम में से है जिनकी अज़मत और फजीलत किताब सुन्नत में आई है। ये वो हुरमत वाला महीना है जिसमें हर नेकी और हर नेक अमल का, हर इबादत का सवाब दोगुना कर दिया जाता है। मुहर्रमुल हराम उन चार महीनों में से एक है जिनकी हुरमत और अजमत को अल्लाह ताला ने कायनात बनाते वक्त ही लिख दिया था। इस माह मुहर्रम की 10 तारीख, जिसे हम यौम आशूरा भी कहते हैं, इसकी अहमियत, इसकी खासियत, इसकी फजीलत दुनिया के बनने से लेकर हमेशा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाक़े करबला के बाद इस दिन की अहमियत हमने पहचानी, बल्कि यह दीगर बात है कि शहादत हुसैन ने इस दिन की अहमियत और अजमत को दुबाला कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 10 मुहर्रम को ही हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जबल जुदी पर इसी दिन ही आ ठहरी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसी 10 तारीख को मछली के पेट से बाहर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रमुल हराम को ही आग से खलासी मिली। और यही वो दिन था जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी दिन अपनी कौम समेत फिरौन से निजात पाई और फिरौन इसी दिन दरियाए नील में गर्क हुआ। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश के बाद बादशाहत मिली। इसी रोज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बाद इम्तिहान शिफा मिली। इसी दिन हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। और यही वो दिन है जिसमें जिगरगोशे रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बातिल से टकरा कर जाम शहादत गले लगाया। और यही वो दिन होगा कि जब कायनात की बिसात लपेट कर क़यामत बरपा कर दी जाएगी। इसलिए इस दिन की अहमियत हमेशा से रही। यौम आशूरा की फसीलत इस बात से भी जाहिर होती है कि इस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले से भी रोज़ा रखा जाता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आशूरे का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तो इख्तियार दिया गया कि जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। इस दिन रोज़ा रखने का सवाब ये है कि साले गुज़िश्ता के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्तिदा में सिर्फ 10 मुहर्रम का ही रोज़ा रखा जाता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मालूम हुआ कि यहूद भी रोज़ा रखा करते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुखालफत में मज़ीद एक रोज़े इजाफा करने का हुक्म दिया और कहा, यौम आशूरा के साथ या तो 9 तारीख को रोज़ा रख लिया जाए या 11 तारीख को यौम आशूरा के साथ रोज़ा रख लिया जाएंगे। तो इन दो रोज़ों की अहमियत और इफादियत और अजमत बहुत बढ़कर है, बहुत सवाब है। और इसके अलावा चंद काम और भी हैं जो इस माह में किए जाएं, जो इस माह में किए जाएं तो उनके अजर सवाब दोगुने हो जाते हैं। यौम आशूरे के रोज़े के साथ साथ घर वालों पर खर्च में तौसी करना, फ़राइज़ का अहतमाम और नफली इबादत बकसरत करना, गुनाहों से बचने की कोशिश करना और जहाँ तक हो सके सुन्नतों को आम करना

0: पनाह अस्त हुसैन। दीनस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन।
1: ये दिन बहुत अजीम है तारीख इस्लाम में।
0: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत सिर्फ तारीख इस्लाम का ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा अलमिया है दुनिया का। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाकयाते करबला ऐसे वाकयात हैं जो कि मुनफरिद और बेमिसाल हैं इस्लामी तारीख में। अक्कास हैं आशिकान इस्लाम की कुर्बानियों और जानिसारियों के, शहादतों की अजीम शान दास्तान जो रकम हुई तारीख इस्लाम के रोशन और पुरनूर पन्नों पर। शहादत ख्वाह किसी की भी हो बाईस से नेमत हुआ करती है। ये जन्नत का तोहफा है मोमिन के लिए। राह हक में मोमिन की शहादत ही मोमिन का ऐन मतलूब है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई।
1: आज भी जरूरत है कि उल्टा जाए उन सफात को और यादें ताजा की जाए उस वाकया करबला की। जरूरी है कि हर मुसलमान उनको याद खुदा के साथ साथ नक्श कर ले अपने जहनो दिल पर और अश्क बहाए आले नबी की तकालीफ और परेशानियों पर, ख्याल करे उनके इसार और जज्बाए शहादत का, क्योंकि ये तमाम काम उन्होंने हमारे और हमारे इस्लाम की बकाओ हिफाजत के लिए किए।
0: गुजर जाएंगे अहले दर्द रह जाएगी याद उनकी, गुजर जाएंगे अहले दर्द रह जाएगी याद उनकी, वफा का दर्स जब होगा तो उनके जिक्र पर होगा।
1: उन बुजुर्गान दीन की शहादतें सिर्फ मातम करने के लिए नहीं है, सिर्फ मातम करने के लिए नहीं है बल्कि दर्स है इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने का।
0: उनको मातम और आहुबुका से याद करने के साथ साथ उनके इसार और कुर्बानी को मिशले राह समझकर अमल पैरा होना चाहिए जिसने उन हस्तियों को जिंदा जावेद बनाया। मातम वो करें जो मुनकिर हो हयाते शोहदा के, मातम वो करें जो मुनकिर हो हयाते शोहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते।
2: माह शहादत मुहर्रमुल हराम, अभी आपने ये फीचर समाप्त किया जिसमें आवाज़ें थीं फरीदुल्ला खान और फैज़ा ज़ुबैर की, तहरीर थी फैज़ा ज़ुबैर की। और आइए समीन प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसी माह मुहर्रम की मुनासिबत से क़मर हसन नकवी का ये कलाम समाप्त की।
3: हुसैन

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाए कुछ अवधी लोकगीत। सबसे पहले सुनिए आपके स्वर में ये देवी गीत।

अग्रहरी के गाए कुछ अवधी लोकगीत। हम आपको यहाँ बताते चले कि दिन में 2:45 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में आप एक बार पुनः डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाए अवधी लोकगीत सुन सकेंगे। फिलहाल लोक रंग कार्यक्रम हमारा यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.6 meters यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शागिर्द का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं मचरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही, और अब आपको विश्व दर्पण न्यूज़ बुलेटिन सुनवाने के लिए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं, और वहाँ से वापस लौटने के बाद एक बार पुनः चित्रपट से कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे नए फिल्मी तराने। तो फिलहाल विश्व दर्पण न्यूज़ बुलेटिन सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे चार जहाज हुर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया कि अमरीका अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने देने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिर

0: वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल उर्वरक भंडार 196,00,000 टन का है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह आंकड़ा 168,00,000 टन था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण

0: में आपका फिर स्वागत है। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार की रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा में भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए थे। ईरान ने स्विट्जरलैंड में अमरीका के साथ वार्ता के पहले दौर के बाद अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस दावे का खंडन किया है कि ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को हथियारों के निरीक्षण की अनुमति देगा। श्री जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान बातचीत के बाद परमाणु निरीक्षकों को आने देने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। श्री वेंस ने यह भी कहा कि इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से शीघ्र बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच कल बातचीत में अमरीकी वित्त विभाग ने ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से 60 दिन की छूट दी है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी तथा ईरानी कच्चे तेल का उत्पादन अमरीकी डॉलर में बिक्री और आपूर्ति स्वीकृत हो जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल और वहां के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत लग्जमबर्ग साझेदारी लगातार और मजबूत होती रहेगी। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया। ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो ऑस्लो के नए कदम, अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIRLakhnau@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र 18

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP की वेबसाइट

0: होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: प्रस्तुत है चित्रपट से। कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मी तराने। सबसे पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं मीट ब्रदर्स अल्तमश फरीदी और पलक मुच्छल की आवाज़ों में मीट ब्रदर्स की संगीत पर शब्बीर अहमद के बोलों को। फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अनवर का ये गीत, रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। संगीत दिया है मिथुन ने और शब्द रचना है सईद कादरी की।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रपट से। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं जतिन ललित की धुन पर प्रसून जोशी के बोलों को। गीत को स्वर दिया है शान और कैलाश खेरने और फिल्म का नाम है फना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं तनिष्क बागची की धुन पर मनोज मुंतशिर के बोलों को। गीत को स्वर दिया है राहत फतेह अली खान ने और फिल्म का नाम है रेड।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नए फिल्मी तराने चित्रपट से कार्यक्रम के अंतर्गत। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में फिल्म लुटेरा का ये गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
3: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं स्वानंद किरकिरे के बोलों को सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। संगीत दिया है शांतनु मोहित्रा ने और फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
7: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नए फिल्मी तराने चित्रपट से कार्यक्रम के अंतर्गत, और कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं केके की आवाज में विशाल ददलानी के बोलों को। संगीत दिया है विशाल शेखर ने और फिल्म का नाम है ओम शांति ओम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट से मीडियम वेव 401.61 मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अगले कार्यक्रम के लिए मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ। 8700014242।

0: 01 42 42 पर।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं वो कार्यक्रम 11 बजते ही जिसका रहता है आप सबको बेसब्री से इंतज़ार, यानी कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त मंजरी निगम। स्वीकार करिए मेरा अभिवादन, नमस्कार। हमें कॉल करने के लिए आपको डायल करना होगा ये नंबर जो है 223-8825 यानी कि 223-8825 और आगे लगा लीजिएगा लखनऊ का कोड जो है 0522। रहेगा मुझे आपके कॉल्स का इंतज़ार, जल्दी से करिए कॉल ताकि कर सकें आपसे ढेर सारी बातें। और जोड़ लेते हैं हम अपने साथ हमारे पहले कॉलर को और कर लेते हैं उनसे बात। हेलो, नमस्कार।
2: अरे नमस्कार दीदी जान।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: अरे कहते हैं ना दौलत की तमन्ना है न दौलत की तमन्ना है न शोहरत की आरजू
1: जी,
2: और आपसे दीदी जान बात हो जाए तो यही सबसे बड़ी जुफ्तजू।
1: क्या बात है, शेरो शायरी के बादशाह हैं आप तो।
2: अरे फूल खिल के बागों को बहार देते हैं और जिस कार्यक्रम को दीदी जान आप पेश करती हैं समझ लो संवार देते हैं।
1: बहुत खूब, तो हमारे श्रोताओं को अपना परिचय तो बता दीजिए।
2: अरे मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया, आप भी बढ़िया और सब कुछ बढ़िया बढ़िया, तो फिर फूटेंगी फुलझड़ियां बढ़िया बढ़िया दीदी जान। मैं भी सलामत हूँ, आप भी सलामत है, तभी तो बात हो रही है। और मैं बता दूं, हिंदुस्तानी कलाकार ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ दीदी जान।
1: क्या बात है, कैसे हैं चांद मोहम्मद जी आप? और आज
2: बता दूं कि आकाशवाणी लखनऊ जो है हिंदुस्तान का नंबर 1 आकाशवाणी है और नंबर 1 आप हैं, और चूंकि इतना अच्छा कार्यक्रम पेश करते हैं कि आल बर्ड सुनता है और आल बर्ड गुलाम है और ये लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है।
1: बहुत खूब, बहुत सारा शुक्रिया इतनी सारी तारीफ करने के लिए। अब जल्दी से बता दीजिए गाना कौन सा सुनवा दें आपको।
2: हाँ दीदी जान, जब बात हो ही गई है थोड़ी भाभी जान से बात कर लो, ये तड़प रही है क्योंकि ये लैला दीवानी है और हमें हाउस हाफ पेंट कहा करती हैं।
3: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार
3: जान।
1: नमस्कार, कैसी हैं आप?
3: अरे दीदी जान बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका नाम हमें बता दीजिए।
3: अरे दीदी जान आपसे बात हो गई,
2: नाम बता दीजिए।
3: हमारा दीदी जान से तारा नाम है।
1: क्या बात है, मुझे अब जल्दी से बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
2: क्योंकि मेरे परिवार का नाम ले लूं, गंगा जमुना सरस्वती तीन बच्चियां और लड़के का नाम सागर खान और प्रेमदास बाबा जी के साथ में गाना रहेगा सिलसिला फिल्म का दीदी जान, समय को जाया ना करते हुए क्योंकि काफी श्रोता लोग लगे होंगे, नाराज ना हो जाए, खफा ना हो जाए। और गीत के बोल है कि सर

0: क्या खूबसूरत आगाज़ हुआ है हमारे आज के इस कार्यक्रम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और करें मिलकर ढेर सारी बातें। आप भी जानने को उत्सुक होंगे कि कौन है हमारे अगले कॉलर जो करना चाहते हैं हमसे बात, और आप ही की तरह हम भी हैं बहुत उत्सुक। जान लेते हैं कौन जुड़ चुका है हमारे साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार बहन जी,
0: कैसे हैं आप? और हमारे श्रोताओं को आपका नाम
1: हम
0: बता
1: ठीक
0: दीजिए।
1: हैं, आप कैसी हो?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका परिचय दे दें हमें।
1: हमारा नाम मुन्ना बहेलिया है
0: जी,
1: और हम ग्राम सुनैचा से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: थाना कमलापुर, तहसील सिदौली, जिला सीतापुर।
0: बहुत बढ़िया। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मेरे पिया गए रंगोन, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है।
0: चलिए सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: नमस्कार बहन।
0: नमस्कार, हमें कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: आपको भी।
2: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। नंबर आपको फिर से एक बार बता देती हूँ ताकि आप कर सकें हमें कॉल और कर सकें हमसे बातें। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 2238825, यानी कि 2238825। और बात कर लेते हैं हमारे अगले श्रोता से, जान लेते हैं किसने मिला दी है हमें कॉल। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हूँ?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका नाम बता दीजिए।
1: मैं दीक्षा पाली बोल रही हूँ।
0: दीक्षा जी, क्या करती हैं दीक्षा जी?
1: जी मैं ठीक हूँ।
0: बहुत बढ़िया। आज गाना कौन सा सुनने की इच्छा रखती हैं?
1: गाना है एक हसरत थी कि आंचल को मुझे प्यार मिले,
0: क्या बात
1: मैंने
0: है,
1: मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले।
0: बहुत बढ़िया। तो सुनवा दें आपको आपकी पसंद का गीत?
1: जी
0: बहुत बढ़िया।
1: मैं अपना परिवार का नाम ले लूँ?
0: जी बिल्कुल
1: जी, मेरे पति हैं श्री भीमलाल पाली, मेरे बड़े बेटे हैं उल्लास पाली, छोटे बेटे उत्कर्ष पाली और मैं दीक्षा पाली।
0: जी
1: और मेरे गांव के हैं एक चाचा, सुनते हैं पाली के हैं
0: जी,
1: कुंज बिहारी चाचा, उनको गांव में कुंजन चाचा कहते हैं, तो वो बहुत सुनते हैं और अभी पुराने हैं तो गाना सुनते रहते हैं। और एक बीघापुर के धर्मेंद्र भैया
0: जी,
1: और उनकी वाइफ है कौन लता और उनका पूरा परिवार।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: उन लोगों के लिए जो लोग कभी जिनका फोन कभी नहीं लगता उनको लिए, और आपके लखनऊ की पूरी टीम को।
0: तो आप उन लोगों से सिंपैथी रख रही हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा। और सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का गीत, यूं ही कॉल करती रहिएगा हमें।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: वक्त कितनी तेज़ी से फिसल जाता है ना, आपसे बातें करते करते ऑलमोस्ट आधा वक्त निकल चुका है। चलिए कोई नहीं, आप जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया उनके पास अभी भी काफ़ी वक्त है और वो हमें कॉल कर सकते हैं। बाद में शिकायत मत करिएगा कि हमने बताया नहीं था। पर इसी बात में देख लेते हैं हमारे साथ कौन जुड़ गया है हमसे बात करने के लिए और अपनी फरमाइश का गीत सुनने के लिए। हेलो, नमस्कार।
1: ना
0: हेलो
1: दिन को करार आता है ना रातों को चैन, ना
0: जी।
1: दिन को करार आता है ना रातों को चैन, देख लेते हैं बस एक झलक आपको, दिल हो जाता है फिर से बेचैन।
0: वाह,
1: हाय
0: क्या
1: हेलो
0: बात।
1: मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपकी आवाज़ और आपकी जो शेरो शायरी जो कहने का अंदाज है वो बहुत खूब है। नाम क्या
1: जी
0: है
1: मैम,
0: आपका?
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं पूनम बोल रही हूँ कानपुर से।
0: क्या बात है पूनम जी, कानपुर। ओफो, मतलब ये सुनते ही मेरे दिल में तो हलचल मच जाती
1: क्या बात है। और मैम
0: है।
1: आपको मैं सुन रही हूँ और आपकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। अब मैंने कहा चलिए आज तो कार्यक्रम में कॉल लगा ही देती हूँ,
0: थैंक यू
1: तो
0: सो मच
1: इत्तेफाक से देखिए कॉल भी लग गया। और कहते हैं दिल में अगर ख्वाहिश हो
0: जी।
1: तो इंसान वहां तक पहुंच जाता है जहां तक उसको जाना है।
0: बिल्कुल सही बात है, कहते हैं कायनात लग जाती है आपको उस चीज़ तक पहुंचाने में।
1: जी मैम, तो मैम बताएं आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, और अब आप मुझे बताइए कि आज आप गाना कौन सा सुनेंगी
1: गाना तो मैम सुनूंगी, फिल्म का नाम दीवाना सनम,
0: जी।
1: और आप नहीं आती हैं तो आपके लिए गाना है क्यों इतना तड़पाता है मुझको तेरा प्यार, ये गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। और हमारी दोस्त हैं
0: जी
1: रिंकी पिंकी जी हैं, गुंजन तिवारी जी हैं, समा परवीन जी हैं, अनु और साथ साथ अनु पांडे जी हैं, और मेरे कुछ और दोस्त हैं अविनाश जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, और साथ साथ प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, राजू भाई हैं, जयपाल भाई हैं, चंदन जी हैं, और जितने श्रोता सुन रहे हैं लाइव सभी को गीत डेडिकेट, साथ साथ राजेंद्र गंगवार जी भी सुन रहे हैं कार्यक्रम को।
0: क्या लंबी फहरिस्त है, और नाम बाकायदा याद है आपको। चलिए सुनवा
1: जी
0: देते
1: मैम,
0: हैं आपके
1: थैंक
0: साथ आपके दोस्तों को आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार,
1: यू, बाय बाय।
0: बाय।

0: जल्दी से मिलाइए कॉल हमें और जुड़ जाइए हमारे साथ आकाशवाणी लखनऊ पर। और जो कार्यक्रम चल रहा है वो है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कितनी सारी बातें आपको कहनी होंगी और कितनी सारी बातें हमें सुननी हैं आपकी, तो रहेगा मुझे आपकी कॉल्स का इंतजार। और आइए जान लेते हैं कौन जुड़ चुका है इस वक्त हमारे साथ। हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका फोन जो रेडियो सेट बज रहा है उसे थोड़ा सा पीछे कर दीजिए।
1: जी,
0: आवाज आ रही है आपको हमारी?
1: हाँ जी, आ रही।
0: जी नमस्कार, आप अभी भी पीछे ना बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक है तो बाकी लोग मतलब मेरी और आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बाकी लोग सुन नहीं पाएंगे ठीक से। जी अब बिल्कुल अच्छे से आ रही है। हमारे श्रोताओं को आपका नाम बता दीजिए, आपका परिचय दे दीजिए।
1: जी मैं राज बोल रहा हूँ, नैमिषारण से। नैमिषारण से।
0: क्या बात है, तीर्थों के राजा के किस तरह मतलब तीर्थ स्थलों के राजा से की जगह से आप बात कर रहे हैं, क्या बात है।
1: ये तो बात है।
0: जी और क्या नया डेवलपमेंट हो गया वहाँ पे नैमिषारण में?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत कुछ नया बन गया होगा अब तो, है ना?
1: अरे अब बहुत चीजें यहाँ पर बन रही हैं, बहुत चीजें बन रही हैं, जो हवाई अड्डा भी है और बहुत चीजें बनाई जा रही हैं।
0: क्या बात है। तो आपको आज गाना कौन सा सुना दें हम?
1: जी गाना वही अब जाके राम से किया है।
0: चलिए सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, इतने दिन से हम लोग सुन के सुनते आ रहा हूँ, तो काफी लिस्ट लंबी है, नाम लेना तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ सबको सुनवाना चाहते हैं।
0: चलिए शुक्रिया बहुत बहुत, सुनवा देते हैं आपके दोस्तों को आपका आपकी पसंद का ये गीत।
1: ठीक, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: बिना टाइम वेस्ट किए आपको मिलवा देती हूँ हमारे अगले कॉलर से, ताकि हम कर सकें उनसे ढेर सारी बातें। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका?
1: अच्छे दीदी, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: क्या बात है भगवान जी, बस आपका नाम ले लिया दिन बन गया।
1: और दीदी आपसे हम बहुत नाराज हैं।
0: क्यों
1: दीदी, आप 7-8 महीनों बाद कार्यक्रम में आई हैं आप।
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बाकी लोग भी हैं यहाँ पे जो आपसे मिलते रहते हैं, पर
1: जी
0: आपने
1: जी
0: मुझे मिस किया, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया।
1: दीदी क्या है, आप आती हैं तो हमारा आसानी से कॉल भी मिल जाता है और आपसे बात हो जाती है। आप कार्यक्रम बहुत अच्छा पेश करती है दीदी, और हमें मालूम है दीदी आकाशवाणी विविध भारती लखनऊ पर आप कार्यक्रम पेश कर रही थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खबर सारी रखी हुई थी, तो मतलब आप मुझे वहाँ सुन रहे थे विविध भारती पे। चलिए अब मुझे जल्दी से बता दीजिए भगवान जी कि गाना कौन सा सुनेंगे आज आप।
1: दीदी फिल्म का नाम है मीरा का मोहन, और गाने के बोले सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। दीदी कुछ दोस्तों को याद करना चाहेंगे?
0: बिल्कुल आप याद कर लें।
1: पहले तो आपको डेलीकेट रहेगा दीदी, शिवा लोहट
0: so
1: जी है, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसर सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, गंगाधर सावनकर जी, पूरन वर्मा जी, राकेश शिमला से है, और पूनम दीदी है, बहन संगीता देवना जी, अशोक देवना जी, अविनाश तेली जी, गुंजन तिवारी अयोध्या से, स्वाति सिंह जी हैं, और तनुश्री हैं, हबीब मंसूरी जी हैं, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, आपको डेलीकेट रहेगा।
0: थैंक यू सो मच, और बहुत तेजी से आपने नाम लिए, शुक्रिया। जल्दी से सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।

0: आप यूं ही हम पे प्यार बरसाते रहें, हमें कॉल मिलाते रहें और करते रहें हमसे बातें। हमें बहुत खुशी होती है आपके जब इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतनी प्यारी प्यारी कॉल्स हमें मिलती हैं। नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं मिलाया है वो भी कोशिश कर लें। हमारा नंबर है 223-8825, यानी कि 223-8825, और कोड ज़रूर लगा लीजिएगा लखनऊ का, जो है 0522, यानी कि 0522। और देख लेते हैं कि किसने बाजी मार ली है और कौन जुड़ गया है हमारे साथ। हेलो, नमस्कार।
1: श्रोताओं से बेबाकी से बात करने का एक अनोखा अंदाज।
0: क्या बात है।
1: और फिर जब रेडियो में गूंजती है कोयल सी मीठी आवाज, और बहुत दिनों के बाद मंजरी दीदी से बात करके दिल से खुश हो गया हूँ आज, दिल से खुश हो गया हूँ आज।
0: क्या बात है, क्या मतलब क्या तारीफ मिली है आज मुझे, मेरा दिल खुश हो गया दिनकर जी, बहुत बहुत बहुत सारा शुक्रिया।
1: और दीदी जी, मैं श्रोताओं से फोन लगा के बात भी करता हूँ तो पता चलता है कि आप दूसरे चैनल में व्यस्त हैं, तो मुझे ये खुशी होती है कि आप छुट्टी में नहीं है, कभी ना कभी जरूर बात होगी और आज वो मौका मेरे पास आ गया।
0: क्या
1: है।
0: बात है, आप सबको छोड़ के कहाँ जाऊंगी मैं, बताइए।
1: जी जी जी, कहीं में कहीं आप सेवा जरूर करती हैं, और ये मीठी आवाज ता उम्र गूंजती रहे और आप के श्रोताओं के बीच संबंध और वार्तालाप चलती रहे।
0: क्या बात है, बहुत सारा शुक्रिया दिनकर जी। अब मुझे अपनी पसंद का गीत बता दीजिए, कौन सा सुनेंगे?
1: जी मैं ये गीत भी बताऊंगा, मैं गुलामी फिल्म का गीत है, लेकिन एक दो शब्द कहूंगा कि कोई भी उद्घोषक या उद्घोषिकाए हो तो बेल जो है खाली न जाए, प्लीज खाली दौड़ती रहती है और जब बेल रिसीव नहीं होता फोन तो दिल की घंटियां बज जाती
0: है। नहीं
1: तो
0: मैं आपकी
1: इंगेज में फोन को जरूर रखिए, एक मिनट दो मिनट बाद आपको अगर रिसीव करना है तो इंगेज में रखिए फोन को, एक्टिवेट ना करिए तो आप की बेल खाली नहीं जाएगी।
0: चलिए हम अपनी तकनीकी डिपार्टमेंट को ये बात बता देंगे कि भाई फोन का कनेक्शन न बने, क्योंकि हमारे दिल के जो हमारे दर्शक जो हमारे श्रोतागण है उनकी घंटियां बज जाती है और हम चाहते हैं कि उनका दिल आसानी से धीरे धीरे हौले हौले धड़के।
1: जी दीदी की, क्योंकि डिजिटल जमाना है और आजकल क्रिकेट में अगर स्ट्राइक रेट आपकी 100 के नीचे है तो आपको खिलाएंगे नहीं, इसलिए 100% स्ट्राइक रेट में आपको जो है काम करना है,
0: आपका
1: होना चाहिए आज के

0: में।
1: आपका सजेशन जरूर पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल हम आपको सुना देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी हमारे दोहज श्रोता हैं जो है उद्गोय जो है जिनको मैं बेडिकेट करना है, मांगी लाल चंदेल है, फूलचंद पाल है मंगारी से, और देवी शंकर शुक्ला आपके बेटा सिंह और प्रेमदास बाबा जी।
1: चलिए शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए दिनकर जी, नमस्कार।

0: आइए जान लेते हैं कौन जुड़ चुका है हमारे साथ, हमसे बात करने के लिए और अपने दिल की बातें हमें बताने के लिए। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका?
1: मैम बस ऊपर की कृपा है, आप अपना बताइए।
0: जी मैं बहुत बढ़िया। आपका नाम हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: मैम मैं ग्राम पोस्ट बहेरी तहसील नरैनी जनपद बांदा से आदर्श कुमार बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है आदर्श कुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: मैम दुकान किए हैं कपड़े जूते चप्पल की।
0: क्या बात है, सारी चीजें एक ही जगह।
1: जी मैम।
0: बहुत बढ़िया। आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: मैम अरिजीत सिंह की आवाज़ का कोई सभी गाना सुना दीजिएगा।
0: अच्छा चलिए, हम ढूंढते हैं कि अरिजीत सिंह की आवाज़ में कोई गाना मिल जाए तो हम आपको सुना देते हैं।
1: ओके मैम,
0: ठीक है, हमें कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैम।

0: वक्त रह गया है बहुत कम हमारे पास, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जल्दी से कॉल मिला लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि हमारा कॉल नहीं मिलता। नंबर आप जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ, 223-8825, यानी कि 223-8825, और लगा लीजिएगा इसके आगे लखनऊ का कोड जो है 0522। और हम कर लेते हैं हमारे अगले श्रोता से बात और जानते हैं उनके दिल की बातें। हेलो, नमस्कार।
1: खूबसूरत सपन एक किस्सा बन जाता है कि खूबसूरत सपन एक किस्सा बन जाता है, ना जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब। अब जल्दी से अपना तारुफ भी दे दीजिए हमें।
1: नमस्कार, मैं ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से सारू नूर अंसारी आपसे बात करूँ मैं।
0: क्या बात है अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, इतनी खूबसूरत शायरी सुनाने के लिए।
1: और मैम आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैम आप बहुत दिनों बाद इस प्रोग्राम में थी, आइए कहाँ थी अब तक मैम? ये
0: मैं थोड़ा सा बिजी थी विविध भारती में, शायद आपने वहाँ मुझे सुना नहीं, अगर आप वहाँ के प्रोग्राम सुनते, क्योंकि आप शायद इस तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे, पर मैं यहीं आसपास ही थी, कहीं नहीं गई थी।
1: हम भारती लखनऊ भी सुनना चाहते हैं मगर ऐप पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं सुन पाते हैं। ये कार्यक्रम आपका ऐप पे उपलब्ध है तो सुनते रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया, आप यहाँ से जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को और अप्रिशिएट करते रहिए। आज गीत कौन सा सुनवा दूँ आपको मैं?
1: इससे पहले ये जरूर

0: कहना चाहूंगा कि उनकी गली से गुजरे मंजर अजीब था, कि उनकी गली से गुजरे मंजर अजीब था, दर्द था वो भी मेरे दिल के करीब था, जिसे मैं ढूंढता था अपने हाथों की लकीरों पर, पहे किसी की किस्मत किसी और का नसीब निकला।
1: क्या बात है, अब मुझे जल्दी से गीत बता दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे श्रोतागण।
0: इसका नाम है प्रेम रू, इसमें गाना मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, सबनम अब्बासी, राजेंद्र गंगवारन, दिलीप पहुजा जी, लोकेंद्र वर्मा, आप और सारुन अंसारी के साथ सुनना चाहूंगा, गंगाधर सावनकर जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।

0: और आइए जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी श्रोता से। हेलो नमस्कार,
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपको जल्दी से आपकी पसंद का गीत बताना होगा आपके नाम के
1: नमस्ते
0: साथ।
1: दीदी।
0: नमस्ते, और आपका नाम क्या है?
1: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर सोना मार्ग।
0: क्या बात है लतीफ जी, इस बार आप जल्दी से बस अपना गीत बता दीजिए ताकि हम आपको सुनवा दें, अगली बार आपसे आराम से बात
1: फिल्म
0: होगी।
1: का नाम है पत्थर का फूल,
0: जी
1: लता मंगेशकर की आवाज में।
0: चलिए, और गीत कौन सा है?
1: कभी तो छलियां लगता है, कभी
0: चलिए
1: तो
0: आपको
1: पाया लगता।
0: सुनवा देती हूँ आपकी पसंद का
1: और
0: गीत,
1: मेरे
0: और
1: साथी है राकेश कुमार शुमला से
0: जी
1: और भगवान सिंह परमा।
0: चलिए मैं सुनवाती हूँ आप दोनों, आपके दोस्तों को और आपको
1: और
0: आपकी
1: राकेश
0: पसंद का
1: कुमार को
0: गीत।
1: मैं इसकी वसादत से नमस्कार कहना चाहता हूँ।
0: नमस्कार नमस्कार, हमें कॉल करने

इस आखिरी गीत के साथ हम अपने श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ये आकाशवाणी लखनऊ है। थोड़ी ही देर में प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र

भारतदास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्र

0: राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: बसंती अरे बसी ओ बसी कहाँ है तू?
1: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
0: अरे क्या करेगी इनका तू है?
1: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
0: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
1: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है,
2: चल।
1: ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा?
4: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
2: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो चलो
3: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी लखनऊ है। लेते हैं छोटा सा अंतराल।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: श्रोताओं, कल दिनांक 22 जून 2026 का दिन अत्यधिक दुखद रहा। आप सब ने सुना और पढ़ा जरूर होगा कि अलीगंज लखनऊ की एक व्यवसायिक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें कई स्टूडेंट्स की इस आग में झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई, जो अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए और हम सब के लिए नितांत ही दुखदायी है। उन सब मृतकों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके माता पिता और अभिभावकों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन कोचिंग सेंटर्स या इस तरह के अनव्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता भी है, ताकि इस तरह की निर्मम दुर्घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हों। हम सब की श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन माता पिता और अभिभावकों के साथ में है। ओम शांति।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनवाते हैं आपको कुछ खूबसूरत नगमे हमारे अगले कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। जो पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म आकाशदीप से, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कल के दर्दनाक हादसे की, जो लखनऊ अलीगंज में के एक व्यावसायिक परिसर में हुआ। और हमें लगता है कि कोचिंग सेंटर्स को अपने छात्रों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ये जो सावधानियां हैं वो हैं, कोचिंग सेंटर्स छात्रों के शैक्षणिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। यहाँ सुरक्षित, अनुशासित और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सावधानियाँ जो कोचिंग सेंटर्स को बरतनी चाहिए वो हैं। पहला, उन्हें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, कक्षाओं, शौचालयों और परिसर की नियमित सफाई कराते रहनी चाहिए, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर और आपातकालीन निकास की उचित व्यवस्था, जो बहुत ही ज़रूरी है, इस पर उन्हें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। विद्युत सुरक्षा, सभी विद्युत उपकरणों और तारों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन, यानी कि कक्षाओं में रोशनी और हवा का उचित प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। कोचिंग सेंटर्स को अनुशासन बनाए रखना चाहिए तथा छात्रों और शिक्षकों के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करने चाहिए। CCTV और सुरक्षा व्यवस्था की उचित व्यवस्था उन्हें ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि परिसर की सुरक्षा के लिए कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित रखनी चाहिए उन्हें। हम आगे भी आपको बताते रहेंगे कि कोचिंग सेंटर्स को और किस किस की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस तरह के दर्दनाक हादसे ना सिर्फ लखनऊ बल्कि कहीं और ना हों। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर जुड़ते हैं आपसे कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म नीला आकाश से, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

0: कोचिंग सेंटर्स को किस और तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो हादसा कल लखनऊ के एक परिसर में हुआ वो कहीं और ना हो। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध होना चाहिए हर कोचिंग सेंटर पर। छात्र उपस्थिति का रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति दर्ज की जानी चाहिए। भीड़ नियंत्रण, यानी कि कक्षाओं में क्षमता से अधिक छात्रों को नहीं बैठाया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटली डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा अभिभावकों से संवाद, विद्यार्थी की प्रगति और समस्याओं की जानकारी समय समय पर अभिभावकों को दी जानी चाहिए। तथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सकारात्मक वातावरण, छात्रों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए प्रेरणादायक माहौल बनाए रखना चाहिए। अगर हम इन सारी बातों का पूर्णतः पालन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आगे कभी भी इस तरीके का कोई भी हादसा नहीं होना पाएगा। एक लेते हैं छोटा सा अंतराल और अंतराल के बाद कार्यक्रम जारी रखते हैं सदाबहार नगमे।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: अगला गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म भरोसा से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। इसका म्यूजिक दिया है रवि ने और इसके बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपको बता दें, प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म वादा कर ले साथ। ये तो सॉन्ग हाथ की सफाई है, माफ़ कीजिएगा। अगला गीत है फिल्म हाथ की सफाई से, और इसे अपनी खूबसूरत आवाज़ से सजाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लता मंगेशकर ने, और गीत के बोल हैं वादा कर ले साधना। मुझे उम्मीद है ये गीत आपको भी बेहद पसंद होगा।

आपको बता दें, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। और अगला गीत इस कार्यक्रम में हम जो आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म रॉकी से, जिसे अपनी प्यारी सी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। बोल आनंद बख्शी के हैं और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो हैं आर डी बर्मन साहब। चलिए सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत सा गीत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नगमे, मीडियम वेव 401.6 मीटर पर। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम

0: राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कुमारी सुषमा, पुत्री कल्लू, निवासी ग्राम मुड़िया कसौजा, थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी से दिनांक 5 अप्रैल 2026 से लापता हैं। सुषमा की उम्र 18 वर्ष, कद लगभग 5 फिट व चेहरा लंबा है। इनके मिलने की सूचना आप उपरोक्त बताए गए पते पर दे सकते हैं। लालजी शुक्ला ने हमें सूचित किया है कि उनकी पत्नी श्रीमती उषा देवी निवासी पटकन पुरवा मजरे उमरी थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी से दिनांक 30 दिसंबर 2025 से लापता हैं। श्रीमती उषा देवी की उम्र लगभग 65 वर्ष, कद 4 फिट एवं शारीरिक बनावट सामान्य है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके मिलने की सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7897961251। मोबाइल नंबर कृपया पुनः सुन लें। मोबाइल नंबर है 7897961251। राम जी उर्फ ज्ञानेंद्र मिश्रा, निवासी थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी से लापता हैं। राम जी की उम्र 36 वर्ष व कद लगभग

5 फिट है। इनके मिलने की सूचना आप आदित्य कुमार को इस पते पर दे सकते हैं। पता है थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी। सुशील कुमार मौर्य ने हमें सूचित किया है कि उनकी पुत्री कुमारी अंशिका मौर्य निवासी ब्राह्मणी टोला, कस्बा व थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी से दिनांक 4 मई 2024 से लापता हैं। अंशिका की आयु 18 वर्ष, कद लगभग 4 फीट व रंग गेहुआ तथा शरीर दुबला पतला है। इनके दाहिने गाल पर कट का निशान है। इनके मिलने की सूचना आप इस पते पर दे सकते हैं। ब्राह्मणी टोला, कस्बा व थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी। कुमारी सरस्वती पुत्री रामाश्रय निवासी कुडौनी, थाना कासिमपुर, जनपद हरदोई से दिनांक 25 अप्रैल 2026 से लापता हैं। सरस्वती की उम्र 18 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा गोल व बाल काले हैं। इनके मिलने की सूचना आप उपरोक्त दिए गए पते पर दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है, थोड़ी ही देर में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
4: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर एक कसीरुल मंजिल इमारत में एक कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 तुलबा की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए KGMU ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। हादसे की इतला मिलते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा छोड़कर सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने जाय वकू का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बाद अजा उन्होंने जख्मियों से मुलाकात के लिए KGMU का दौरा भी किया। वजीर आला ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को पूरे वाकये की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। जाय वकू का मुआयना करने के बाद उन्होंने जख्मियों से मिलने और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए KGMU का दौरा किया। वजीर दिफा ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकत की जाएगी। दरियसना वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर हुकूमत ने वाकये की जांच के लिए 2 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। लखनऊ आतिशजदगी के वाकये में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार किया गया। हमारे नामा निगार ने बताया,
5: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस फायर ब्रिगेड पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला

0: अमित शाह, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, एसपी सरबरा अखिलेश यादव, बीएसपी सरबरा मायावती और कई दीगर वुजरा ने लखनऊ आतिशजदगी के वाकये को अलमनाक करार दिया है और खानदानों से दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन को कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रूपये और जख्मियों को 50-50 हज़ार रूपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रूपये और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे शहरी सरमायाकारी तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। हमारे नामानिगार के इत्तला है कि कुल 65 अवार्ड्स आज पेश किए जाएंगे, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 शख्सियत समेत 56 पद्मश्री शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने

0: प्रदेश की चार शख्सियत समेत 56 पद्मश्री शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजीव लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: भारतीय जनसंघ के बानी सदर और अजीम माहिर तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम शहादत के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, आबी बिजली के वजीर स्वतंत्र देव सिंह और दीगर मौजजीन ने उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके की मुनासिबत से उत्तर प्रदेश के महकमे जंगलात ने बड़े पैमाने पर रियासत भर में दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की है। एक पेड़ माँ के नाम के उनवान से इस मुहिम का मकसद माहौलियात के तहफ्फुज और रियासत को सब्ज बनाने के बारे में बेदारी पैदा करना है। आज रियासत के तमाम 75 जिला में दरख्त लगाए जा रहे हैं। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए अहल दिलचस्पी रखने वाले आजमीन से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। इस हवाले से जारी करदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 जून 2026 से शुरू होंगी और 20 जुलाई 2026 तक रात 11:59 तक जारी रहेंगी। ख्वाहिशमंद आजमीन हज कमेटी की सरकारी वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शनावास सी की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि हज नशिस्तों की मंसूखी पर भारी जुर्माना होगा, इसलिए आजमीन को मुकम्मल तैयारी और पुख्ता आजम के बाद ही दरख्वास्त देना चाहिए। और रियासत में गर्मी की लहर जारी है। दरियसना कल दोपहर गरज चमक के साथ होने वाली हल्की बारिश ने मशरकी उत्तर प्रदेश के कई जिला बशमूल गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती के रिहायशियों को कुछ राहत पहुंचाई। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम महकमे मौसमियात ने दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली की पेशगोई नहीं की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। बहने सुने अपना कार्यक्रम अपराजिता।

0: सखियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम अपराजिता में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी इरम
1: और मैं सोनिका। सखियों नमस्कार। कहते हैं इरम, घर आंगन से लेकर संसार, नारी करती है सभी का उद्धार।
0: बहुत सुंदर पंक्तियां हैं सोनिका, लेकिन क्या आज के समय में ये बात सचमुच पूरी तरह से लागू होती है?
1: क्यों नहीं, आखिर नारी ही तो परिवार की धुरी होती है। और देखो ना इरम, घर में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर का बजट हो या कोई जरूरी खरीदारी, कई जगहों पर तो आज भी अंतिम निर्णय पुरुषों का ही होता है।
0: बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज बहुत से घरों में पति पत्नी मिलकर फैसले लेते हैं, आखिर घर दोनों का है ना, तो राय भी दोनों की होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: नारी की बुद्धि, उसका साहस और उसकी दूरदर्शी सोच समाज को विकास की नई दिशा दे सकती है।
1: क्या बात कही तुमने, महिलाएं केवल घर संभालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और अपनी सोच से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती हैं।
0: क्यों नहीं, आखिरकार वे भी देश की आधी आबादी और एक बड़ी शक्ति जो है।
1: वैसे एक बात कहूँ ना,
0: कहो।
1: हम महिलाएं तो रोज नीति निर्धारण करते हैं, बस उसे सही नाम ही नहीं देती हैं।
0: बिल्कुल।

0: सही का, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई पर कितना ध्यान देना है, बुजुर्गों की देखभाल कैसे करनी है, कौन सी ज़रूरत को पहले पूरा करना है, ये सब भी तो फैसले लेने की प्रक्रिया ही है।
1: और साथ ही बचत, भविष्य की योजना हमें कैसे बनानी है, परिवार में अनुशासन कैसे रखना है, कैसे सहयोग देना है, कैसे अपने मूल्यों को बढ़ाना है, ये सब हम ही तो तय करते हैं।
0: बिल्कुल, महिलाएं घर की दिशा और विकास तय करने में सहायक होती हैं।
1: और देखो, कहते हैं ना, घर की आधारशिला महिलाएं परिवार की प्रथम नीति निर्माता भी होती है ना।
0: इसलिए जरूरी है सोनिका कि महिलाएं घर की समस्याओं से आगे बढ़कर नीति निर्धारण और नेतृत्व की भूमिकाओं में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं।
1: भाई बिल्कुल, भागीदारी बढ़ाएं। और इसी से जुड़ा है कूटनीति का क्षेत्र, जहाँ पे संवाद, समझदारी और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान होता है।
0: बिल्कुल, कूटनीति यानी बातचीत,
1: बिल्कुल,
0: जो आपसी समझ से रिश्तों को मजबूत बनाता है, साथ ही चुनौतियों का शांतिपूर्वक समाधान निकालता है। इसी महत्व को देखते हुए हर वर्ष 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स इन डिप्लोमेसी डे मनाएंगे।
1: बिल्कुल इरम, और इसका उद्देश्य पता है क्या है, कि दुनिया भर की उन महिलाओं के योगदान को सम्मान देना है जो कि राजनयिक, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है ना। और आज देखो, दुनिया भर में महिलाएं इस जिम्मेदारी को कितने अच्छे ढंग से निभा रही है ना। वो न केवल देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी महत्वपूर्ण फैसले लेने में भाग भी ले रही हैं।
0: ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है सोनिका,
1: वो तो है,
0: महिलाओं की आवाज अब देश और दुनिया के भविष्य को आकार देने में वैश्विक मंच पर से भी प्रभावशाली ढंग से भी सुनी जा सकती हैं।
1: सच कहा, एक मजबूत देश वही है जहाँ पे नागरिक, चाहे महिला हो या पुरुष, अपनी बात रख सकें और फैसलों में भागीदारी लेने का उन्हें समान अवसर भी मिले।
0: चाहे वे ग्रामीण महिला हो, शहरी कामकाजी महिला हो, शिक्षिका, वैज्ञानिक, किसान या किसी बड़े पद पर कार्यरत कर रही हो महिला, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए।
1: देखो ना, हर आवाज महत्वपूर्ण है और हर अनुभव मूल्यवान। और पता है, जब विचारों में होगी नई उड़ान, तभी तो बनेगा देश महान। तो खुलकर जियो।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपराजिता में। देखो ना इरम, जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता है। कभी खुशी कभी गम लगा ही रहता है। कभी खुशियां साथ चलती हैं तो कभी परिस्थितियां नई चुनौतियां लेकर के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ऐसे में क्या होता है ना कि कई महिलाओं को जीवन की राह अकेले ही तय करनी पड़ती है।
6: कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना।
5: बिल्कुल, ऐसे में महिलाओं के साहस, संघर्ष और उनकी चुनौतियों को समझने के लिए हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडो डे मनाया जाता है।
6: ये दिन हमें विधवा के जीवन और उनसे जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ सोचने का अवसर देता है। सोनिका, पति के निधन के बाद एक महिला को भावनात्मक दुखों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपने अधिकारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल, और ऐसे में पता है मन में कई सवाल आते हैं कि क्या उन्हें पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है, भरण पोषण और सम्मानजनक जीवन के लिए कानून में क्या प्रावधान है, और यदि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसे में वो क्या कर सकती हैं।
6: इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम सुनेंगे एक विशेष भेंटवार्ता जिसका विषय है भारतीय कानून में विधवा स्त्रियों हेतु प्रदत्त अधिकार और सुरक्षा।
5: और इस विषय पर एडवोकेट और समाज सेवी श्री प्रिंस लेनिन जी से बातचीत कर रही हैं ममता उपाध्याय।
6: सोनिका, सखियों के संग हम भी चलो सुनते हैं ये महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी।
7: सखियों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बीच ही रहने वाली उन स्त्रियों के बारे में जिन्हें हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उन्हें अनचिन्हा चेहरा मानते हैं और उनकी समस्याएं, उनके दुख को अदृश्य दुख मानते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं। वो स्त्रियां जो अपने पति को खो चुकी हैं, जिन्हें समाज विधवा कहता है। ऐसी स्त्रियां हम सबके बीच हैं, हमारी दादी, नानी, माँ, बहन, हमारी बेटी भी हो सकती है, लेकिन कई बार हम उनकी समस्याओं को उस गहराई के साथ नहीं महसूस करते हैं जैसा समाज को महसूस करना चाहिए। वो समस्याएं आर्थिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी होती हैं, सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से भी होती हैं। कई कुरीतियाँ भी काम करती हैं हमारे मनोमस्तिष्क में जो उन महिलाओं को अनजाने में दुख दे जाती हैं। तो इन्हीं समस्याओं पर बात करने के लिए, खासकर जो हमारे भारतीय कानून में विधवा स्त्रियों को प्रदत्त अधिकार और सुरक्षा है, उस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री प्रिंस लेनिन जी को, जो लखनऊ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है, साथ ही साथ आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो प्रिंस लेनिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
8: जी धन्यवाद।
7: प्रिंस लेनिन जी, आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्त्रियों की जो हमारे समाज में हमारे बीच ही रहती हैं लेकिन हमसे कई बार अपने दुख को शेयर नहीं करती हैं, या हम उनके दुख को उतनी गहराई से जाना नहीं चाहते हैं। वो स्त्रियाँ हैं विधवा स्त्रियाँ हमारी। यदि हम बात करें उनकी

0: आर्थिक सुरक्षा की, क्योंकि धन जो है वो बहुत बड़ा कारण बनता है उन स्त्रियों के दुख को और बढ़ाने में। तो ये बताइए कि जो संपत्ति का अधिकार है या प्रॉपर्टी राइट्स है, क्या कानून है हमारे भारतीय कानून में उन स्त्रियों के लिए?
1: ममता जी, देखिए जहाँ तक विधवा महिलाओं के संबंध में जो बात है, तो हमारे देश का जो कानून है, जो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, ने अभी एक कंचन राय वर्सेस गीता शर्मा में हमारे ही देश के धर्म से संबंधित मनुस्मृति के एक श्लोक का उल्लेख किया था कि न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्य त्याग महरहति त्यय जन्म पतिता नेतान राजा दंड्या शताति। यानी ना तो माता न पिता न पत्नी और ना ही पुत्र ऐसे हैं जिन्हें त्याग दिया जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विधवाओं के लिए भी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कि उनको भी कोई त्याग नहीं सकता
0: जी, जी।
1: वो हमारे परिवार का अभिन्न अंग मानी गई हैं।
0: और त्यागने की बात पे कई बार ऐसी स्त्रियों को दूर भेज दिया जाता है, विधवा आश्रम में भेज दिया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, त्यागने से मतलब है कि उनका जो पालन पोषण की जिम्मेदारी है जिस परिवार में वो आती है, विधवा तब होती है जब उनके पति की मृत्यु हो गई, तो उनके जो अधिकार हैं उसके संबंध में तमाम दिशा निर्देश, तमाम कानून हमारे देश में लाए गए हैं, जिनमें अगर हम प्रमुखता से बात करें तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है, उसके तहत विधवाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं संपत्ति से जुड़े हुए। उनका पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार आता है, उनको भरण पोषण का अधिकार मिलता है, जो पहले हमारे यहाँ धारा 125 CRPC की थी, अब वो 144 BNSS एक्ट के तहत आ गई है। धारा 20 DV एक्ट भी उनको मेंटेनेंस का अधिकार देती है। सेक्शन 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट उनको मेंटेनेंस का प्रोविजन देता है। तो ऐसी विधवाओं के भरण पोषण के लिए कानून में तमाम अधिकार हैं। उनको ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार मिलता है कि अगर पति उनके लिए भरण पोषण का कोई साधन नहीं छोड़ गया है, कभी पति कोई नौकरी में होते हैं तो उनकी जो पेंशन होती मरने के उपरांत या कोई जो डाइंग इन हार्नेस के जो प्रोविजन के तहत नौकरियां मिल जाती हैं ऐसी विधवा स्त्री को, लेकिन जहां पति के पास ऐसी कोई नौकरी नहीं है, कोई साधन नहीं छोड़ा है, तब उस महिला के पास ये अधिकार है कि वो अपने पति के जो पिता हैं और जो परिवारीजन हैं उनसे अपने भरण पोषण के संबंध में अधिकार प्राप्त।
0: जी तो ये तो भरण पोषण की बात हुई, यदि हम पति की संपत्ति पे बात करें, जो मृत पति है उसकी जो संपत्ति है, तो कहा जाता है कि पूर्ण स्वामित्व का अधिकार पत्नी को होता है, तो ये एब्सोल्यूट ओनरशिप क्या होती है, ये हमारे सखियों को बताइए।
1: देखिए पहले जो था एक लिमिटेड अधिकार हमारी ऐसी महिलाओं को मिला था, उसमें उनको संपत्ति को इंजॉय करने का अधिकार रहता था, लेकिन उस संपत्ति को डिस्पोज नहीं कर सकती थी, वो बेच नहीं सकती थी।
0: अच्छा,
1: आज कानून उनको यह अधिकार देता है कि जो उन्होंने अपने पति की संपत्ति प्राप्त किया है उसको वो पूर्ण रूप से स्वामी की तरह उसका सुखाधिकार ले सकती हैं, उसको चाहे तो किसी को ट्रांसफर कर सकती हैं या उसको चाहे तो उसको बेच सकती हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये अब बदलाव आ गया है कि जो किसी भी विधवा को अगर अपने पति की संपत्ति पे अधिकार जो मिलता है, वो पूर्ण अधिकार का मतलब है कि वो उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकती है और उसको निस्तारित भी कर सकती
0: है। ये एक जानकारी है सखियों, कई बार हम नहीं जानते, हमें लगता है कि सिर्फ हम उसका जीवन यापन के लिए बस प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया प्रिंस लेनिन जी कि उसको हम अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार उसे हम बेच भी सकते हैं, उसको दान भी कर सकते हैं, उसका वसीयत भी करा सकते हैं, उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: ये अधिकार स्त्रियों के पास है जिन स्त्रियों के पति नहीं रह गए हैं। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये तो जो मृत पति है उसकी अपनी वैयक्तिक संपत्ति थी, उस पर ये अधिकार है, यदि पति की पैतृक संपत्ति है कोई, तो उस पर उस विधवा स्त्री को कितना अधिकार है?
1: देखिए जो पैतृक संपत्ति का जहां तक प्रश्न है, तो जो पति का अधिकार अपनी पैतृक संपत्ति पर जितना शेयर बनता है, उस शेयर का अधिकार वो उसकी पत्नी और उसके बच्चों तक जाता है।
0: अच्छा,
1: तो अगर कोई विधवा है वो अपने पति की निजी संपत्ति पे अधिकार तो रखती ही है, लेकिन साथ ही साथ जो पति की पैतृक संपत्ति में जो उसका शेयर है, संपूर्ण संपत्ति की बात नहीं होगी, जितना पति का शेयर बनता है उसकी वो अधिकारी है।
0: जी, तो ये भी स्त्रियां जाने कि भाई पति की निजी संपत्ति पे जो उनका पूर्ण स्वामित्व का अधिकार है, लेकिन जो पैतृक संपत्ति है पति की, उसमें जो पति का शेयर मिलना होगा वो अधिकार उस पत्नी को मिलेगा।

0: जी
1: अच्छा, कई बार ये प्रश्न उठता है कि मान लीजिए बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती है लड़की, तो माता पिता चाहते हैं कि पुनर्विवाह हो जाए उसका, तो क्या पुनर्विवाह का अधिकार है? और साथ साथ पुनर्विवाह के पश्चात क्या जो पति नहीं रह गया है पहला, उसकी संपत्ति पे भी उसका अधिकार बना रहेगा या वो समाप्त हो जाएगा?
0: नहीं, बहुत गंभीर प्रश्न है। और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें कम उम्र की विधवा हो या कोई भी विधवा हो जो दोबारा अपने जीवन को स्थापित करने के लिए, क्योंकि देखिए अकेले इस समाज में रहना काफी कठिनाई भरा होता है, जो समाज की परिस्थितियां हैं हमारे आसपास हम सब उससे अवगत हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए अगर वो दोबारा से पुनर्विवाह कर लेती हैं तो पहला तो उनका जो अधिकार है मृत पति की संपत्ति पे वो खत्म नहीं होता
1: जी।
0: उनका वो अधिकार बना रहता है,
1: ये जानना बहुत जरूरी
0: जी।
1: है
0: जी। और दूसरा कि उनको अपना पुनर्विवाह करने का जो अधिकार है वो कानून के द्वारा एक रिकॉग्नाइज्ड।
1: और जो पैतृक संपत्ति है उस पे अधिकार खत्म हो जाता है?
0: नहीं, पैतृक संपत्ति पे तो महिला का अपूर्ण रूप से अधिकार दिया जा चुका है 2005 के बाद, ये स्थापित कर दिया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स करके कि जो महिलाएं हैं उनको पुरुष की भांति ही को पैरेंसर माना गया है और उनको पूर्ण अधिकार दिया गया है अपनी पैतृक संपत्ति पे। पहले जैसे बेटों का ही हक माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति है उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं और तो बेटियों को अलग कर देते थे और संपत्ति का बंटवारा सिर्फ दो पुत्रों में होता था, नहीं, आज की तारीख में हर लड़की का अपने पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर का अधिकार है
1: जी। तो ये क्लियर हुआ कि जो पुनर्विवाह के बाद जो मृत पति है उसकी निजी संपत्ति पे उसका पूर्ण स्वामित्व होगा। आपने कहा माता पिता की संपत्ति जो पैतृक संपत्ति उस पर भी उसका अधिकार शेयर के अनुसार होगा, लेकिन जो ससुराल की जो पैतृक संपत्ति है क्या पुनर्विवाह के बाद वो अधिकार बना रहता है कि खत्म हो जाता है?
0: नहीं, पुनर्विवाह से संपत्ति का अधिकार कभी खत्म नहीं होता।
1: तो ये जानना सखियों बहुत जरूरी है। और उसके बाद तो आपने भरण पोषण की बात की कि यदि माली संपत्ति कोई नहीं है पति ने छोड़ी तो उनको ससुराल की तरफ से भरण पोषण का अधिकार भी प्राप्त है। स्त्री धन की बात करें तो क्या स्त्री धन पर उनका अधिकार तो बना ही रहता होगा?
0: आप जैसा जानते हैं कि स्त्री धन किसे कहते हैं, वो ऐसे गिफ्ट या कोई प्रॉपर्टी या कोई आभूषण जो किसी महिला को उसकी शादी से पहले या शादी के दौरान या किसी उत्सव पर या संतान की उत्पत्ति पर जो प्राप्त होते हैं तो वो उसका स्त्री धन कहलाता है और उस पर उसका अधिकार हमेशा बना रहता है। उसका अधिकार स्त्री धन से कहीं से भी अलग नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में तमाम कानूनी प्रावधान है, सेक्शन 14 आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, सेक्शन 12 DV डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रावधान है, सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो स्त्री धन का जो अधिकार है महिला का वो उसको प्रदान करता है
1: जी। अभी आपने बात की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, जो अधिकार आपने बताए, कई बार जब स्त्रियां इस अधिकार को प्राप्त करना चाहती हैं कि उन्हें उनके पति की संपत्ति पे अधिकार मिले, जो पैतृक संपत्ति है ससुराल की तरफ से उस पे भी अधिकार मिले, तो वो प्रताड़ित की जाती हैं अपने ही घर में, या तो उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए प्रेशर दिया जाता है या फिर उनको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है, संपत्ति से बेदखल किया जाता है। तो ऐसे में जो घरेलू हिंसा से बचने के जो अधिकार आम स्त्री को प्राप्त है, क्या वो अधिकार उस विधवा स्त्री को भी प्राप्त है?
0: जी बिल्कुल। देखिए, जो विधवा महिलाएं हैं उनको अक्सर इस बात का सामना करना पड़ता था कि पति की मृत्यु के उपरांत उनके घर वाले उनको निकालने पे आ जाते थे, घर से बेदखल करते थे। तो ऐसी महिलाओं के लिए जो सेक्शन 17 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है वो उनको ये अधिकार देता है कि वो अपने वैवाहिक घर में साझा रूप से उनको निवास करने को अधिकृत किया गया है। उनको अपने पति का जो घर है वहां से उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है
1: जी। ये तो आप बता रहे हैं कानून हमें अधिकार देता है, पर जब हम वास्तविक स्थिति में आते हैं तब हमारा कानून कितना उस समय मदद करता है, क्योंकि मान लीजिए स्त्री को बेदखल किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, जबरदस्ती वहाँ 10 लोग इकट्ठे हैं और एक अकेली स्त्री को निकाल रहे हैं बाहर, उसको संपत्ति देने से मना कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकती है? क्या पुलिस उसकी मदद कर सकती है? वो क्या करे कि उसको सुरक्षा प्रदान हो?
0: देखिये, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत व्यवहार, कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा होता है तो सबसे पहले तो पुलिस उसकी मदद के लिए बाध्य है, और ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने और इस देश की जो कानून व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने तमाम

0: हम ऐसी संस्थाएं बनाई हैं जिनको हम नालसा सालसा के नाम से जानते हैं, नेशनल लीगल एड सर्विसेज हैं, स्टेट लीगल एड सर्विसेज हैं, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 15100। आपके साथ अगर कोई भी गलत कार्य हो रहा है, आप महिला हैं, तो आपको निशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी, तत्परता से आपकी सहायता की जाएगी। आपको सिर्फ 15100 पे एक कॉल करनी है, वो कॉल आपके निकटतम सहायता केंद्र तक पहुंचेगी और आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
1: तो 15100 ये आप याद रखिए। और जैसा कि प्रिंस लेनिन ने बताया कि यदि आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे आप स्वयं अपने बचाव के साधन नहीं जुटा पा रही हैं, तो आप इस नंबर पे सहायता मांग सकती हैं। अच्छा, जो आपने ये लीगल एड की बात की, मुफ्त कानूनी सहायता मिलता है, तो यदि मान लीजिए कोई विधवा स्त्री है, वो जाना चाहती है कोर्ट तक अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए या अपने और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, तो क्या उनको कानूनी सहायता या मुफ्त में वकील भी प्रदान किए जाते हैं?
0: जी बिल्कुल, इसी व्यवस्था के जरिए आप जिस शहर में रहती हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल होता है, स्टेट लीगल सेल है, नेशनल लेवल पे लीगल सेल है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जिला अदालत में अपना कोई वाद दायर करना है संपत्ति से संबंधित, तो आपको निशुल्क सहायता मिलेगी। उसमें आपको एक वकील दिया जाएगा जिसका कार्य होगा आपको सारा परामर्श देना, सारी ड्राफ्टिंग करना, फाइलिंग करना। आपका एक पैसा भी नहीं खर्च होगा और आपकी तरफ से पूरा मुकदमा उस वकील के माध्यम से लड़ा जाए।
1: ये क्या सभी विधवा स्त्रियों को प्राप्त है या जिनके पास धन की कमी है उन्हें?
0: नहीं, ये सभी महिलाओं को प्राप्त है।
1: अच्छा।
0: ऐसी महिलाओं में विधवाएं भी आती हैं और कोई भी बुजुर्ग हो या युवा स्त्री हो, सारी स्त्रियों के लिए ये सुविधा इस देश में प्रदान की गई
1: है। धन की कोई आर्थिक
0: कोई इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं।
1: अभी जो आप हमें कानून की बात बता रहे हैं विधवा स्त्रियों के लिए, वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बता रहे हैं, क्या हमारी मुस्लिम बहनों के लिए भी इस तरह के कोई अधिकार है विधवा महिलाओं के?
0: जी, जो मुस्लिम विधवाएं होती हैं उनके लिए भी, उनकी जो मुस्लिम व्यक्तिगत विधि है उसके तहत उनका जो पति है उसका अगर देहांत होता है, तो अगर मृत पति की कोई संतान, बेटा या बेटी नहीं है, तो विधवा को उसकी संपत्ति में 1/4 हिस्सा प्राप्त होगा। और यदि मृत पति की कोई संतान मौजूद है तो विधवा को उस संपत्ति में 1/8 हिस्सा प्राप्त होता है। ऐसा मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान।
1: प्रिंस लेनिन जी, अभी आपने में बताया कि जो हमारा भारतीय कानून है वो किस तरह से हमारी उन स्त्रियों को जो अपने पति को खो चुकी हैं उनको अधिकार प्रदान करता है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने की सुरक्षा प्रदान करता है। एक बात मन में उठती, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं एक वकील होने के साथ साथ, जो हमारा समाज है ना वो कई बार ऐसी स्त्रियों के प्रति बहुत सम्मानजनक दृष्टि नहीं रखता। सामाजिक कुछ हमारे यहाँ शुभ कार्य होते हैं उनमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता है, पीछे रखा जाता है किसी भी उत्सव में, या उनको कोई निर्णय लेने का अधिकार हो तो वहाँ वो पीछे रह जाती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए, हमारा समाज, हमारे जो भाई बहन हैं वो किस तरह से अपने दृष्टिकोण को बदलें और इन स्त्रियों को पूरा सम्मान दें?
0: जी, आपने बहुत ही गंभीर और बहुत ही एक जरूरी प्रश्न उठाया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे विधिक अधिकार पे चर्चा तो हो चुकी है, लेकिन हम लोगों को सोचना पड़ेगा ऐसी महिलाओं के लिए जिनको हम विधवा कहते हैं, अगर हमारे परिवार में हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी ना किसी के यहाँ अगर शादी ब्याह का अगर अवसर होता है तो अगर माँ तक विधवा है तो उसको तमाम जो रीतियाँ हैं, जो पूजाएँ हैं, उसमें से अक्सर दूर कर दिया जाता है, किसी विवाहिता को उसकी जगह बैठाया जाता है। इन सब चीजों से हमको ऊपर उठना होगा। हमें हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, अगर किसी कारणवश वो विधवा होती हैं तो उनको किसी भी आयोजन से दूर नहीं रखना है। कैसा भी आपके यहाँ आयोजन हो उसमें उनको किसी भी तरह से अगर आप कहीं दूसरे दर्जे पे लेके जाते हैं, उनका मान सम्मान में अगर आप कमी करते हैं तो आप स्वयं अपराध कर रहे हैं। ईश्वर सबको समान नजर से देखता है, ये बात हम सबको पढ़े लिखे होने के नाते समझनी पड़ेगी। हमारे समाज में जो पूर्व से जो कुरीतियां चली आ रही थी उनको खत्म करना पड़ेगा और ऐसी महिलाओं को हमें हमेशा बराबरी का दर्जा देना चाहिए।
1: आज हमने बात की अपने बीच में रहने वाली हमारी उन बहनों की जो अनचिन्हे चेहरे रह जाते हैं, जिनकी समस्याएं अनदेखी रह जाती हैं, यानी हमारी

0: विधवा बहनों की बात की हमने, तो उन स्त्रियों के अधिकार के लिए भारतीय कानून जो विधिक सेवाएं प्रदान करता है, जो उनकी सहायता करता है, उसके साथ साथ सामाजिक रूप में भी हम सबको बदलने की ज़रूरत है, उनके प्रति सम्मान रखने की ज़रूरत है, सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत है और उनके अधिकार को छीनने की नहीं उनको देने की ज़रूरत है। और ये भावनाएं जब हम अपने अंदर पैदा करेंगे, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो हमारी ये सखियां भी हंसेंगी, मुस्कुराएंगी और समाज में हम सब के साथ बराबर कदम मिलाकर चलेंगी। तो प्रिंस लेनिन जी, आप हमारे बीच में आए और आपने विधिक जो बातें हमसे कही, साथ साथ आपने जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी भावनाएं प्रकट की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता। भारतीय कानून में विधवा स्त्रियों हेतु प्रदत्त अधिकार और सुरक्षा, जिसमें ममता उपाध्याय दी ने श्री प्रिंस लेनिन जी से विस्तार से बातचीत की और इस महत्वपूर्ण विषय को बहुत सरल और सहज ढंग से हमारे सामने रखा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: देखिए, धन्यवाद तभी पूरा होगा इरम कि जब ज़रूरतमंद महिलाएं इस नंबर का उपयोग करें, जो कि नंबर है 1500, नंबर का उपयोग अवश्य करें। और देखिए इरम, आज की चर्चा से ये बात स्पष्ट हो गई है कि विधवा महिलाओं के लिए कानून में कई अधिकार और सुरक्षा का प्रावधान है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन अक्सर देखा गया है ना कि जानकारी के अभाव में वो लाभ नहीं उठा पाती हैं।
2: और कई बार तो हमारे आसपास ऐसी ही महिलाएं होती हैं जो चुपचाप अपने संघर्ष से जूझ रही होती हैं। उनके चेहरे तो हमारे हम सबके सामने दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी परेशानियां, उनकी चिंताएं और उनकी ज़रूरतें अनदेखी रह जाती हैं।
3: और कई स्थानों पर उन्हें अपनी इच्छा से जीने की स्वतंत्रता भी नहीं मिलती है। और तो और, कुछ महिलाओं को तो श्रृंगार करने, अपनी पसंदीदा वस्त्र पहनने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका तक जाता है। और पता है, उन्हें बुरी दृष्टि से भी देखा जाता है।
2: और कई बार तो उन्हें पैतृक और वैवाहिक संपत्ति के अधिकार से वंचित भी कर दिया जाता है। और तो और, उनकी उपस्थिति शुभ अवसरों पर अच्छी नहीं मानी जाती है, जो लैंगिक समानता और मानव गरिमा के विरुद्ध है।
3: बिल्कुल। कानून भी उन्हें समान अधिकार देता है। महिलाओं को चाहिए कि इन लाभों का उपयोग करें और समाज को भी अपनी संकीर्ण मानसिकता को अवश्य बदलना चाहिए। और तो और, महिलाओं को ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो अकेली नहीं है।
2: बिल्कुल। और सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे विधवा पेंशन योजना और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं के आर्थिक सहायता मिले।
3: बिल्कुल। इसके अलावा कई सारे स्वयं सहायता समूह भी हैं, कौशल प्रशिक्षण है, स्वरोजगार कार्यक्रम हैं, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले।
2: और तो और, वो अपने पैरों पे इस तरह से खड़ी भी हो सकती हैं। और ये सब बहुत ज़रूरी है। इन योजनाओं का लाभ तभी मिल पाएगा जब सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुँचे।
3: बिल्कुल। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई महिला है तो उसकी मदद अवश्य करें।
2: एक छोटी सी जानकारी किसी के जीवन में नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास लेकर आती है। इसलिए अदृश्य चेहरे, अदृश्य समस्याएं केवल एक संदेश नहीं बल्कि हम सब के लिए सोचने का विषय है। हमें ऐसी महिलाओं की बात सुननी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि वे अकेली नहीं हैं।
3: और तो और, संवेदनशील और सशक्त समाज की पहचान ये है कि एक दूसरे का हाथ थाम करके हम आगे बढ़ें।
2: छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंचाए जा सकते हैं। अब इन गिलहरियों को ही देख लो।

0: सोनिका, इन गिलहरियों की तरह हम तभी खुश रह सकते हैं जब हम स्वस्थ हों, क्या कहती हो?
1: बिल्कुल। और देखो, 21 जून को हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है ना, और ये दिवस यही संदेश देता है कि हर दिन का करे सम्मान, यही है स्वस्थ जीवन की पहचान।
0: एक आयोजन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ते हुए कदम हमें बढ़ाने चाहिए।
1: बिल्कुल, योग केवल इस दिन तक ही हम सीमित नहीं रखेंगे और हम ये चाहेंगे कि हम रोज योग करें, है ना?
0: बिल्कुल। और वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। सखियों, कार्यक्रम में आप अपनी चिट्ठियों के जरिए आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं और ईमेल के द्वारा भी आप हमें अपने विचार दे सकते हैं। तो वक्त हो चला है सुनने का, हमें इजाज़त दीजिए सखियों।
1: पुनः किसी कार्यक्रम में भेंट करेंगे, तब तक के मुझे यानी सोनिका और
0: इरम को
1: दीजिए अनुमति। नमस्कार,
0: नमस्कार।

फौजी साथियों जय हिंद। पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम जवानों के लिए में आज मैं मंजरी निगम हूं आपके साथ। तो आइए लेते हैं आज का पहला ईमेल और ये भेजा है हमें राम खिलावन कुरसत जी ने। ये लिखते हैं, जो इंसान अपने इरादों में मजबूत होता है उसे कोई भी मुश्किल ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। बिल्कुल सही बात कही है आपने राम खिलावन जी। और इनके साथ लिखने वालों में हैं अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव, राम प्रसाद, देवी शंकर शुक्ला, विजय पाल यादव और कृष्ण कुमार सिंह कुरसत। और आज ये सुनना चाहते हैं एक बेहद ही प्यारा सा गीत। चलिए सुनवा देते हैं इनके साथ आपको भी ये गाना।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: जो अगला ईमेल हमें मिला है वो है किसान रेडियो क्लब ग्रामवा पोस्ट ललहौआ जिला खीरी, और लिखने वाले हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, ऋचा यादव, शिखा गुड़िया, बबलू व विजय पांडे जी। और ये लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपके केंद्र का नियमित एवं पुराना श्रोता हूँ। आप सभी की मधुर आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज ये सुनना चाहते हैं फिल्म नया दौर का ये बेहद ही रोमांटिक नंबर, और इस गीत पे ज़रूर उम्मीद है कि आप सबके पैर थिरक जाएंगे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: अगला ईमेल हमें भेजने वाले हैं राम शरण जी, और ये लिखते हैं आदरणीय मंजरी दीदी जी, प्यार भरा नमस्कार। इनके साथ में और जो लिख रहे हैं वो हैं, जिस ईमेल को इन्होंने भेजा है उसमें हैं साहिल, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। ये लिखते हैं ग्राम मामना, ज़िला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, और ये आज सुनना चाहते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अगले गीत की फरमाइश हमसे की है नेपा नगर मध्य प्रदेश से, प्रभु दयाल शिवदे शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे ने, और इसकी रिक्वेस्ट हमें आई है सीतापुर से। लिखने वाले हैं मनोज अग्रवाल और सोनल अग्रवाल, और ये दोनों ही लोग सुनना चाहते हैं फिल्म साथ साथ का जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

फौजी साथियों, जवानों के लिए कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके mail@gmail.com। फौजी साथियों, जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए, ये आकाशवाणी लखनऊ है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा अब से बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हुरमुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के अधिक

0: हर एक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूट जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
3: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया।

0: जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी लखनऊ है। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम विज्ञान और किसान। धान की फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, इस विषय पर भेंट वार्ता होगी जसवीर सिंह से और भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में आप धान उत्पादन से जुड़े हैं, चाहे आप धान की सीधी बुआई कर रहे हैं या धान की रोपाई करने जा रहे हैं, तो फसल की भूख कैसे मिटाएं, इसके लिए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं इफको उत्तर प्रदेश से उप महाप्रबंधक जसबीर सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब, ये बताएं कि धान की फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले ये बताएं कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है क्या?
3: किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो धान की फसल को जो हम पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं वो खाद के अतिरिक्त दूसरे अन्य माध्यमों से भी, जैसे कि जैविक खादों का प्रयोग, गोबर की खाद, हरी खाद, जैव उर्वरक, नैनो उर्वरक इत्यादि दूसरे माध्यमों से भी जो इन पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की विधि है उसको हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं।
2: ताकि माटी की सेहत भी लंबे समय तक सुरक्षित रहे और पैदावार भी अच्छी मिले।
3: जी निश्चित रूप से, अगर हम पोषक तत्वों का समन्वित प्रबंधन करेंगे तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहेगी, लंबे टाइम तक जो है हमारी मिट्टी की सेहत ठीक रहेगी और हमको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा।
2: चूंकि धान में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की बात चल रही है तो इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं?
3: इसमें 3-4 प्रमुख घटक हैं किसान भाइयों। हम बात करते हैं पहले घटक जैविक खाद और हरी खाद के बारे में। जैविक खाद जो है आपका गोबर की खाद है, कंपोस्ट है। इसमें हमको क्या करना चाहिए कि 1 एकड़ में 40 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट जो है
2: 40 कुंतल
3: प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद का प्रयोग सड़ी हुई का करना चाहिए। दूसरा घटक जो है वो हरी खाद का है। हरी खाद के लिए हमको जो है रोपाई से 50-60 दिन पहले जो है ढेंचा है, सनई है या लोबिया है उसकी बुवाई करनी चाहिए और रोपाई से पहले जो है उसको पलट के अच्छी तरह से खेत में मिला देना चाहिए।
2: तो इससे जैविक कार्बन भी बढ़ेगा और खुराक भी मिलेगी।
3: निश्चित रूप से इससे जो है हमारी जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और उत्पादन भी इससे हमारा बढ़ेगा।
2: दूसरा घटक
3: अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक हैं जिन्हें किसान भाई सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम ये करें कि मिट्टी की जाँच करवा लें और मिट्टी की जाँच करवाने के बाद जो है उसकी संस्तुति के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है खेत में डालें। सामान्य तौर पे जो वैज्ञानिक संस्तुति है उसमें 120

0: 60 फास्फोरस और 40 पोटास की मात्रा दी जाती है, लेकिन अगर हम
1: ढाई
0: इसकी
1: एकड़ में?
0: 2.5 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में। तीसरा जो है, अगर हम बात करें तो इसमें आपका यूरिया और डीएपी की बात करें, तो यूरिया के लिए 3-4 बार में हमें यूरिया की मात्रा विभाजन करके डालनी चाहिए,
1: धान की फसल में
0: धान की
1: खासकर
0: फसल में,
1: स्प्लिट
0: खासकर
1: डोज?
0: स्प्लिट डोज। एक जो है हमें जो है आधार डोज जो होता है जिसे बेसल डोज कहते हैं, दूसरा जो है कल्ले निकलने पर, तीसरा जो है बालियां निकलने पर हमको जो है यूरिया का प्रयोग करना चाहिए 3-4 डोज में, और उसी प्रकार जो फास्फोरस है वो हमको बुवाई के समय प्रयोग करनी
1: और
0: चाहिए,
1: पोटास भी?
0: और पोटास भी जो है बुवाई के समय हमको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा तीसरे घटक की अगर हम बात करें तो आपके आते हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक को हम अंग्रेजी में बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, और आजकल विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक बाजार में उपलब्ध हैं। विशेष रूप से हम बात करेंगे एनपीके कंसोर्टिया की, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है तीनों ही तत्व तो हमको मिल जाते हैं। इसके लिए हमको 10 मिलीलीटर मात्रा जो है उसको 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम
1: या बीज शोधन में?
0: बीज शोधन में इसको सामान्य तौर पर अगर हम बताएं तो आधा लीटर एनपीके कंसोर्टिया को जो है 1 एकड़ में हमें प्रयोग करना चाहिए बीज शोधन के लिए,
1: यानी भूमि शोधन के लिए?
0: भूमि शोधन के लिए। और अगर जैसे हम इसका जड़ शोधन कर रहे हैं, एनपीके कंसोर्टिया की जो है 10 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पर पानी मिलाने के बाद जो है धान की जड़ों को डुबो के उसको जो है 15-20 मिनट सुखा के उसके बाद हमको इसकी रोपाई करनी
1: यानी
0: चाहिए।
1: पौध जड़ उपचार करके रोपाई
0: पौध
1: करेंगे तो असर अच्छा होगा।
0: बिल्कुल अच्छा असर होगा।
1: आजकल ढेर सारे स्मार्ट उर्वरक भी आ गए हैं, इनका प्रयोग समन्वित पोषक तत्व तो प्रबंधन में कैसे हो सिंह साहब?
0: समन्वित पोषक तत्व तो प्रबंधन के लिए जो स्मार्ट उर्वरक हैं जिनमें विशेष रूप से नैनो उर्वरक हैं उनका प्रयोग हमको अवश्य करने चाहिए, और नैनो उर्वरकों में अगर हम बात करें तो नैनो डीएपी से हम प्रारंभ करते हैं। नैनो डीएपी जो है वो 4 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाएं, और इससे जो है हमारी पौध है उसको इस मिश्रित पानी से डुबोकर उसके बाद इसकी 15-20 मिनट पौध को हमें सुखाना है।
1: यानी पौध जड़ उपचार करें नैनो डीएपी से,
0: जी,
1: और जहां नर्सरी डालने जा रहे हैं
0: नर्सरी डालने
1: वहां
0: अगर
1: बीज
0: हम
1: शोधन?
0: वहाँ हमको बीज शोधन करना चाहिए। बीज शोधन के लिए हम 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाएंगे
1: प्रति किलोग्राम बीज?
0: प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो पानी की मात्रा को हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे जिससे कि बीज में अच्छी तरह से ये नैनो डीएपी हमारी लिपट जाए, और उसके बाद जो है हम अगर सीधी बुवाई कर रहे हैं तो इसके लिए कर सकते हैं, या इसकी नर्सरी भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम जो है जब रोपाई करेंगे उस समय भी जो है इसकी जड़ों का शोधन भी 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी को 1 लीटर पानी में मिलाकर, यानी कि हमारी जो 500 मिलीलीटर की एक बोतल होती है नैनो डीएपी की वो 1 एकड़ बुवाई के लिए लगभग पर्याप्त हो जाती है,
1: यानी जहां धान की सीधी बुआई कर रहे
0: जहाँ
1: हैं।
0: सीधी बुवाई हो जाती है।
1: फिर खड़ी फसल में कब कब इन नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया तरल का?
0: खड़ी फसल में जो है जब हमारी फसल लगभग 35 दिन की हो जाए उस समय जो है नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। 5 मिलीलीटर जो है नैनो डीएपी और 5 मिलीलीटर नैनो यूरिया दोनों को एक साथ मिलाकर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या सुविधा के हिसाब से अगर आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको जो है 5 मिलीलीटर को जो है 1 लीटर पानी में मिलाना है, और हमारी एक बोतल जो है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाती
1: यानी
0: है।
1: आधा लीटर जो मात्रा है नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी की, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है।
0: जी बिल्कुल, जो हमारी पानी की टंकी होती है 15 लीटर वाली उसमें 60 मिलीलीटर मात्रा नैनो यूरिया और 60 मिलीलीटर नैनो डीएपी,
1: यानी ढाई ढक्कन।
0: ढाई ढक्कन लगभग जो मिला के, और उसके बाद जो है हम एक टंकी करेंगे तो करीब जो है 6-7 टंकी में हमारा काम चल जाता है 1 एकड़ में।
1: सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की फसल में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।

0: किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 99 56 39 12 43, 99 56 39 1 24 3, 99 56 39 12 43।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का धान की फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में सिंह साहब?
0: किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से हमारी जो मिट्टी की संरचना है और उर्वरा शक्ति जो है धीरे धीरे कम हो रही है, उत्पादन भी स्थिर हो रहा है। इसलिए अगर हम पोषक तत्वों का समन्वित रूप से प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी भी सेहतमंद होगी और हमको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। इसलिए जो कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व बताए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए हमें धान की फसल लें तो ज़्यादा लाभ होगा।
1: यानी अधिक से अधिक जीवांश वाली खादें, हरी खादों का प्रयोग करें, रासायनिक खादों की संतुलित मात्रा प्रयोग करें, जीवाणु खादों का प्रयोग बढ़ाएं और जो स्मार्ट उर्वरक हैं, नैनो उर्वरक, उनका भी प्रयोग बढ़ाएं ताकि धान की फसल की भूख संतुलित रूप से मिट सके। जसबीर सिंह साहब आज आप कार्यक्रम में आए और धान की फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कैसे हो इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे धान की फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन इस विषय पर जसवीर सिंह से की गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कार्यक्रम विज्ञान और किसान में आज बस इतना ही। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सुशीला पुत्री तेजपाल, निवासी देवनाथपुर, थाना कासिमपुर, जनपद हरदोई से दिनांक 29 मई 2026 से लापता हैं। सुशीला की उम्र 30 वर्ष, चेहरा लंबा, कद लगभग 5 फीट, रंगे हुआ व बाल काले हैं। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था। इनके मिलने की सूचना आप बताए गए पते पर दे सकते हैं। गोमती देवी, पुत्री वीरभान, थाना लोनार, जनपद हरदोई से दिनांक 26 मई 2026 से लापता हैं। गोमती देवी की आयु 18 वर्ष, इकहरा बदन, चेहरा गोल, आंखें काली व कद लगभग 5 फीट है। इनका रंग गोरा व बाल काले हैं। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने काले रंग की कुर्ती, काली सलवार व दुपट्टा पहना हुआ था। इनके मिलने की सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8931224478। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8931224478। श्रीमती गीता, पत्नी राधेश्याम, निवासी जमुनिया पुरवा, थाना लोनार, जिला हरदोई से दिनांक 8 जून 2026 से लापता हैं। गीता की उम्र 22 वर्ष, चेहरा गोल, इकहरा बदन, आंखें काली व कद लगभग 5.5 फीट है। इनका रंगे हुआ व बाल काले हैं। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने लाल रंग की साड़ी व काली सैंडल पहनी हुई थी। इनके दाहिने पैर में चोट है जिसकी वजह से ये विकलांग हो चुकी हैं। इनके मिलने की सूचना इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8851619670। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8851619670। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
3: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में आज आनंद लीजिएगा डॉक्टर रंजना अग्रहरी द्वारा गाए गए अवधी लोकगीतों का। आइए शुरुआत करते हैं पूर्वी से।

लोकमाधुरी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना अग्रहरी द्वारा गाए गए अवधि लोकगीत। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रम लेकर शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है। आरंभ हो रही है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से विभूषित होने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करेंगी। मैं शालिनी मित्तल अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर नितेश अरोड़ा के साथ आकाशवाणी की ओर से इस गरिमामय समारोह का सीधा प्रसारण आप तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मौजूद हैं। ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले उन व्यक्तित्वों के प्रति भारत की सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा, गरिमामय वातावरण और राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति समारोह की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, अपना अपना स्थान ले चुके हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही साथ और मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसद सदस्य, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां और गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही गौरव के साथ उपस्थित हैं वो पद्म पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य जिन्हें आज देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नितेश,
1: a warm welcome to all the listeners of Akashvani from Ganatantra Mandap, Rashtrapati Bhavan. In a short while from now, Honorable President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards 2026 at the second civil investiture ceremony of this year. The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinguished and is of work of distinction, and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines including art, literature, education, sports, medicine, social work, science, engineering, public affairs and trade and industry.
0: और नितेश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ गए हैं क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में। सभी को नमस्कार करते हुए,
1: well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud moment, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in lifetime.
0: Indeed, बिल्कुल सही कहा नितेश, यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है। ये सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ की

सब्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम खेल दर्पण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति होगी। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर कार्यक्रम युवा तरंग में युवा श्रोता सुनेंगे रमेश चंद्र तिवारी की वार्ता धरोहर सरस्वती नदी नई उड़ान। ये कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में शोभित शर्मा से सुनिएगा उद्यमिका महिला स्वयं समूहों की सफलता सशक्त महिलाएं सफल बदलाव। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे वार्ता आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण सहभागिता। वार्ताकार होंगे सुनील कुमार सिंह। खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक इस विषय पर डॉक्टर परमेंद्र सिंह से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी में शाम 6:50 पर। शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होगा शिव ओम अंबर का काव्य पाठ। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर सुनिएगा अंकित सिंह का ख्याल गायन। भूपेंद्र सिंह की गाई गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 8:10 पर। हेलो मेरी पसंद फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा आज रात्रि 9:30 पर। ये थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 10:10 पर आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। जिले की हलचल आप सुनते हैं सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा उर्दू प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोरखपुर की पेशकश होगी। कल प्रातः 6:05 पर कृषि चर्चा में जानिएगा खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में। सालार आयुर्वेद की एक प्रभावी औषधि इस विषय पर नीना सोनकर की वार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। समय रहेगा प्रातः 7 बजे। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। विषय होगा खुशी विकल्प अथवा परिणाम। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम आंगनवाड़ी में आप सुनेंगे गर्मी के मौसम में क्यों होता है पाचन तंत्र कमजोर। इस विषय पर डॉक्टर अभय वर्मा से नीना सोनकर की बातचीत। खरीफ में बीज उत्पादन तकनीक डॉक्टर अर्चना देवी से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की ये भेंटवार्ता प्रसारित होगी कार्यक्रम विज्ञान और किसान में कल दिन में 2:30 से। शाम 5:10 पर कार्यक्रम युवा तरंग में युवा श्रोता सुनेंगे डॉक्टर पी कुंवर से की गई भेंटवार्ता वनों के संरक्षण में रिमोट असेसिंग तकनीक का उपयोग। नई उड़ान ये कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में अमिता चित्रांशी से सुनिएगा लोकतंत्र में नागरिक अभिव्यक्ति जनस्वर और लोकतंत्र। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। विषय होंगे फल फूल और सब्जियों में सामयिक प्रबंधन खरीफ में सब्जी उत्पादन फलदार वृक्षों की सघन बागवानी फूल उत्पादन मशरूम उत्पादन और मौन पालन। प्रस्तुति एवं संचालन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। शाम 7:31 पर होगा कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा विधवा महिलाओं के अधिकार। इस विषय पर सुनीति सचान एडवोकेट हाईकोर्ट से सुमोना एस पांडे की बातचीत। बातों बातों में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:45 पर। रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होगी वार्ता मौलिक अधिकार और मानवाधिकार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पार्थ प्रतिम दास का ख्याल गायन सुबह 7:31 पर और उसके बाद रात्रि 10:30 पर। श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति आप सुनते हैं सुबह 6:43 पर। मुकेश गुप्ता के गाय भोजपुरी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम लोक रंग में कल सुबह 9:50 पर और कार्यक्रम लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। जगजीत सिंह की गाई गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात्रि 8:10 पर। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा कल सुबह 11 बजे से। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। स्टूडियो से लाइव हूं मैं कशिश सोरेन हुसैन और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
1: आयुषी।
0: दोस्तों, आज है दिन मंगलवार का और सप्ताह का ये दिन हमारे उन श्रोताओं के नाम है जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी जानकारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार रखना चाहते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, ज्ञान की दुनिया बहुत विशाल है। कभी इतिहास हमें अतीत की झलक दिखाता है, कभी विज्ञान नई खोजों से हमें चौंका देता है, कभी संविधान और राजनीति हमारे देश की व्यवस्था को समझने का अवसर देते हैं, तो कभी गणित और तर्क शक्ति हमारी सोचने की क्षमता को परखते हैं।
0: और इन्हीं सभी विषयों को लेकर हर मंगलवार हम लेकर आते हैं प्रश्नोत्तरी का सेगमेंट, जहां हर प्रश्न केवल एक सवाल नहीं होता है बल्कि एक नई जानकारी, एक नया तथ्य और एक नया सीखने का अवसर लेकर आता है।
1: तो चाहे आप छात्र हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हो, आज का ये सफर आपके लिए बेहद रोचक होने वाला है।
0: और हमेशा की तरह आज भी हम आपके सामने रखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी जानकारी, आपकी समझ और आपकी विश्लेषण क्षमता तीनों की परीक्षा लेंगे।
1: आप प्रश्न सुनते जाइए, अपने उत्तर नोट करते जाइए और इस सेगमेंट के अंत में हम सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपके साथ साझा करेंगे।
0: तो चलिए, समय हो गया है अपने ज्ञान की कसौटी पर खुद को परखने का।
1: तो शुरू करते हैं प्रतियोगी ज्ञान संग्राम। तो हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के एक अनुच्छेद को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था क्योंकि ये नागरिकों को अपने फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो बताइए वो अनुच्छेद कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 226।
0: तो दोस्तों, जब तक आप इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तब तक के लिए एक और प्रश्न हम आपके सामने साझा करते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक ऐसे नेता का नाम आता है जिन्हें उनके अहिंसक संघर्ष और महात्मा गांधी के विचारों से निकटता के कारण फ्रंटियर गांधी कहा गया था। तो बताइए ये उपाधि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी। आपके विकल्प कुछ इस तरीके से है, पहला विकल्प है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, दूसरा विकल्प है खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन सी है यानी तीसरा विकल्प है अशफाकुल्ला खान और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से बताइए कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था।
1: चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर और हमारा ये क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा माना जाता है जो पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी सुंदरबंस, ऑप्शन सी अमेज़न रेन फॉरेस्ट या ऑप्शन डी डेंट्री रेन फॉरेस्ट।
0: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका पेन और या फिर पेंसिल और पेपर आपके साथ है क्योंकि प्रश्न एक के बाद एक हम आपके समक्ष लाते जा रहे हैं। तो अब शुरू हो जाइए प्रश्न चार का उत्तर देने के लिए। तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन हैं 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 52nd अमेंडमेंट या ऑप्शन डी 61st अमेंडमेंट।
1: अब बात कर लेते हैं प्रश्न पांच की। तो हमारा प्रश्न पांच है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है।

0: ध्यान रखिए, हार्मोन पूछा गया है जिसकी कमी से डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलाइन या फिर ऑप्शन डी एस्ट्रोजन।
1: दोस्तों अब अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सिंपल सा सवाल है कि हमारे यूनिवर्स में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वीनस,

0: सिंपल सा सवाल है कि हमारे यूनिवर्स में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स और ऑप्शन डी मर्क्यूरी।
1: अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न सात की। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम रेड ब्लड सेल्स करते हैं। इनमें मौजूदा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मेलानिन या फिर ऑप्शन डी कोलाजन।
0: दोस्तों, अब प्रश्न आठ की बारी आती है। तो हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, सबसे पहले रेवोल्यूशन यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, ऑप्शन बी है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, आपका ऑप्शन सी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी कि रोटेशन, और ऑप्शन डी है सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमना।
1: अब बात करते हैं प्रश्न नौ की। हमारा प्रश्न नौ है, भारत में मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई, बैंकिंग प्रणाली के विनियम और मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के संचालन की प्रमुख जिम्मेदारी किस संस्था के पास होती है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड।
0: और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आखिरी सवाल का। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के उद्देश्य से किया गया पेरिस अग्रीमेंट किस वर्ष अपनाया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वर्ष 2012, ऑप्शन बी वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2015 और ऑप्शन डी वर्ष 2018। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे और आपने जल्दी से जल्दी इनके जवाब लिख लिए होंगे। अगर कोई सवाल बच गया है आपको उत्तर देने से तो आप ज़रूर उनके उत्तर लिखिए, क्योंकि अब हम शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: तो श्रोताओं, अब समय है अपने उत्तरों को परखने का। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों के सही उत्तर जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न संविधान के उस आर्टिकल से जुड़ा था जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 32 यानी ऑप्शन सी।
1: दोस्तों, दूसरा प्रश्न फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के बारे में था और इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि ऑप्शन बी।
0: तीसरा प्रश्न विश्व के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में था और इसका सही ऑप्शन है अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी कि ऑप्शन सी।
1: चौथा प्रश्न फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ने वाले अमेंडमेंट से संबंधित था। सही उत्तर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि ऑप्शन ए।
0: पांचवा प्रश्न ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के बारे में था। इसका सही उत्तर है इंसुलिन यानी कि ऑप्शन बी। इंसुलिन पैनक्रियाज द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी या कार्य में गड़बड़ी होने पर डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है।
1: अब बात करते हैं छठे सवाल की जिसमें पूछा गया था कि कौन सा ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपका उत्तर ऑप्शन सी यानी मार्स या मंगल ग्रह था तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मार्स की सतह पर मौजूद आयन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है और इसी वजह से इसे पूरी दुनिया में रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है।
0: हमारे सेवेंथ क्वेश्चन यानी कि सातवें प्रश्न में पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए किस सब्सटेंस का उपयोग करते थे। उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हीमोग्लोबिन। यही वो प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
1: और अब समय है आठवें प्रश्न के उत्तर का। प्रश्न था पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। तो यदि आपका उत्तर ऑप्शन सी यानी कि रोटेशन था तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है और जो भाग सूर्य के विपरीत होता है वहां रात होती है।
0: अब आते हैं हमारे नौवें प्रश्न पर। प्रश्न था भारत में मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई बैंकिंग प्रणाली के विनियम और

0: मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के संचालन की प्रमुख जिम्मेदारी किस संस्थान के पास होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति बनाता है, मुद्रा का निर्गमन करता है और बैंकिंग व्यवस्था का विनियम और नियंत्रण करता है।
1: और अब आज के अंतिम प्रश्न का उत्तर। प्रश्न था जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस अग्रीमेंट के बारे में। तो यदि आपने ऑप्शन सी यानी 2015 चुना था तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पेरिस अग्रीमेंट को दिसंबर 2015 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। तो श्रोताओं, अब अपने उत्तरों का मिलान कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर कितना रहा।
0: बिल्कुल, अगर आपके अधिकांश उत्तर सही रहे तो बहुत बहुत बधाई, और कुछ उत्तर गलत हुए तो चिंता की कोई बात नहीं है। हर प्रश्न अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है।
1: ज्ञान का सफर कभी समाप्त नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखना और उसे समझना ही सफलता की ओर पहला कदम है।
0: अगर आज कुछ प्रश्न कठिन लगे हो तो उन्हें दोबारा पढ़िए, उनके बारे में और जानकारी जुटाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए।
1: अगले मंगलवार हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए प्रश्न, कुछ नई चुनौतियाँ।
0: तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आपको एक वार्ता सुनाने का, जिसका विषय है धरोहर सरस्वती नदी। वार्ताकार हैं श्री रमेश चंद्र तिवारी। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: सरस्वती हमारे देश की बहुचर्चित नदी है, लेकिन इसको जानने की उत्सुकता भी लोगों में रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सरस्वती नदी हमारे देश की पौराणिक नदियों में से एक थी। इसके अस्तित्व का प्रमाण प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक शोधों में हड़प्पा की सभ्यता से लेकर वैदिक काल होते हुए उत्तर वैदिक काल तक मिलता है, क्योंकि उसके अंत तक यह नदी भूकंप से भूगर्भीय परिवर्तन के कारण लुप्त हो गई थी। उपलब्ध सूत्रों से पता चलता है कि यह एक विशाल नदी थी जो उत्तराखंड हिमालय के यमुनोत्री क्षेत्र से निकलकर हरियाणा राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ से लगे हुए अरब सागर में मिल जाती थी। सरस्वती नदी सिंधु घाटी की सभ्यता की साक्षी थी। आगे चलकर उसने वैदिक सभ्यता के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया, क्योंकि इसी के तट के पास रहकर एवं इसके पानी का सेवन करके ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया था। इसी के किनारे महर्षि व्यास ने पुराणों की रचना की थी। सरस्वती नदी भारतीय संस्कृति और उसकी पृष्ठभूमि पर विकसित हुई विभिन्न सभ्यताओं की जननी है। प्राचीन भारत की एक सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी और सरस्वती नदी के क्षेत्र में विस्तृत थी। इस सभ्यता का प्रारंभिक विकास 7500 ईसा पूर्व सिंधु और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। पौराणिक वैदिक ग्रंथों के संदर्भों के आधार पर कई भू विज्ञानी मानते हैं कि उस समय हरियाणा से राजस्थान होकर बहने वाली मौजूदा सूखी हुई घग्घर हकरा नदी वैदिक सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी थी, और 2600 ईसा पूर्व लुप्त हुई दृष्टावती और हिरण्यवती नदियां भी सरस्वती की सहायक नदियां थीं। देश में जितनी भी पुरातात्विक सभ्यताएं मिली हैं, उनमें से 70% से ज्यादा सरस्वती नदी के पेलियो चैनल पर ही मिली हैं, चाहे वो हरियाणा की आदि बद्री, कुरुक्षेत्र, कुणाल, बिरधाना, राखीगढ़ी हो, या फिर राजस्थान की कालीबंगा, पीलीबंगा हो, या गुजरात के लोथाल और धौलावीरा हो। धौलावीरा कच्छ जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। यहाँ पर सरस्वती नदी सहित 10,000 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। पौराणिक ग्रंथों तथा वेदों में सरस्वती नदी को नदीतमा की उपाधि दी गई है। इसे सर्वश्रेष्ठ माँ, सर्वश्रेष्ठ नदी, सर्वश्रेष्ठ देवी से संबोधित किया गया है। इसे दूध और घी से परिपूर्ण गाय की तरह पालन करने वाली एवं सप्त सिंधु नदियों की जननी बताया गया है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलज के

पूर्व में बहती हुई बताया गया है। यह एक विशाल नदी थी, यह सर्वदा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे प्रचुर मात्रा में अन्न की पैदावार होती थी, इसलिए इसका अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि पांच नदियां अपने पूरे प्रवाह के साथ सरस्वती नदी में प्रविष्ट होती थीं। ये पांच नदियां पंजाब की सतलज, राबी, ब्यास, चेनाव और दृष्टावती हो सकती हैं, जिनके संगम के सूखे हुए अवशेष राजस्थान के जैसलमेर के निकट पंचभद्र तीर्थ पर देखे जा सकते। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में भरत के कैकेय देश से अयोध्या आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन है। कैकेयी रामायण तथा परवर्ती काल में पंजाब का एक जनपद था। ऋग्वेद के बाद वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद की रचना वैदिक या श्रुति साहित्य के नाम से हुई, जिसमें सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री के पास प्लक्ष प्रशमन के होने का संदर्भ आया है। साथ ही इसके विलुप्त होने का उल्लेख भी है। उत्तर वैदिक काल में सरस्वती नदी लुप्त तो हो चुकी थी, परंतु अब भी वो वाणी विद्या की देवी, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की अर्धांगिनी के रूप में वंदनीय थी। उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे तांडय और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है, किंतु पूरी तरह से नहीं, क्योंकि बरसात के मौसम में यह पानी से भर जाया करती थी। सरस्वती नदी और दधीच ऋषि के विभिन्न पुत्रों का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। उसी संदर्भ में सातवीं शताब्दी के संस्कृत महाकवि बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में लिखा है कि एक बार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण ऋषिगण सरस्वती का क्षेत्र छोड़कर अलग चले गए, परंतु सरस्वती पुत्र सारस्वते यहाँ से नहीं गया। फिर सुकाल के समय जब ऋषि वापस लौटे तो वह सब वेद आदि भूल चुके थे। सारस्वते ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और पुनः श्रुतियों का पाठ करवाया। श्रीमद् भागवत एवं मनुसंहिता के अनुसार सरस्वती और उसकी सहायक नदी दृष्टवती के बीच का भूभाग ब्रह्मावर्त कहलाता था, जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र हो सकता है। मेघदूत पूर्व मेघ में कालिदास ने वर्णन किया है कि ब्रह्मावर्त में इन दोनों नदियों के संगम पर ऋषियों ने वेदों तथा अन्य धर्मशास्त्रों की रचना की थी। आज वहां जलाशय है। वैज्ञानिक और भूगर्भीय खोजों से पता चला है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व तक भूगर्भी बदलाव की वजह से सतलज एवं द्वदशी वैज्ञानिक और भूगर्भीय खोजों से पता चला है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व तक भूगर्भी बदलाव की वजह से सतलज एवं द्वस्वती, जिसे अब यमुना कहा जाता है, ने अपना रास्ता बदल दिया। यही वह काल था जब सरस्वती का जल यमुना में मिल गया और वह लुप्त हो गई। कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकर यह गंगा तथा यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई। वैदिक साहित्य को दोहराते हुए महाभारत भी स्पष्ट करता है कि सरस्वती नदी जो प्लक्ष अर्थात यमुनोत्री के पास से आदिबद्री आती थी, वही आगे मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त हो गई। उसमें सरस्वती नदी को प्लक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती भी कहा गया है तथा इसके तटवर्ती सभी तीर्थों का वर्णन सविस्तार दिया गया है। वर्णन आता है कि बलराम जी ने इसके तट के समानांतर प्लक्ष से प्रभास क्षेत्र अर्थात कक्ष के रण तक की तीर्थ यात्रा की थी। ये भी उल्लेख आता है कि राजाओं ने सरस्वती तट के समीप कई यज्ञ किए थे। वर्तमान सूखी हुई सरस्वती नदी के समानांतर खुदाई में राजस्थान के पीलीबंगा, कालीबंगा और गुजरात के लोथल सहित 5500 से 4000 वर्ष पुराने शहर मिले हैं। इनमें कई यज्ञ कुंडों के अवशेष भी मिले हैं, जो महाभारत में वर्णित तथ्य को प्रमाणित करते हैं। प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम में 4 किलोमीटर आगे माड़ा में सरस्वती के तट पर वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे। सरस्वती के प्रभाव के शोर के कारण गणेश जी महर्षि व्यास को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। इससे क्रोधित होकर व्यास ने सरस्वती नदी को श्राप दिया और वो धरती में समा गई। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल में रूपण नाम के हिमनद से होता है। इसको अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाने लगा है। ये हिमनद उत्तर काशी के नैतवार से आकर जल में परिवर्तित होता था और एक जलधार के रूप में आदिबद्री आता था, जो आज हरियाणा के यमुना नगर

0: जिले में स्थित वन क्षेत्र है। यहाँ उसी धारा से सरस्वती नदी बनती थी जो आगे कलकर करती चली जाती थी। आदि बद्री की मान्यता आज भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में है। यहाँ जगह जगह एक पतली धारा अभी भी दिखाई देती है जिसे लोग सरस्वती कहते हैं। इसके आसपास खुदाई में मिले अवशेष तथा उपग्रहों द्वारा की गई तस्वीरों के आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग तथा इसरो ने प्रमाणित किया है कि सरस्वती नदी जो 5000 से 3000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी आज भी धरातल के नीचे प्रवाहमान है तथा हरियाणा राजस्थान होती हुई अरब सागर में विलीन होती है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ONGC, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर, सरस्वती नदी शोध संस्थान जैसे कई संगठन सरस्वती नदी विरासत के अनुसंधान कार्य में लगे हैं। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के प्रयासों से यमुना नगर के आदि बद्री से लेकर सिरसा के ओटू हेड तक सरस्वती नदी का पता लगाया जा चुका है। अब बोर्ड राजस्थान व गुजरात में भी सरस्वती नदी की संभावनाएं तलाशने में जुटा है। कच्छ के रण में सरस्वती के कई साक्ष्य मिले हैं जिससे साबित होता है कि यहीं से सरस्वती नदी अरब सागर में मिलती थी। राजस्थान में पुष्कर के नजदीक नंदपुर गांव और गुजरात के पाटन जिले में स्थित सिद्धपुर और लोथल में सरस्वती के प्रवाह का अध्ययन करते हुए सैंपल जुटाए जा चुके हैं।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था धरोहर सरस्वती नदी, और वार्ताकार थे श्री रमेश चंद्र तिवारी।
2: अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यवसाय की जो प्रकृति से प्रेम करने वाले युवाओं के लिए पैशन भी बन सकता है और रोजगार का मजबूत साधन भी।
1: दोस्तों, आज का हमारा विषय है नर्सरी व्यवसाय, यानी कि युवा अपने पैशन को रोजगार में कैसे बदल सकता है। आज के समय में बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें प्लांट्स गार्डनिंग, टेरेस गार्डन, इंडोर प्लांट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्लावर्स, लैंडस्केपिंग, ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इस रुचि को इनकम सोर्स कैसे बनाया जाए।
2: बिल्कुल, कई युवाओं को पौधों से लगाव होता है। वो अपने घर की बालकनी में पौधे लगाते हैं, अपने कमरे में इंडोर प्लांट्स रखते हैं, प्लांट केयर वीडियोस देखते हैं, कॉम्पोस्ट बनाना भी सीखते हैं और प्लांट्स गिफ्ट करना भी पसंद करते हैं। लेकिन अगर इसी पैशन को सही प्लानिंग के साथ बिजनेस में बदला जाए तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है।
1: तो दोस्तों, अगर आप युवा हैं और पौधों से प्रेम करते हैं, नेचर के करीब रहना चाहते हैं और अपना छोटा सा स्मॉल बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो नर्सरी का बिजनेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
2: लेकिन दोस्तों, याद रखिए, पैशन को रोजगार बनाने के लिए पैशन के साथ डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी होता है। केवल इंटरेस्ट नहीं, प्लानिंग भी चाहिए, केवल ड्रीम नहीं, एक्शन भी चाहिए।
1: दोस्तों, आज का संदेश यही है कि हरियाली केवल देखने की चीज़ नहीं है, एक रोजगार का अवसर भी बन सकती है, क्योंकि पौधा केवल सजावट नहीं, एक बिजनेस आइडिया भी तो हो सकता है। और युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: तो दोस्तों इसी के साथ आज के युवा तरंग कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हम आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम का विवरण। कल के कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, वृक्षारोपण, जिसमें हम वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी एक विशेष वार्ता जिसका विषय है वनों के संरक्षण में रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग। इस विषय पर हमारे साथ होंगे डॉक्टर पी कुंवर, जो कि हमें रिमोट सेंसिंग तकनीकों के उपयोग के बारे में बताएंगे और कैसे उन तकनीकों से हम अपने वनों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो सुनना ना भूलिएगा युवा तरंग का अगला अंक कल इसी समय और इसी जगह पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आयुषी
1: और मुझे यानी कशिश को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

किसी ने क्या खूब कहा है, दीप खुद जलता है, दूसरों को रोशनी देता है, और जो दर्द सहकर भी मुस्कराए वही जिंदगी का असली मतलब सिखा देता है। नमस्ते दोस्तों, कार्यक्रम नई उड़ान लेकर हाजिर हो चुके हैं आपकी दोस्त, आपकी साथी आरती। जिंदगी बड़ी दिलचस्प चीज है दोस्तों। एक तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज और देश को बेहतर बनाने के लिए हर दिन चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निजी दुखों के बावजूद हिम्मत का दामन नहीं छोड़ते। आज का दिन हमें इन दोनों ही बातों की याद दिलाता है। आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है, यानी उन लोगों को सम्मान देने का दिन जो जनता की सेवा को अपना धर्म मानते हैं, चाहे वो प्रशासन में हों, स्वास्थ्य सेवाओं में हों, शिक्षा के क्षेत्र में हों, या किसी और जिम्मेदारी में उनके प्रयास समाज को आगे बढ़ाते हैं। और आज ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी है। ये दिन उन महिलाओं के साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास को सलाम करने का, उनके आत्मसम्मान को सलाम करने का अवसर है जिन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने अस्तित्व को मजबूती से संभाले रखा है। देखा जाए तो दोनों दिवसों का संदेश कहीं ना कहीं एक ही है, सेवा, संवेदना और साहस। लोक सेवा हमें सिखाती है कि समाज तभी मजबूत बनता है जब हर व्यक्ति को सम्मान और सहयोग मिले। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हमें याद दिलाता है कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बीच मौजूद संघर्षरत लोगों के साथ कितनी खूबसूरती से, कितनी मजबूती से खड़ा रहता है। तो आइए उन अनदेखे नायकों को धन्यवाद कहें जो निस्वार्थ भाव से समाज और देश की सेवा में जुटे हैं, और उन साहसी महिलाओं को सलाम करें जिन्होंने जीवन की कठिन राहों पर भी हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। और जब हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करते हैं तो उस बात को लोगों तक पहुँचाकर प्रेरणा दे सकते हैं। हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि हमारी पहचान केवल नाम से नहीं बल्कि हमारे काम से बने, और लोगों के दिलों में हम अपनी जगह बनाएं, और उनके दिलों में निकले हमारे लिए शाबाशियां।

0: कहते हैं जब एक महिला सशक्त होती है तो उसके साथ पूरा परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियां भी मजबूत होती हैं। आज महिला स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भरता और सामाजिक परिवर्तन की एक नई पहचान बन चुके हैं। आखिर क्या है ये समूह, कैसे काम करते हैं और किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाकर सफल बदलाव की कहानी गढ़ रहे हैं, ये समझना है तो करीब से उन महिलाओं के साथ जुड़कर शायद बेहतर समझ सकते हैं। तो हमारे साथी एंकर शोभित उन महिलाओं के पास, ऐसी मजबूत कामकाजी महिलाओं के पास पहुंचकर, उन सहायता समूहों से के साथ जुड़कर सफलता की वो खूबसूरत कहानियां हम तक पहुंचाने वाले हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर अगर सबसे स्पष्ट कहीं दिखाई देती है तो वो है उन महिलाओं के चेहरे पर जिनके हाथों ने केवल घर नहीं संभाला बल्कि अपने सपनों को भी नई पहचान दी है। कभी जो महिलाएं अपने परिवार तक सीमित थीं, आज वही महिलाएं अपने हुनर, अपने आत्मविश्वास और अपने सामूहिक प्रयासों से पूरे समाज में बदलाव की मिसाल बन रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह केवल बचत और ऋण का माध्यम नहीं बल्कि ये आत्मनिर्भरता, सम्मान और सशक्तिकरण की एक ऐसी यात्रा है जिसने अनगिनत जिंदगियों की दिशा बदल दी है। नमस्कार, मैं हूं शोभित शर्मा और आज उद्यमिका श्रृंखला के अंतर्गत हमारा विषय है महिला स्वयं सहायता समूहों की सफलता, सशक्त महिलाएं और बदलाव। दोस्तों, हर परिवर्तन की शुरुआत एक सोच से होती है, लेकिन उस सोच को जमीन पर उतारने के लिए जरूरत होती है समर्पित प्रयासों की। स्वयं सहायता समूहों

0: महिलाओं को जोड़ने, प्रशिक्षण दिलाने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने में समन्वयकों की भूमिका बेहद अहम होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे अभियान के समन्वयक से और जानते हैं कि कैसे ये पहल आज सैकड़ों महिलाओं के जीवन की उम्मीद की नई किरण बन चुकी है। मैम, आप अपना परिचय बताइए कि आप इस फाउंडेशन में किस रोल पर हैं और क्या करती हैं।
1: नमस्कार शोभित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रुचि श्रीवास्तव है और मैं आशा वेलफेयर फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर हूँ।
0: जैसा कि आपने कहा आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपका रोल एज अ कोऑर्डिनेटर इसमें क्या है?
1: देखिए, अगर सचिव और अध्यक्ष के बाद अगर चीजों को मैनेज करना है, हमें मार्केटिंग में उतरना है, फील्ड में उतरना है, किस इवेंट में क्या करना है, तो वो पूरा हमारा सोनी वर्मा दीदी और ज्योति मल्होत्रा दीदी से कोऑर्डिनेशन पूरा बराबर रहता है। तो मेरा रोल उसमें ये रहता है कि हमारी मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकती है।
0: आपके क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं, उनके जीवन में आप लोगों के साथ जुड़कर किस तरीके का बदलाव आया है?
1: महिलाओं से मेरा रोज का मिलना नहीं होता है, क्योंकि मेरा ज्यादातर कोऑर्डिनेशन ज्योति दीदी और सोनी दीदी से ही होता है, या हुआ तो टीम्स के थ्रू, महिलाओं से मेरा नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैंने जब आज से कई साल पहले जब यह ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, तब मैंने तीन महिलाओं को, ऑनेस्टी के साथ बोलूंगी, तीन महिलाओं को ही मैं जानती थी। तब मैंने उन तीन महिलाओं को देखा था, वो किस तरीके से ट्रेनिंग पे थी उस समय और चीजें सब बना रही थी, उनको ज्योति दीदी सोनी दीदी गाइड कर रहे थे। और आज की वो डेट है, आज का वो टाइम है कि मैं खुद गई इस कुटीर उद्योग, एक बार सोनी दीदी भी नहीं थी, ज्योति दीदी भी नहीं थी, मैं गई और मुझे ये मिली दीदी लोग और मैंने बल्क में सामान उठाने का कहा, इन्होंने सारी प्रोसेस के साथ पूरा बैग में पैक करना, कैसे करना है, कैसे रखना है, कितना मटेरियल किस चीज का देना है, कितना क्या देना है, रेशियो सारा कुछ इन लोगों ने किया। तो ये ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है।
0: आने वाले समय में आप अपने कुटीर उद्योग को विकसित करने के लिए क्या टारगेट लेकर के चल रही है या उसका क्या विजन है आपकी?
1: देखिए, हम चाहते हैं, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम भी कोशिश कर रही है कि हम मार्केटिंग के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा सामान हमारा सेल हो। अभी हम जो 18 से 20 औरतों को आत्मनिर्भर बनाने का है, आने वाले समय में हम इतने आगे बढ़ जाएं, 2,000 से 3,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके।
0: जो महिलाएं अभी तक स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, हर इंसान के अंदर, मेरा अपना मानना है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कभी कभी वो क्वालिटी खुद को नजर नहीं आती है। हम सभी महिलाओं को संदेश देंगे कि कभी भी अपने अंदर ये ना सोचे कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी या ये काम छोटा है। जैसे आज के युग में ये बहुत सारे लोगों की धारणा है, तो मेरा संदेश भी उन्हीं महिलाओं से, अपने अंदर की कला को पहचाने, बाहर निकलें, अच्छे लोगों से मिलें और जो काम उनको अच्छा लग रहा है, अंदर से जो लग रहा है कि हाँ हम ये कर सकते, उस काम में मेहनत करें, सफलता निश्चित है मिलेगी।
0: किसी भी संस्था की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं बल्कि उसके सुव्यवस्थित संचालन से भी तय होती है। योजनाओं को सही दिशा देना, समूहों को संगठित रखना और हर सदस्य तक योजनाओं का लाभ पहुंचना, इन सब में सचिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं ये पूरा तंत्र किस तरह से काम करता है और महिलाओं तक सफलता की ये यात्रा कैसे पहुंचती है। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें।
2: नमस्कार शोभित जी, मेरा नाम ज्योति मल्होत्रा है और मैं आशा वेलफेयर फाउंडेशन की सचिव हूँ।
0: तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इस फाउंडेशन में सचिव की क्या भूमिका है?
2: सचिव की भूमिका सबसे अहम होती है, सबसे अहम दो लोग होते हैं, एक अध्यक्ष, दूसरा सचिव। बहुत ज्यादा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनजीओ की उन्ही दोनों के कंधों पर होती है।
0: तो आप शुरू से ही इस फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है?
2: जी हाँ।
0: जब आपने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी, तब से और आज के समय में आप इसको किस मुकाम पर देख रही हैं? क्या बदलाव आए हैं इस फाउंडेशन में?
2: आशा वेलफेयर फाउंडेशन में कुटीर उद्योग की स्थापना हुई थी
0: जी,
2: तब से लेकर अब तक में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। जिस समय हम लोगों ने शुरू करा था, उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा महिलाएं नहीं थी, दो या तीन महिलाएं थी, उन्हीं को ट्रेन करके हम लोग सामान करवाते थे और सब वो पूरा बिकता था और फिर उन लोगों के ही बच्चों के एजुकेशन पे खर्च होता था
0: जी।
2: लेकिन आज की डेट में हमारे एनजीओ से, हमारे कुटीर उद्योग से बहुत सी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है और देख के बहुत खुशी होती है हमको ये कि हमारी वजह से, हम लोग के वजह से किसी के घर में उजाला हो रहा है, उनके घर में चूल्हा जल रहा है, उनके बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है आज की डेट का, जो शुरू में नहीं था और अब ये चेंज हम लोग को देखने को मिलता है।
0: तो लगभग कितनी महिलाएं हैं मैम आपके साथ में?
2: इस वक्त हमारे पास कम से कम 12 से 14 महिलाएं हैं।
0: तो ये जो इन 12-14 महिलाओं का जो आपका ये पूरा समूह है, ये आपको ये जितने भी

0: कुटीर उद्योग में काम करने में आपकी मदद कर रहा है, तो इनको किसी तरीके की ट्रेनिंग भी देती हैं आप लोग, या ये लोग कैसे आपके साथ जुड़ करके, जाहिर सी बात है कुछ मशीनें वगैरह भी ये लोग चलाती होंगी, या सब हैंडमेड होता है काम?
1: सारा काम हमारा हैंडमेड है। जब ये लोग
0: अच्छा
1: शुरू में आई थी तो इनको पूरा प्रॉपर ट्रेन करा गया था कि किस तरह से कैसे सामान बनाना है, कैसे क्या करना है,
0: जी
1: पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। और
0: जी
1: आज की डेट में ये बहुत अच्छे से सब कुछ सीख गई हैं। अगर हम उस जगह पे नहीं भी होते हैं तो भी हम इनको गाइड कर देते हैं, तो ये लोग सब कुछ प्रॉपरली एकदम बहुत अच्छे से कर लेती हैं।
0: तो ये इनकी ट्रेनिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो सब आप ही देखती हैं।
1: बिल्कुल
0: किसी भी योजना की असली सफलता आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन मुस्कुराते चेहरों में दिखाई देती है जिनकी जिंदगी वास्तव में बदली है। अब मिलते हैं उन महिलाओं से जिन्होंने अपने हुनर को रोजगार में बदला, अपने आत्मविश्वास को पहचान बनाया और आज अपने परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बन चुकी है। नाम क्या है आपका?
2: गुड़िया शर्मा।
0: इस समूह से कब से जुड़ी हुई है?
2: हमको हो गए 3 साल जुड़े हैं।
0: क्या करती हैं आप इस समूह में?
2: बनाते हैं चिप्स, पापड़, कचरी, अचार सब बनाते हैं हमें
0: तो
2: सफाई के साथ।
0: परिवार में कौन कौन है आपके?
2: 5 लोग हैं।
0: कौन कौन है?
2: हम हैं, हमारे हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं।
0: हस्बैंड क्या करते हैं आपके?
2: कारपेंटर हैं।
0: तो आप क्यों जुड़ी इस समूह से, क्या जरूरत थी आपको इस समूह के साथ जुड़ने की?
2: जरूरत तो यही थी, घर में बैठे थे तो हम सोचे कि कर लेंगे, चलो कुछ पढ़ाई लिखाई में बच्चों के हेल्प
0: मदद हो जाए।
2: मिल जाएगी।
0: तो क्या लगता है आप कुछ मदद कर पा रही हैं घर के खर्चों में?
2: घर के खर्चों में मदद हो जाती है।
0: तो जो स्थिति आपकी 3-4 साल पहले थी, तब की स्थिति में और अब की स्थिति में कुछ बदलाव है, दिखता है आपको?
2: हाँ, बदलाव तो दिखता है।
0: शुरू शुरू में जब आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़ी तो
2: जी,
0: आपको डर नहीं लगा कि कैसे करेंगे?
2: डर
0: हाँ
2: नहीं लगा मुझे, क्योंकि मुझे घर के तरीके रखा गया।
0: अच्छा, तो कैसे आपको कुछ ट्रेनिंग दी गई थी?
2: हाँ, सोनी दीदी, ज्योति दीदी ने
0: हाँ
2: मुझे सिखाया और हम लोग बनाने
0: अच्छा, आप जैसी जो महिलाएं हैं जो
2: लगे।
0: अभी तक घर से बाहर किन्हीं भी कारणों से नहीं निकल पा रही हैं, उनको आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगी?
2: यही कहना चाहते हैं, जैसे हम लोग जुड़े हैं इसी में जुड़े हैं, और अच्छा है यहाँ काम करो अपने घर के तरीके, सुरक्षित हैं, बस सबसे मेन चीज यही है जो सुरक्षित हैं हम लोग।
0: क्या नाम है आपका?
3: नमस्कार, मेरा नाम सरिता वर्मा है।
0: क्या आप इस समूह से कब से जुड़ी हैं?
3: 3-4 साल हो गए हैं जुड़े, काम करते करते हैं।
0: जुड़ने की वजह क्या थी?
3: बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए तो घर में रह रहे थे, फिर कुछ काम था नहीं, घर में बोर हो रहे थे रह रहे के। तो फिर हमारी मुलाकात ऐसे सोनी दीदी से हुई, तो इन्होंने बताया कि हमारा आशा वेलफेयर फाउंडेशन चल रहा है, हमको औरतों की जरूरत है, काम के लिए बोली तो हमने हाँ कर दिया।
0: 3-4 सालों से आप यहाँ कुटीर उद्योग में जुड़ी हुई हैं।
3: हाँ,
0: और क्या करती हैं आप यहाँ पर?
3: हम यहाँ पे आलू पापड़, आलू चिप्स, चावल पापड़, चावल कचरी,
0: जी
3: साबुदाना पापड़, साबुदाना कचरी,
0: जी
3: सभी प्रकार के अचार पकवान ये सब बनाते हैं।
0: इन 3-4 सालों में जब से आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़ करके काम कर रही हैं,
3: जी
0: क्या बदलाव खुद में देखती हैं?
3: बदलाव तो बहुत कुछ देखा है। पहले हम लोग को बहुत अटपटा लग रहा था शुरुआत में, कि हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे या नहीं मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ज्योति दीदी और सोनी दीदी के रहते हमको इनके सिखाने से सब कुछ समझ में आ गया। जैसा जैसा बताती रही वैसा वैसा हम लोग इनकी ट्रेनिंग से उसी हिसाब से करें तो सीख गए हैं।
0: हर सफल पहल के पीछे किसी का एक सपना होता है, ऐसा सपना जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए देखा गया हो। हमारे साथ हैं इस फाउंडेशन की संस्थापक सोनी वर्मा जी, जिन्होंने महिलाओं के हुनर पर विश्वास किया, उन्हें अवसर दिए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत मंच तैयार किया। तो आइए जानते हैं उनकी प्रेरणा, उनकी सोच और इस सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
4: थैंक यू सो मच सोहित जी कि आप आए।
0: तो मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो स्वयं सहायता समूह है, इसकी शुरुआत करने का विचार आपके मन में कैसे आया, क्यों आपने इसकी शुरुआत की?
4: जब भी मैं स्लम एरिया में जाती थी तो महिलाओं को देखती थी कि उनको काम की नीड है, और वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी। कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको काम करने का एक जज्बा था और वो भी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। तो ये सारे सवाल हमारे सामने आते गए कि दीदी आप ऐसा कोई काम दीजिए जिससे कि मैं कर सकूं। तो मैंने अपनी टीम और अपने सचिव से इन सारी चीजों पे इतर किया। बातचीत करने के दौरान मुझे लगा कि जो चीजें इस समय महिलाएं नहीं बना पा रही हैं, काम की वजह से, अपनी व्यस्तता की वजह से, और इसी क्षेत्र में हमने कुटीर उद्योग की स्थापना की, एक

0: समूह की महिलाओं को लेके और स्लम की ही निराश्रित महिलाओं को लेके इन सारी चीजों को की शुरुआत की गई।
1: मैम कब शुरुआत की थी आपने संस्था की?
0: ये हमारा 2019 में हमारी संस्था शुरू हुई थी, लेकिन कुटीर उद्योग अभी 3 से 4 साल होने जा रहा है जिसकी स्थापना किए हुए।
1: जब ये विचार आपके मन में आया कि आप ऐसे लोगों के लिए काम करें, तो सबसे बड़ी चुनौती आपको कौन सी सामने दिखी जब आपने इस फाउंडेशन की शुरुआत की?
0: चुनौती तो हर पल पे आई, कभी पैसे को लेके आया, फंड को लेके, सबसे बड़ा चीज होता है फंड।
1: जी,
0: तो फंड की समस्या आई हमारे पास। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला किसी चीज को आपके मन में डालता है, किसी भावना को अगर डालता है, तो उपाय भी कहीं ना कहीं उस गॉड ही करता है। तो मुझे नहीं पता कब ये कोई भी चीज समस्या आती थी, हमारी टीम और हम मिलके उसको कब पूरा कर देते थे, ये खुद भी हमें पता नहीं चलता था।
1: आज आपके फाउंडेशन को इतना समय हो गया है, तो जब आप पीछे मुड़कर अब देखती हैं, तो अपने समूह की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किस चीज को मानती हैं?
0: ये कह सकते हैं कि बहुत छोटे कदमों से इस फाउंडेशन की शुरुआत किया था, छोटे छोटे कदमों को हम रखते गए और आई कि बहुत बड़ा कारवा बना और सबके साथ मिलके इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं कि जो मैं भी नहीं सोच पाती हूँ कि इतना सारा काम मैंने किया। हर कोई ये नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन लोग ये जरूर जानते हैं कि आशा वेलफेयर कहाँ है। तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
1: हमारे जो भी श्रोता इस समय आपकी आवाज सुन रहे हैं, आशा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप उनसे क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं यही अनुरोध करूंगी या रिक्वेस्ट समझ लीजिए हमारे, कि जब काम कोई भी संस्था करने निकलता है तो जब सपोर्ट मिलता है तो और बड़े बड़े काम होते हैं। और मैं गवर्नमेंट से भी चाहूंगी कि इसमें हम लोगों को कुछ हेल्प करे, प्रोजेक्ट के माध्यम से करे, तो और महिलाओं को हम लोग जागरूक बनाए और की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए, अपने पैर पे खड़ा करे।
1: हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आपको आने वाले समय में सफलता मिले। अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत
0: धन्यवाद। धन्यवाद सोबित जी कि आपने मेरी आवाज को जनता तक पहुँचाई।
1: आज की इस विशेष प्रस्तुति में हमने ये देखा कि कैसे छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। स्वयं सहायता समूहों ने न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और समाज में एक नई पहचान भी दी है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसका परिवार, उसका गांव, उसका क्षेत्र और समाज आगे बढ़ता है। यही बदलाव एक सशक्त भारत की सबसे मजबूत नींव है। नमस्कार।
2: तो ये थी कुछ ऐसी प्रेरक कहानियां जो बताती हैं कि आत्मविश्वास, सामूहिक प्रयास और सही अवसर मिल जाए तो बदलाव की राह खुद बन जाती है। महिला स्वयं सहायता समूह आज न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि परिवारों और समाज को भी नई दिशा दे रहे हैं, नई उड़ान दे रहे हैं। और सच तो ये है कि जब महिलाएं खुद पर विश्वास करना, अपने सपनों को पहचानना और अपने लिए जीना शुरू करती हैं, तभी सशक्तिकरण की असली कहानी लिखी जाती है और बदलाव भी खुद ब खुद दिखाई देने लगता है। बस इसी सोच के साथ सुनते हैं एक प्यारा संगीत।

और हम सब के जीने की निर्भरता जिस पर है मूल रूप से, वो है हमारे देश के किसान, और उनकी निर्भरता है पानी। अगर किसानों की इस समस्या का समाधान मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। ऐसी एक खबर है बुंदेलखंड से, जहां पर लोगों के लिए, यहां के किसानों के लिए दो बेहतरीन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी सौगात मिली है यहाँ के लोगों को। एक है शाहजाद स्प्रिंगल परियोजना और दूसरी कचनौंद बांध अवशेष कार्य परियोजना। करीब 12,000 हेक्टेयर में दोस्तों इस भूमि को सिंचाई सुविधा इसके जरिए मिलेगी और 20,000 से ज़्यादा किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। 20 से ज़्यादा गांवों पर इस पर इसका असर पड़ने वाला है। मतलब अब खेती के लिए सिर्फ बारिश के भरोसे टिकना नहीं पड़ेगा, फसल उत्पादन बढ़ेगा, इसके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। फिलहाल समय का ध्यान रखते हुए अगर आगे हम बढ़ते हैं तो जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक होता है, और इसी का ध्यान रखते हुए आज के कार्यक्रम से आरती लेगी आपसे अनुमति। दीजिए इजाज़त। नमस्ते। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई से श्री विमलेश कुमार त्रिपाठी ने सूचित किया है कि उनके पुत्र हर्षित त्रिपाठी दिनांक 31 मई 2026 शाम 5:15 से लापता हैं। हर्षित त्रिपाठी की उम्र 17 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, चेहरा लंबा, काली आंखें, काले बाल और रंग गोरा है। लापता होने के समय ये सफ़ेद टी शर्ट, मेहंदी रंग का लोवर, टोपी, नीले रंग के स्पोर्ट जूते और आंखों में चश्मा पहने हुए थे। जिस किसी को भी हर्षित त्रिपाठी के बारे में कोई सूचना हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है

0: 6 इंच, चेहरा लंबा, काली आंखें, काले बाल और रंग गोरा है। लापता होने के समय ये सफ़ेद टी शर्ट, मेहंदी रंग का लोवर, टोपी, नीले रंग के स्पोर्ट जूते और आंखों में चश्मा पहने हुए थे। जिस किसी को भी हर्षित त्रिपाठी के बारे में कोई सूचना हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है, श्री विमलेश कुमार त्रिपाठी, पुत्र राम नरेश, निवासी रद्देपुरवा रोड, आज़ाद नगर, थाना कोतवाली, शहर जनपद हरदोई। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8168957854। कृपया मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुने, 8168957854। थाना कोतवाली, शहर जनपद हरदोई से श्री शिवम गुप्ता ने सूचित किया है कि उनकी बहन अनुष्का गुप्ता दिनांक 17 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे से लापता हैं। अनुष्का गुप्ता की उम्र 22 वर्ष, कद लगभग 5 फुट 2 इंच, सामान्य बदन और रंग गोरा है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस किसी को भी अनुष्का गुप्ता के बारे में कोई सूचना हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है, श्री शिवम गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय रमेश गुप्ता, निवासी अशरफ टोला, थाना कोतवाली, शहर जनपद हरदोई। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
4: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक कृष्ण प्रसादोपाध्याय। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू नवदेहल्यां नागरिक सम्मान समारोहस्य द्वितीय चरणे पद्म पुरस्कारान् प्रायच्छत्। गृहमंत्री अमित शाहः अकथयत् यत् अनुच्छेद 70-300 इत्यस्य निरसनेन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य स्वप्नाः साकारीभूताः। सर्वोच्च न्यायालयेन 93-21 वर्षस्य बौ बाजार विस्फोटस्य दोषिणः रशीद खान इत्यस्य समयपूर्व मुक्ति विषये दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अवदत् यत् होर्मुज जलसन्धेः उद्घाटनेन आसंसारम् ऊर्जा सुरक्षायाः सुदृढीकरणं च भविष्यतीति। लियोनेल मेस्सी इत्यस्य

0: पंचो जय हिंद। अनु भैया
1: हाँ रत्ना बहनी,
0: देखो ये सही अत्ता घाम होते हैं कि मैंने सोचा था कि घर से बाहर न निकले, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि घर के बाहर निकले होते हैं।
1: ये तो है ही है, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो हम घर से बाहर निकलित है कोनो यह समय में, सबसे तो जरूरी बात यह है कि सबसे पहले जो भी आवश्यक काम है वह हम सुबह और शाम में मिलकर आप निपटाई, बहुत ही जरूरी हो तब दोपहर में निकली। और अगर दोपहर में हम निकली थे तो कोनो सूती गमछा ले ली और वो हल्के रंग का हुए जो निश्चित धूप से अपने का बचावा जा सके। और

0: अपने शरीर में पानी के कमी ना हो पाओ इसका खातिर कोनो बोतल में या कोनो में पर्याप्त पानी लेके चली कि जो उनका समय समय पर पी कर अपने शरीर का जो है निर्जलीकरण से बचावा जा सके।
1: भैया ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन का होते हैं कि जैसे अभी हम कहें ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि घर से बाहर निकलना मजबूरी हो जाता है, जैसे आप देखा तो कि बाहर जो मजूरी करते हैं या वैसे कोई काम होते हैं तो उनका करे खातिर घर से बाहर निकले है और घामे में यह काम करे पड़ते हैं। लेकिन यू जो आप बताओ कि खोपड़ी पर गमछा डाले रखो या गील कपड़ा डाले रखो, साथ में यह पानी की बोतल रखो ताकि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पियत रहो ताकि कोई समस्या ना हो पावे, यूँ तो नहीं है। लेकिन ये जो काम है तो काम चूँकि हमका घर में यह धन लावेक है जिससे हमारा घर चले, तो उनके खातिर जो है काम करे खातिर सबका घर से बाहर निकले के पड़ते हैं। तो आप यू जैसे उस देर पहले बात करत रहो भक्त कही में यहाँ कि विकसित अब भारत हो ही रहा है तो उनके खातिर कई कई नए नए नियम अधिनियम जरूर आ रहे हैं।
0: हाँ, योजना चल रही है।
1: हाँ, कि आगे बढ़ सके।
0: हाँ, तो ये देखो बात बिल्कुल सही कहा थी तू बहनी। और देखो अपन जो सरकार ही ना वो अपने हम पंचन के देख रेख खातिर देखो एक योजना चला रही है और एक जो अधिनियम है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, यह के अंतर्गत हमें लोगन के यहाँ जो रोजगार का अवसर है वो अपने गांव में यहाँ ही रहकर उपलब्ध करावे के लिए सरकार जो ही अपन वो कृत संकल्पित है। यह नाते से थी योजना जो चल रही है यह महान हम पंचन के यहाँ 125 दिन के रोजगार निश्चित रूप से उपलब्ध करावे के सरकार जो है संकल्प लिए हुए है।
1: और मतलब हम पंचन का रोजगार मिले अपने गांव में रहे, गांव ते पलायन न हो पावे ताकि हमारे जो गांव है वही आत्मनिर्भर भारत में यहाँ ग्रामीण सहभागिता दे सकें।
0: बिल्कुल ये है ही है। और जब यह योजना के हम सूचित है कि पंचायत लाभ उठाई तो लाभ उठाए के लिए जरूरी ये है कि हम अपने जो ग्राम पंचायत कार्यालय है वहीं जाई और जरूरी दस्तावेज के साथ यह मन बैंक का खाता हो अपन आधार कार्ड हो और वह निवासी हो जो प्रमाण पत्र हो, ये योजना जो है ग्रामीण लोगों के लिए है ही है, तो वह पहुँच कर अपन पंजीकरण करके जॉब कार्ड बनवावा जा सकता है।
1: हाँ, तो जब जॉब कार्ड बनवेबे अपने गांव में रहबे अपने गांव का आगे विकास में सहयोगी बनबे, तो देखो यह मैया कड़ीमा आज अपनी बैठकी मैया एक वार्ता है आत्मनिर्भर भारत ग्रामीण और सहभागिता। तो यू जो वार्ता है सुनील कुमार सिंह भैया बता रहे हैं, तो हम वो पंच जाने और पंच भाई बहनों जाने।
0: बिल्कुल आप सुना जाए।
2: आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण सहभागिता के विषय में चर्चा करते समय हमें दो बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होता है, आत्मनिर्भर भारत और उसमें ग्रामीण सहभागिता के योगदान पर। तो आप साथियों बात करते हैं पहले आत्मनिर्भर भारत पर। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना के अभियान के नाम से इस योजना की शुरुआत की। COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक संकट से और उसी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से उबरने के कारण इस योजना को देश को समर्पित किया गया। इस अभियान की घोषणा में जो मुख्य बातें रहीं उसमें आर्थिक पैकेज देना, GDP का लगभग 10% विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोकल से वोकल को बढ़ावा देना, भारत देश को मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना। प्रमुख क्षेत्र इस योजना का जो रहा वो कृषि, रक्षा, तकनीक, निर्माण का क्षेत्र और बुनियादी ढांचों से संबंधित विषयों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया। 13 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का समर्थन करने के लिए, आर्थिक सशक्त देश को बनाने के लिए तत्कालीन समय में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह 5 घटकों अर्थव्यवस्था, अवसंरचना प्रणाली, जीवंत जनसंख्यिकी और मांग पर केंद्रित था। ग्रामीण सहभागिता के बिना भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कल्पना अधूरी सी प्रतीत होती है। ग्रामीण सहभागिता का अर्थ समझते हैं साथियों, गांव को केवल योजनाओं का लाभार्थी न बनाकर विकास और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना, जिससे रोजगार सृजन और स्थानीय स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था

और सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमुख कदम उठाए गए। स्थानीय स्तर पर रोजगार और वोकल फॉर लोकल, एक जिला एक उत्पाद ODOP स्कीम चलाई गई। हर जिले के स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार से जोड़ने का प्रयास किया गया। कुटीर एवं सूक्ष्म उद्योग MSME को, ग्रामीण कारीगरों और छोटे उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई। डिजिटल साक्षरता और पारदर्शिता, डिजिटल इंडिया के तहत गांवों में इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल जागरूकता जैसे PM दिशा का विस्तार किया जा रहा है। ई पंचायतों का गठन किया गया है, पंचायतों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है जिसके तहत ऑनलाइन माध्यम से बजट और विकास कार्यों का प्रबंधन किया जा रहा है। कृषि और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य संस्थाओं द्वारा हजारों किसानों को स्थायी और प्राकृतिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत गांव स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस की बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। संपत्ति के अधिकार और ग्रामीण शासन स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आवासीय भूमि का सीमांकन करवाकर ग्रामीणों की संपत्तियों को प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इससे ग्रामीण अपनी संपत्ति का उपयोग बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण और विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अपने स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। विकासात्मक निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर और महिलाओं तथा युवाओं को रोजगार से जोड़कर ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। इसी के तहत मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की स्वयं की समस्याओं को पहचानने, समाधान खोजने और संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण सहभागिता का महत्व और लाभ, ग्रामीण विकास परियोजनाओं की सफलता में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना स्थानीय ज्ञान और जरूरतों के आधार पर नीतियां बनाती हैं। जिम्मेदारी की भावना के तहत ग्रामीणों में परियोजना के तहत अपनी समझ को विकसित करने की भावना का निर्माण, उनके उचित रखरखाव की देखरेख, आत्मनिर्भरता के अंतर्गत ग्रामीणों के नेतृत्व के गुण को और कौशल को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना, सहभागिता के मुख्य तरीके अपनाकर ग्रामीणों को उसमें सहभागी बनाकर उनकी राय मशवरा लेकर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन का उपयोग किया जा रहा है। संसाधन मानचित्रण के माध्यम से गांव की भूमि, जल स्रोत और कृषि योग्य क्षेत्रों का विश्लेषण करते हुए प्राथमिकता का निर्धारण किया जा रहा है, जिसके तहत गांव की प्रमुख समस्याएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध जल की पहचान कर उन्हें हल करने का क्रम तय किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को लोकतांत्रिक तरीके से जन समितियों का गठन करते हुए गांव के विकास के खाके को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम सभा अपने सभी वयस्क सदस्यों की खुली बैठक आयोजित करती है जहां गांव के बजट और विकास कार्यों पर चर्चा होती है। आत्मनिर्भर भारत का मूल आधार ग्रामीण सहभागिता है। बिना गांव के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अधूरा है। इसके तहत जो मुख्य स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठन FPO के माध्यम से छोटे किसानों को एकजुट करके उन्हें बाजार से सीधे जोड़ा जा रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिकाएं खत्म हो रही हैं। स्थानीय कौशल और कुटीर

0: उद्योग के माध्यम से वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्पियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा खादी जैसे स्वदेशी उद्योगों से लाखों ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण स्वामित्व योजना से ड्रोन तकनीक के जरिए ग्रामीण संपत्तियों की मैपिंग हो रही है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से बैंकिंग, बिल भुगतान, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांव और ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। वित्तीय समावेशन और उद्यमिता, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग MSME कार्यक्रम के तहत आसानी से पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। सम्यक रूप से अगर बात की जाए साथियों, तो आज आत्मनिर्भर भारत के विकास में ग्रामीण सहभागिता के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया जा सकता है और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जैसा पुराने इतिहासकारों और मनोविचारकों ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ग्रामीण सहभागिता की बढ़ती भागीदारी के कारण भारत एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है।
1: देखो कितनी नीकी तरह से बताई हम पंचन का कि आत्मनिर्भर भारत ग्रामीण और सहभागिता कैसे हो सकत है। तो एक एक खातिर सुनील कुमार सिंह भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो हम पंच जो है हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी तो लौटते हैं, है ना भैया?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो अनु भैया यूँ बताओ कि आज जैसे हम पंच सोचे थे कुछ अलग करा जाए।
2: बिल्कुल बहनी, हम समझ गए ना आपका इशारा किधर है। और देखो यही नाते आज हम अपने बैठकी में पंचन के लिए लेके आए हैं लोक भाषा कवि गोष्ठी। ये हमन जे भैया कवि लोग काव्य पाठ करी नहीं, ओमन श्री महाराणा प्रताप सिंह राही भैया, श्री भोलानाथ शर्मा पागल भैया, श्री शिव किशोर तिवारी खंजन भैया।
1: तो आओ, इनका संचालन है खंजन भैया
2: संचालन करी नहीं। तो आओ ये काव्य गोष्ठी का सुना जाए
1: और पंच भाई बहनों सुने।
2: हाँ,
3: आज के लोक भाषा कवि गोष्ठी में हमारे बीच में महाराणा प्रताप सिंह राही भैया मुकुंदपुर गोंडा से है आए हैं और भोलानाथ शर्मा पागल भैया गोसाईगंज लखनऊ से आए हैं और हम शिव किशोर तिवारी खंजन हैदर बाराबंकी से आए हैं। आज के लोक भाषा कवि गोष्ठी बहुत अच्छी हुए वाली है और हम चाहित है कि जो हमारे बीच में महाराणा प्रताप सिंह राही मुकुंदपुर गोंडा से आए हैं वो यापन रचना से हम सबका अभिसिंचित करें, हम सबका आनंदित करें। भैया राही जी।
4: भैया तो हम तो यह चाहबे कि योग कह के सब निरोग बनो। सुने भैया कि आवो अपना वहु सबे मिल जीवन मा योग

0: योग शब्द के अर्थ बहुत व्यापक व अगाध।
1: क्या बात है।
0: योग दिवस के रूप जून 21 मनावो और छोड़ो आलस योग पर्व मा आगे आओ।
1: बढ़िया है। वाह वाह वाह वाह।
0: और दूसरा भैया कि योग नाम है जोड़ के एक दूजे के साथ और भौतिक हो अध्यात्म वा ठंडा राखे माथ।
1: अच्छा है।
0: ठंडा राखे माथ योग के महिमा भारी हुए चाहे परमात्म हुए या दुनियादारी।
1: अच्छा है।
0: या को मिलावे ब्रह्म से दुई मेर योग भैया चाहे भगवान से मिलो चाहे देह निक करो। या को मिलावे ब्रह्म से या को

0: पर बस योग।
1: वाह,
0: और भैया देखें गर्मी से बहुत मन दुखी रहा था हम सब है हमें देखें कि गर्मी से बेहाल हुए जन जीवन लाचार।
1: बढ़िया है।
0: और पवन देव भी ठप पड़े बहे न तनिक बयार।
1: अच्छा है।
0: बहे न तनिक बयार न डोले बिरवक पाती। ओ भई बिजलियो गुल कसक बीत।

0: रहे अब राती, भोरे से तप सूरज नलावे रंचो नरमी, राही लथ पथ दिया पसीनस भीवे गर्मी।
1: अच्छा है।
0: और बचे खोए जो भैया वास्ते तो सुनो कि माटिक गगरिम जल धरो और तर तर कर विश्राम, खेती बारिक काम बस करो सवेरे शाम।
1: बढ़िया है।
0: करो सवेरे शाम, नन करो दोपहरिया माँ, और हर हन राखो छाह पियड़ अथवा घरिया माँ।
1: अच्छा है।
0: राही घाम वालूक भये हैं जीव के घातिक, छान बनिस्बत महल जुड़ाती बखरी माटिक।
1: बढ़िया है।
0: अब भैया ये तपन से इतना सब परेशान है कि तपन हाली बीत जाते है। तो देखें
1: स्वागत है
0: कि तपन बीता हाली हो, तपन बीता हाली बरखा के इंतजार, किसान जुटे खेतवन मा।
1: बढ़िया है।

0: है
1: तो देखें भैया कितिया रह कार्तिक तीनिया साढ़े ये है घाघ के बानी
0: बढ़िया है
1: तेरा कार्तिक तीनिया साढ़े ये है घाघ के
0: बानी
1: मौका पाई के जेना चेतिस किस बहुत नादानी हो मौका पाए के जेना चेतिस किस बहुत नादानी हो गए वके सबो किसानी बंटा धार हो गए वके सबो किसानी बंटा धार आहे बाजी सुकुवर पनुमा
0: वाह वाह वाह
1: बाजी सुकुवर पनुमा तपन बीते हाली बरखा के इंतजार किसान जुटे खेत मन मां जायद के फसलन के तो अब जाय बदे तैयारी जायद के फसलन के तो अब जाय बदे तैयारी लीची आम फरियन फरे अब दम के बगिया सारी भैया।

0: आखिरी पंक्ति भैया तो नहीं देखे तो यकवर सीमा पर जवान जुटका से ढाल तरवरिया यकवर सीमा पर जवान जुटी कसे ढाल तरवरिया यार किसाने घाम छाह सही खेती बदी भय करिया हो यार किसाने घाम छाह सही खेती बदी भय करिया राही जाओ इन दिनों बलिहार राही जाओ इन दिनों बलिहार देश खातिर अर्पण माहो देश खातिर अर्पण
1: बहुत सुंदर कविता सुनाई हमरे राही भैया। आओ हम अब आगे बढ़ित है और भोलानाथ शर्मा पागल जो गोसाईगंज लखनऊ से आए हैं बहुत अच्छी अच्छी कवितन के साथ आए हैं। आओ इनके कविता के आनंद लीन जाए।
2: आओ भैया आप सबका हम अपनी गंगा माई के बारे में चार पंक्तियां लेके आए।
3: वाह भैया वाह।
2: कि ख्यालत

0: और
1: वाह वाह,
0: तारत वारत पाप सबे पैंग बढ़ावत आई है गंगा, और भागी भगीरथ केरु जगाई के मान बढ़ावत आई है गंगा।
1: बढ़िया है,
0: भागी भगीरथ केरु जगाई के मान बढ़ावत आई है गंगा। और देखो भैया कि नेह नाथ सवारी सब हर धर्म के रूप सजाई गंगा।
1: बढ़िया,
0: छोट बड़ा नहीं भेद कतौ, निज फर्ज हमेशा निभाई गंगा। सब केर भला करती है सदा, अचरा झट दौरी बोलाई गंगा। और शांति स्नेह सदा उपजय सब का यो पाठ पढ़ाई न गंगा।
1: अच्छा है,

0: शांति स्नेह सदा उपदेश पाठ
1: पढ़ाए
0: भैया। एक सामाजिक विसंगत चार पंक्तियाँ।
2: वाह भैया सुनाओ।
0: लंका अयोध्या यदि घर ही मदेख परी तो भला कसक राम राज के विचार करी।
2: वाह
0: मानो दानो के नगठी को तुक ताल कबो कैसे भला दूसरे द्वार पे पुकार करी।
2: अच्छा है।
0: कबो ना सुहाई पाठ बापू के हिंसा वाला ओ को समय गीता ओ पुराण मा बेकार करी। ओ कैसे सजी आपन समाज गांव देश घर इनका सजावे वधि कौन उपचार।
2: अच्छा है।
0: और दूसरा देखा जाए भैया
2: स्वागत है
0: सुझाव रूपी है कि चेती जावो दिन सुधरे के है परे था हम माई बाप भाई के दुलार ना विसारो। ओ संझा सवेरे पाऊ पूजी माई धरती के झूठ त्याग साँच केरी आरती उतारो।
2: अच्छा
0: पैर नाही ठानो खून अपने मानो सब मिल जुली घर परिवार का समारो।
2: अच्छी बात है।
0: चाह के चिरैया अंगना दुआर उठी भोर बनी साख देश केरी कबौना बिगाड़ो। और भैया दो पंक्तियां हमरे सामने आए दिन देखो कोयली बोला करती है तो वही के विषय में चार पंक्तियां हैं।
1: सुनले
0: कि कोयली बिरवा चढ़ी बोली रही जियरा हमरा भरमावतरी। नायिका कह रही है

0: देवावत री सखी जाय के डांटी दियो जिहका मोह पागल रोज चिढ़ावत री अकलवी के न और ठौर कतौ जरी देही मलून
1: लगावत री
0: के न और ठौर कतौ जरी देही मलून
1: लगावत री।
0: और देखे पंक्तियाँ कि बस चारी महीना के बात सखी दिन रात चढ़ी जठिलाए लिए मन जौन चाहैया तौन करे हंसी मोरी खुशी से उड़ाई लिए भाव के आकाश चढ़े जी के भाव आकाश चढ़े इक इहके पखना मन मानी फुलाए लिए पागल के दिन नी किया भाई बड़े ठाठ से गाय पागल के दिन नी किया भाई बड़े ठाठ से गाई बजाई लिए। और एक गीत भैया है बिटिया के ऊपर सुना जाए।
1: स्वागत है
2: स्वागत भैया।

0: या परिपाटी,
1: क्या बात है।
0: चलो मिलके सवारा जाए अपन देश यो भारत, जहाँ पर राम और रहमान दोनों के हवा डालत है महिमा।

0: जागे
1: और
0: दो छंद सुनाए थे के बाद
2: कि करो सहयोग एक दूसरे के भाई बंधु सूझबूझ से तरक्की आप आप आए जाई और बड़े बड़े काम बन जाई हैं एक पल माही घर द्वार हरियाली चारी ओर छाए जाई और एक एक उदाना से राशि घर माँ दिखात एक जुटता ही काम सगरे बनाए जाई और सहयोग के भावना सदा बनाए रहो बड़े बड़े काम सहयोग ही बनाए जाए और संघे शक्ति सर्वदा के मान सम्मान बढ़ा नारायण गूजे सब गली गली गाँव माँ और हो जाए एकजुट गई समाज केरी नई खुशहाली छाए जाई ठाव ठाव माँ और घर परिवार और समाज के सजी स्वरूप कबहू न हो लाग अलगाव माँ और लड़का जवान बूढ़ गई है मल्हार बैठ लागी चौपाल सदा निमिया के छाव माँ और एक गीत सुनाई थे सुना जाए हम रू

करब किसानी, घास सुखाए रही ख्यातन माँ कसक करी निगरानी, कट्टर देख दुपहरी टनके, कट्टर देख टुपहरी टनके, लाग

0: आज के लोक भाषा कवि गोष्ठी में हमारे बीच में महाराणा प्रताप सिंह राही भैया जो मुकुंदपुर गोंडा से आए रहे हैं, और हमारे बीच में भोलानाथ शर्मा पागल भैया जो गोसाईगंज लखनऊ से आए रहे हैं, और हम शिव किशोर तिवारी खंजन हैदर बाराबंकी से आए रहे। आज के लोक भाषा कवि गोष्ठी हम सब कैसा लाग, हमका सबका आप अपने SMS से, फोन से, पत्र से, जैसे भी चाहो आप हमका सूचित करो, और लोक भाषा कवि गोष्ठी के विषय में जरूर कुछ बताओ कि हमारी कवि गोष्ठी कैसी लाग।
1: भाई लोक भाषा कवि गोष्ठी बहुत नीक सुनवा अनुभव भैया, और इमा जो प्रतिभागी रहा है श्री महाराणा प्रताप सिंह राही भैया और भोलानाथ शर्मा भैया पागल और शिव किशोर।

0: नूपुर तिवारी खंजन भैया जिनके संचालन रहा है। तो इन सबका अति बढ़िया कवि गोष्ठी सुनाए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ी देर बाद मिला जाए पंचवाइन से खेती किसानी में।
1: ठीक।

0: देखो हाँ
1: रत्ना बहिनी,
0: हाँ अनु भैया,
1: देखो अपने पंचे भाई जो है यह समय अब खरीफ के फसल के तैयारी कर रहे हैं, तो हम पंचे जब कोनो फसल के तैयारी शुरू करी थे तो के लिए पहले ये जरूरी है कि अपने जो खेत में माटी है वह के जांच करा ली जाए कि उनमें कोनो पोषक तत्व के अगर कमी है तो वह पोषक तत्व का मिलायक है जरूरी अनुपात में है, जैसे कि आज जो फसल हम ले वाले हैं वह उत्पादन क्षमता पर कोनो प्रभाव न पड़े और हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले, कोनो प्रकार के हमें नुकसान न उठावे पड़े।
0: कहे का मतलब है कि मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन कर ली जो खेत में हम फसल लेवा चाहिए थे उसके हिसाब से। तो देखो खरीफ के बात कर रहे हो तो खरीफ में मक्का जो होते हैं तो खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक का है तो इसके बारे में जाना जाए और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर
1: परमेंद्र
0: सिंह भैया और जिनसे बतकही की हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो हम पंच जाने और पंच भाई बहनों जाने कि कैसे का कीन जाए।
1: आओ सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ में जहां मक्का उत्पादन की योजना बनाए हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से उप महानिदेशक डॉक्टर परमेंद्र सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां खरीफ में मक्का उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या कुछ संभावना है।
3: सबसे पहले किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मक्का के लिए विशेष रूप से उसकी खेती के लिए उत्तम जल निकास वाली जो है बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, कारण इस नाते से कि जो मक्का है वो बहुत ही कम पानी में उगती है, तो इसलिए मक्का के लिए ये जो बलुई दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी है इसकी आवश्यकता होती है।
2: डॉक्टर साहब उन्नत प्रजातियों का चुनाव महत्वपूर्ण है, तो जैसे कम दिन में तैयार होने वाला मक्का और वो भी संकर मक्का, संकुल मक्का, कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
3: अब जब हम इनकी उन्नत प्रजातियों की बात करते हैं तो 75 दिन से कम जो शंकर मक्का है इसमें विवेक शंकर मक्का है, विवेक शंकर मक्का 17, विवेक शंकर मक्का 27, विवेक शंकर मक्का 5 और विवेक शंकर मक्का 5 2005 में ये जो है ये दूसरा वाला जो रिलीज हुआ है और PNH2, जबकि संकुल में एक दायरा करके एक प्रजाति आती है ये जो है 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ ये देती है। 85 दिन से कम में जो संकर मक्का होते हैं उसमें प्रकाश है, JH3459 है, DHM है और S3342 है, ऐसे हैं। वहीं संकुल मक्का की बात करें तो पूसा संकुल मक्का 4, आजाद उत्तर, गौरव, मेधा, सूर्य, किरण और कंचन ऐसे हैं। जब हम 95 दिन से कम के मक्के की बात करें जो उसमें मालवीय संकर मक्का 2 है, HM4 है, Bio9637 है और DK701, ये जो प्रजातियां हैं ये 95 दिन से कम में पैदा होती हैं।
2: और संकुल में?
3: संकुल में जो है वो नवजोत है, नवीन है, श्वेता है, शक्ति है, ऐसी ये जो प्रजातियां हैं ये संकुल मक्का हैं। जब हम जो लेट लंबा समय लेती हैं 95 दिन से जो मक्का जो अधिक लेते हैं इसमें गंगा है, बुलंद है, PMH3 है, इसमें Bio9681 है, NK61 है, सीटेक एक मक्का है 2324 ऐसे करके, तो इनको जो है उगाएं ये।
2: और HQPM4 और HQPM5 भी है?
3: हाँ वो भी है, HQPM4 HQPM5 भी है। इसके अलावा जो सबसे जो कहा जाता है NMH 38 क्विंटल
2: रिकॉर्ड है।
3: हाँ रिकॉर्ड है इसका,
2: प्रति एकड़
3: का ये 38 का है। इसके अलावा एक है KMH8322, ये 105 से 110 दिन में ये होता है, इसका भी 38 कुंटल से 40 कुंटल का ऐसा ये इल्ड आता है।
2: डॉक्टर साहब प्रति एकड़ जहां बुआई करनी है तो बीज की मात्रा संकर की कितना लगेगी और संकुल की कितना लगेगी?
3: बीज की मात्रा इसकी जो है संकर मक्का की 7 से 8 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ होता है, वहीं जो उन्नत में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें बीज जो है वो

0: दे सकते हैं।
1: खेत का चुनाव, तो आपने कहा कि जल निकास वाली बलुई दोमट जमीन सबसे अच्छी है, खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
0: खेत की तैयारी में सबसे पहले भूमि का शोधन करेंगे। इसमें हम ट्राइकोड डर्मा जो है 2% में आता है, WP वेटेबल पाउडर में आता है। इसकी 1 kg मात्रा जो है 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद को मिला करके उसको हल्के पानी से हम छीटा देते हैं, उसको 8 से 10 दिन तक छाया में उसको हम सुखा देते हैं, और जब हम आखिरी जुताई करते हैं तो आखिरी जुताई में इसको हम खेत में मिला देते हैं।
1: यानी ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन करना?
0: हाँ, भूमि शोधन करते हैं। यदि दीमक हैं या और कोई कीट हैं,
1: सफेद गिरार,
0: सफेद कीट हैं, हाँ, सूत्रकृमि हैं, ये जो भी हैं, इनके लिए हम ब्लूबेरिया वेशियाना 1% WPA भी पाउडर फॉर्म में आता है, इसको 1 kg 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाकर हल्का पानी इसमें भी हम छीटा देते हैं और 8-10 दिन तक इसको छाया में सुखाते हैं। उसके बाद जो हम आखिरी जुताई कर रहे होते हैं तो इसको हम मिट्टी में इसको मिला देते हैं।
1: यानी जहाँ दीमक या अन्य भूमिगत कीटों की समस्या आती है मक्के में, वहाँ ब्यूबेरिया बैसियाना से भूमि शोधन करें किसान भाई बहन, और फफूंद जनित बीमारियों से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन करें। बीज शोधन में कौन सी आवश्यक बातें हैं?
0: बीज शोधन में कुल मिलाकर के हम थीरम से जो है 1 kg बीज को हम थीरम जो है 75% 2.5 ग्राम जो है पर केजी के हिसाब से, यानी 7 से 8 kg यदि हम ले रहे हैं तो लगभग 20 ग्राम के आसपास ये बीज लगेगा। या फिर मेटालैक्सिक होता है 35% यानी 35% ये WS में आता है, ये 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से इसको हम शोधित करके इसको हम छिड़काव करते हैं।
1: यानी थीरम 2.5 ग्राम या मेटालैक्सिल से बीज शोधन कर लें किसान भाई बहन। डॉक्टर साहब, खरीफ मक्का की बुआई का उपयुक्त समय क्या है?
0: खरीफ मक्का को मतलब बुआई का
1: 15 जून से 10 जुलाई के बीच,
0: लेकिन जितना जल्दी हम मक्का को हम बुआई कर दें, यानी बारिश आ रही है तो बारिश आने के तुरंत बाद हम मक्का की बुआई कर दें, क्योंकि जितना डिले हम मतलब देरी में बुआई करेंगे उतना ही हमारा इल्ड और उसके अलावा कीट का प्रकोप बढ़ेगा, रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। तो यदि मानसून की पहली बरसात हो रही है, जिसको हम प्री मानसून सावर भी कई बार बोलते हैं, प्री मानसून सावर भी यदि आता है तो हम उसकी बुआई कर सकते हैं।
1: और समय तो उपयुक्त चल ही रहा है बुआई का?
0: एकदम, ये समय पूर्णतया ये उपयुक्त समय चल रहा है।
1: अंतरण क्या होगा बुआई का?
0: इसमें लाइन से दूसरे लाइन की दूरी होती है वो 60 से 75 सेंटीमीटर की होती है। अब ये डिपेंड करता है मक्का की कौन सी प्रजाति है, लेकिन संकर मक्का है उसमें 75 के आसपास रखते हैं,
1: लगभग 2.5।
0: हाँ हाँ हाँ, वहीं पौधे से पौधे की दूरी जो है 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं।
1: फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे हो, कितना हो, कब कब हो?
0: उर्वरक प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो यदि सॉइल की टेस्टिंग करा लेंगे तो सबसे बढ़िया है,
1: यानी माटी की जांच।
0: हाँ, माटी की जांच, जो खेत की मिट्टी है उस खेत की मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि हम 5 से 6 टन यदि सड़ी गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं,
1: जब खेत की तैयारी,
0: हाँ, जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय दे दें
1: 50 से 60 कुंतल।
0: हाँ हाँ, 5 से 6 टन, हाँ, 50 से 60 कुंतल दे दें तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो है यदि हम इसमें रासायनिक खाद की बात करें तो देर से पकने वाली जो संकर एवं संकुल प्रजातियां हैं उसमें 48-24-24 यानी 48 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश ऐसे हम देते हैं। वहीं जो है शीघ्र पकने वाली यानी जल्दी जो पकने वाली प्रजातियां हैं उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम NP और 16 किलोग्राम जो है वो पोटाश देते हैं।
1: और देसी प्रजातियों में?
0: देसी प्रजातियों में वो जो है 32 नाइट्रोजन, 26 फास्फोरस और 16 केजी जो है वो पोटाश ऐसे हम देते हैं।
1: अब ये जो भी मात्रा है वो कब कब कितना कितना देना है?
0: देखिए, इस समय क्या है कि कई बार खाद की मात्रा देने का जो तरीका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार किसान जो है सोचते हैं कि हम उसको एक साथ ही दे दें या बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में दें, मतलब वो जो है कुल मिलाकर के वो खाद जो है वो नुकसान हो रहा है, आपका पैसा भी नुकसान हो रहा है, आपकी मेहनत भी नुकसान,
1: यानी फायदे की जगह नुकसान,
0: नुकसान हो रहा है। तो इसमें जो है हम यूरिया जो है आधार जब हम बुआई करते हैं जो है 33 kg यूरिया जो है हम शुरू में दे दें,
1: बेसल डोज में,
0: हाँ, जब हम बुआई कर रहे हैं। और DAP जो है हम 55 किलोग्राम दे दें पर एकड़ के हिसाब से, MOP जो है 80 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से दें। जो बची जो मात्रा है खाद की वो जो है हम 25 से 30 दिन बाद वो 33 kg जो बच रही है
1: यूरिया,
0: हाँ, जब ये जो पहली टॉप ड्रेसिंग यानी 25

0: 30 दिन के बीच में वो आती है उस समय दे दें, और दूसरा टॉप ड्रेसिंग 40 से 45 दिन के बाद आता है, तो हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का छिड़काव हम कर सकते हैं।
1: यानी नाइट्रोजन वाली खादों में जैसे यूरिया का स्प्लिट डोज बना दें, एक बेसल डोज और दो टॉप ड्रेसिंग।
0: हाँ हाँ जी।
1: और
0: जी।
1: जस्ता का भी प्रयोग कर?
0: हाँ, जस्ता का भी, वो भी जिसे मिट्टी की जांच हो जा रही है तो मिट्टी के जांच के अनुसार देते हैं, लेकिन यदि हम 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से हम जस्ता जिंक दे रहे हैं तो वो जो है वो बहुत ही वो फायदेमंद होगा।
1: और जो कम दिन वाली संकर प्रजातियां हैं या संकुल प्रजातियां हैं उनमें ये मात्रा कम हो जाएगी?
0: हाँ, निश्चित रूप से उनमें ये मात्रा कम हो जाएगी। इसमें आधार खुराक यानी कि जो अब हम शुरू में बुआई कर रहे हैं वो 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से देंगे
1: यूरिया
0: देंगे। हाँ, डीएपी वो हम 27 केजी पर एकड़ के हिसाब दे देंगे, और एमओपी जो है म्यूरेटा पोटास है 80 केजी पर एकड़ के हिसाब से देंगे। ठीक वैसे ही पहली जो टॉप ड्रेसिंग है जब हम यूरिया का छिड़काव करेंगे वो 25 से 30 दिन के बाद वो 25 कर देंगे, और जब जो दूसरा जो टॉप ड्रेसिंग है वो 45 से 50 दिन के बाद आता है तो हम उस समय कर देंगे।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन कैसे हो खरीफ मक्का में?
0: खरपतवारों के लिए देखिए दो तरीके का होता है, एक तो प्री इमरजेंस और एक पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस यानी कि मक्का के जमाने से पहले, यानी हम मक्का जिस दिन बो रहे हैं, बढ़िया तो यही होगा कि मक्का की बुआई के तुरंत बाद, यानी मक्का बुआई कर दे रहे हैं और तुरंत बाद एट्राजिन आता है 50 WP में, यानी 50 वेटेबल पाउडर होता है, इसको 500 से 600 ग्राम इसको हम लेते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसको 200 से 250 लीटर पानी में घोल करके इसका हम छिड़काव कर देते हैं, यानी बुआई के तुरंत बाद।
1: यानी प्री इमरजेंस अगर आप छिड़काव कर देते हैं बुआई के 24 से 72 घंटे के बीच में?
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 9110024 9110024 9110024।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: ये बहुत ही उचित समय है किसान भाई, लगभग कई जगह पे प्री मानसून सावर भी पड़ चुके हैं, तो अब हम लोगों को ये इस मक्का की बुआई में लग जाना है। बाकी किसी भी तरीके की जो तकनीकी सहायता है तो मैंने आप लोगों को मोबाइल नंबर ये जो दिया है इस पर आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं।
1: यानी जहां भी खरीफ में मक्का उत्पादन की योजना है तो किसान भाई बहन जो संकर प्रजातियां हैं, जो नई नई प्रजातियां जो अच्छी पैदावार दे रही हैं, उनका चुनाव करें, उनका स्वस्थ और प्रमाणित बीज ले आएँ और समय से बुआई करें। बुआई का समय चल रहा है। डॉक्टर परमेंद्र सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद
2: भाई। बहुत निकी तरह से हम पंचन का जानकारी दी कि खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक का है और कैसे की जाए, तो इके खातिन डॉक्टर परमेंद्र सिंह भैया का और जानकारी दिवाए खातिन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का, दोनों जन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचे थे अपने पंच भाई का सबका एक गौने सुनवा दी जाए?
3: हाँ बिल्कुल, सुनवा दो।
2: हाँ, खेमटा है, स्वर है राजेश त्रिपाठी रत्न भैया के, तो पंच भाई बहनों सुने और हम वो पंच सुने।
3: सुना जाए।

0: पंच भाई बहनी देखो, कल दिन है बुधवार और सबका रास्ता होते है कि कल जो है फोन इन सजीव फोन इन कार्यक्रम होते है हेलो किसान विमा जुड़ा चाहते हैं, तो जुड़े खातिर विषय जरूर सुन लें और वह विषय संबंधित प्रश्न करें ताकि समस्या का समाधान मिले।
1: बिल्कुल, अपने पंच भाई कल के विषय जान लें, खरीफ उत्पादन की तैयारी और उन्नत तकनीक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, यहाँ पर जानकारी दें विशेषज्ञ भैया डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र, अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, और प्रस्तुति और संचालन करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। अब फोन नंबर जल्दी से बता दो।
0: बिल्कुल, फोन नंबर वैसे तो सब पंच भाई बहन इनका पता है, लेकिन फिर वो एक ध्यान रखें कि कोड है 0522 और फोन नंबर है 2238825, यानी कि 2238825।
1: अब देखो जोन बहनी ये अपने कार्यक्रम के घड़ी कर रही इशारा और पंचन से ली जाए आज्ञा,
0: जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल

0: घटना स्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
1: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
3: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
2: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
4: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
6: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
5: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा

0: प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 50 रुपये निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रुपये में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
1: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले 4 दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में जलेबी फिल्म का ये गीत।

अब आइए सुनते हैं। प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आवाजें हैं अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर और शबाब साबरी की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ 8826224477।
2: तो श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी फिरोज फरीदी जी और आशिमा पत्रा जी। तो आज का कार्यक्रम हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ाएंगे।
3: दोस्तों, एक बार फिर हम सामाजिक विषयों पर बातचीत करेंगे, जीवन से संबंधित हम बातचीत करेंगे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान सफल जीवन में होना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में नाकामी हाथ लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। कभी कभी कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से निराश होकर के अपने जीवन ही को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कामयाबी और

0: कामें ये जिंदगी के दो पहलू हैं और ये हमारी जिंदगी में आते और जाते रहते हैं। हम इसे क्या सीख हासिल करते हैं या हम इस असफलता को किस प्रकार से अपनी जिंदगी में लेते हैं, ये चीज जो है वो मायने रखती है। हम इस पर बातचीत करेंगे।
1: सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने भाई बहनों से, अपने जवान बच्चों से बातचीत कर पाऊँ। और ये जो बात आपने बोली कि हम लोग हार जाते हैं, अपना लक्ष्य खो देते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये सोच गलत है। और इसका एक और भी बहुत से पहलू हैं और हमें अपनी सोच को चैलेंज करना है, बदलना है। आज ही आपसे जब बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले कि एक लड़का था जिसका नाम है अनुराग पाठक, वो 12वीं फेल था लेकिन उसने अपनी लगन से IAS क्लियर किया और आज वो एक IAS ऑफिसर है। क्या आप समझ सकते हैं, हमारा देश तो दीवाना है, हम सब IAS करना चाहते हैं, सारे माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे IAS ऑफिसर्स बने और हम ये, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं।
0: जी बहुत सही कहा कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में और जब हम जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत बार हमें सफलता मिलती है और बहुत बार हमें असफलताओं का सामना करना होता है। और अब जिस तरीके से आपने अनुराग पाठक का मिसाल दिया, ये हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, ये हम सब के लिए जो है उदाहरण हो जाए। बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हमारे सामने हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में असफलताओं का सामना किया लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ करके नहीं देखा लेकिन वो आगे बढ़ते हुए चले गए, असफलताओं से टकराते हुए, असफलताओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद जिंदगी में एक नए मुकाम को उन्होंने हासिल किया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए असफलता भी बहुत जरूरी है, असफल होने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। हमें समझ में आता है ठीक है ये चीज़ मेरे से फेल हो गई तो मुझे अब इसमें से क्या सीख मिली, कहाँ पे मेरी कमी थी, उसको कैसे ठीक करना है। कुछ लोगों को बिल्कुल होता है, जैसे हम श्योर अनुराग पाठक ने कहा होगा मुझे IAS ऑफिसर बनना है लेकिन मैं 12वीं फेल हूँ, तो उसने तरह तरह की रिसर्च करी होगी, समझा होगा कहाँ पर उसको वर्क करना है, कौन से एरिया उसके कमज़ोर है, कौन से एरिया में वो उसकी पढ़ाई अच्छी है, कहाँ पर वो बढ़ सकता है, और उसने उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए IAS क्रैक किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं यंग लोगों को ये कहना चाहूँगी, आपको अगर पक्का मालूम है कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये ज़रूरी, जैसे 12वीं की और ग्रेजुएशन इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है और बहुत अच्छा रहेगा, और मैं आप सबको अर्ज करना चाहूँगी आप सब ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए हैं। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपकी सैलरी अच्छी हो, आपकी फसल अच्छी हो, आपके माहौल अच्छा हो, आपका घर अच्छा, आपका फैमिली अच्छी, आपको एक अच्छे परिवार में आपकी शादी हो, कम से कम ग्रेजुएट तो होइए, आप गिव अप मत करिए। तो यहाँ तक जब ग्रेजुएशन का लेवल है वहाँ पर आपको एक अपना कोर्स करिकुलम पता है, अगर आपकी कमज़ोरी है आप ध्यान दीजिए किस एरिया में मैं कमज़ोर हूँ। और ज़्यादातर आप देखेंगे आपको सब कुछ आता है, हमारे हिंदुस्तानी लोग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उनका IQ भी बहुत हाई है, उनका EQ भी बहुत हाई है, इमोशनल क्वोशेंट। प्रॉब्लम पता क्या है, हम लेज़ी हैं, हम आलसी हैं और हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम लोग गिव अप कर देते कि नहीं चलो छोड़ो कभी और करेंगे। तो वो जो बात है जो आलस है या अपने अच्छे के लिए कुछ मेहनत करना ना करना, ये है आपको इसमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। अभी मैं एक लड़की को काउंसिल कर रही हूँ जो कि राजस्थान में है और उनकी शादी हुई और अभी उन्होंने 12वीं पास करी और बुरे नंबर नहीं है, 67% उनके नंबर आए लेकिन उनके साथ में एक बेबी भी हो गया, अचानक से उनकी शादी हो गई। अब वो मुझे ये कह रही हैं कि मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ और मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको ये मोटिवेट करा, नौकरी आपने अगर अभी कर ली, पैसे का एक दफ़ा आपको टेस्ट लग गया तो आप दोबारा पढ़ाई नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर आप चाहती हो आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी मिले, 25,000 से 50,000 से आपका स्केल शुरू या जितनी भी मिलती है और एक अच्छी इनकम हो, तो उसके लिए एक दफ़ा आप इंतज़ार करके ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए, साथ में आप कुछ नहीं छोटे बच्चे को संभाल रही हैं तो आप पार्ट टाइम कर लीजिए, और उसके बाद क्या है कि आप उस पार्ट टाइम में आप जॉब भी कर पाएंगी कोई 4 घंटे की 3 घंटे की और आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लेंगे, और उसके बाद जो आपके नौकरी के ऑप्शंस आएंगे वो कितने अच्छे होंगे, कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। तो ये बात उनसे कई दिनों से हो रही थी और उनको ये बात समझ में आई, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, बच्चा सिर्फ 4 महीने का है, तो उनको ये था कि मुझे नौकरी करनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको सबको ये कहना चाहती हूँ, आपकी जो भी परिस्थिति है, हमारी सरकार ने हमको इतने सारे ऑप्शन दिए, वो चाहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग

0: पढ़ें, ग्रेजुएट बनें, एमबीए करें, एमए करें, मास्टर्स करें, तो हमारे पास कोई कमी नहीं और पैसे कोई ज़्यादा फीस नहीं है, सब कुछ वर्कआउट हो सकता है। आप मन तो बनाइए, एक दो मन तो बनाइए, और उसके साथ साथ एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, और अनुशासन से आप इस काम को पूरा कर पाएंगे।
1: नौजवान दोस्तों, आप लोगों के लिए ये हमारी गुजारिश है, हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये प्रोग्राम हम आपके लिए बनाते हैं और ये सारी बातें हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए हम बना रहे हैं। जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते होते हैं या जब हम जॉब की तलाश में होते हैं, तो हमें बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है, और आपके लिए हम इस कार्यक्रम को खास करके बना रहे हैं कि आप जानें कि ज़िंदगी में हमें किस तरीके से जद्दोजहद करनी है, ज़िंदगी में किस तरीके से लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है आशमा जी कि हम ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, असफलताएं आती हैं, और असफलताएं जब आती हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम देखते हैं कि मेरा दोस्त जो था, मेरा साथी जो था, वो तो सफल हो गया, वो कामयाब होकर के आज अच्छे पोस्ट पर है या अच्छा बिजनेस वो कर रहा है, आज अच्छा स्थान समाज में उसको प्राप्त हो गया है, लोग अच्छी नज़र से उसको देखते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो गया, और ये बहुत बड़ी निराशा का कारण होता
0: बन जाता है जब हम अपने आसपास देखते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हर इंसान का सफ़र अलग है, हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी अलग है, और हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग हैं। अब आपके माँ बाप आपको कितना पढ़ा पाए, उनके पास कितने रिसोर्सेज थे, कितना था नहीं था, तो आज आप यहाँ पहुँचे, लेकिन क्योंकि हमारी भारत सरकार ने हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, हम लोग कोई भी कोर्स करके अपने आप को स्किलफुल, हम अपने स्किल बढ़ा सकते हैं। हम यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ पर हमें जो सीखना है हमारे कोर्स के लिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर 300 रुपये में कोर्स हो रहा है, 500 रुपये में कोर्स हो रहा है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए। आप पढ़ाई कीजिए थोड़ी सी अपने शाम को जा करके, और जब वो स्किल आप में आ जाता है, अपने बॉस के पास जाइए, सर मैंने ये भी सीखा है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने ये भी सीखा है, मेरा ये सर्टिफिकेट है और मैं अब ये काम कर सकता हूँ, बॉस से बात करिए, और आप देखेंगे क्योंकि आपने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, चाय में जितना गुड़ डालो उतनी मीठी होगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आप में अगर मिठास की कमी रह गई तो आप अपने माता पिता को मत कोसिए, मेरे माँ बाप तो कितने बेकार है, उसके माँ बाप को देखो वो कितने अच्छे, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, नहीं, ये अगर आप करेंगे तो बहुत गलत करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप गॉड से दिए गए हैं, परमेश्वर की वो आपका एक वरदान है, उनको ऐसे कोसना नहीं है, लेकिन आपको अब मेहनत करके अपने टैलेंट को बढ़ाना है, अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, और सब कुछ अवेलेबल है।
1: लेकिन कभी आशमा जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में एक बार रुक करके अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि हमने किसी गलत चीज़ का चुनाव तो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर लिया है जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है।
0: बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें अपने घर वालों के साथ बैठना चाहिए, अपने ऑफिस के कोलीग्स जो हमारा भला चाहते हैं उनके साथ, और जो हमारे कुछ खास दोस्त हैं और उनके साथ बैठ करके कुछ डिस्कशंस करने चाहिए। साथ में अगर हो सके हमें किसी ऐसे बड़े इंसान जो हमसे 4-5 साल बड़े हैं, या जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 4 साल स्टेप्स हमसे आगे हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, सर मैं क्या आपके साथ 10 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, सिर्फ 10 मिनट का, और आप, ये मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मेरी प्रोफेशनल करियर में, क्या आप मुझे गाइड करेंगे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है, मुझे और किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए था, किसी और नौकरी में, किसी और धंधे में होना चाहिए था, तो ये आप ऐसे कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं, पूछिए लोगों से, फीडबैक लीजिए, तो आपको मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हमारी आँखें बंद होती हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता और हम उसी चीज़ पर चले जा रहे हैं, हो सकता है हमें रास्ता बदलने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल सही, इसलिए कि हमारे सामने उदाहरण है कि बहुत सारे इंजीनियर थे या बहुत सारे डॉक्टर थे, और ज़िंदगी में शायद उन्होंने बहुत अच्छे इंजीनियर के रूप में काम नहीं किया या बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में काम नहीं किया, लेकिन जब वो IAS ऑफिसर बने या IPS ऑफिसर बने, उन्होंने लाइन अपनी बदली और उन्होंने तैयारी की और उसके बाद वो IAS के रूप में या IPS के रूप में वो चुने गए और उन्होंने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद अच्छे IAS ऑफिसर वो बने या अच्छे IPS ऑफिसर बने, और समाज को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ देने की कोशिश की। इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में अगर बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो तो हमें एक मिनट रुक करके अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, अच्छे सलाहकारों के साथ बैठ करके सलाह लेने की ज़रूरत है कि क्या हमने ज़िंदगी में जो चुनाव किया है वो सही है या नहीं है, इसलिए कि हमारे अंदर हो सकता है कि गुण कुछ और है करने का, क्वालिटी हमारे अंदर कुछ और है, कोई कला हम किसी और की

0: किसी कला में हम पारंगत हैं, लेकिन दुनिया को देख करके हम दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, भेड़ चाल चलना जिसको कहते हैं, कि सभी डॉक्टर बन रहे हैं तो सर चलो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, या माता पिता भी कहते हैं कि हमें हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आप अपनी लियाकत को देखिए, अपनी खूबियों को देखिए
1: और अपनी जो कमियां हैं उनको आप मानिए कि हाँ ये मेरी कमियां हैं और मेरी ये खूबियां हैं, उनको समझिए। और जब आप उन लोगों को ढूंढेंगे जो आपको सलाह देंगे, आप ये देखिएगा कि वो सचमुच में उस एरिया में एक्सपर्ट हैं और उन बातों को समझते हैं, वो आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे। उन लोगों के पास मत जाना जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ये मैं कहना चाहूंगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने कुछ नई बातें सीखी हों। मत घबराइए, मत डरिए, अगर ज़िंदगी में नाकामी हाथ लगती है, अगर ज़िंदगी में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो कभी भी आप हिम्मत न छोड़ें, कभी भी आप अपने हयाव को खोने न दें, बल्कि ज़िंदगी का मुकाबला करें। एक बार रुक करके अपने चयन पर, अपने चुनाव पर जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके बारे में भी गौर करें कि आपका चुनाव जो है सही है या नहीं। इसके लिए आप दूसरों से मशवरा लें और सलाह लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जिंदगी में सफलताओं को प्राप्त करेंगे, और आपके लिए हम अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं, सफल जिंदगी की कामना करते हैं।
2: और श्रोताओं, अब हम धन्यवाद देंगे अपने कुछ श्रोताओं का, जिनका नाम है कुलदीप कुमार कानपुर से, सुनीता मौर्य बहरेज से, शैलेंद्र कुमार जौनपुर से, राजेश पाठक गोंडा से, और संदीप यादव जी बाराबंकी से। हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिसनर मीटिंग में हिस्सा लिया, जी हाँ, और अपने विचार हम तक पहुँचाए। आप सबका धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को, अनुभवों को हमसे साझा करें। हमारा नंबर है 8826224477, जी हाँ 8826224477, और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो आप मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज के हिंदी कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शिव ओम अंबर का काव्य पाठ।
1: आज की बात कुछ स्फुट अशार से प्रारंभ कर रहा हूँ। पहली अभिव्यक्ति है, सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते, हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें, हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। दूसरी पंक्ति में कवि के स्वाभिमान और उसकी ज़िंदगी के ढंग का विवेचन हुआ है। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गज़लें, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। पिछले कुछ दशकों में हमारे साहित्यिक परिवेश में जो मूल्यों का क्षरण हुआ है, उसके ऊपर एक टिप्पणी देखिएगा कि अर्थ की लिप्सा कला की कुलवधू को बेअदब बाजार में बिठला रही है। अर्थ की लिप्सा कला की कुलवधू को बेअदब बाजार में बिठला रही है, फिर कहीं से दर्द के सिक्के मिलेंगे, ये हथेली आज फिर खुजला रही है। फिर कहीं से दर्द के सिक्के मिलेंगे, ये हथेली आज फिर खुजला रही है। और आज उम्र के जिस पड़ाव पर मैं हूँ, उस पे मुझे ये नई पीढ़ी से बोलने का अधिकार है। लफ्ज़ों में टंका

0: उत्कर्ष कहाँ है और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है, बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। जब राम पर चर्चा चली है तो स्वाभाविक रूप से राम के साथ जुड़े एक विशिष्ट व्यक्तित्व के ऊपर भी चर्चा हो जानी चाहिए, उसी से प्रणाम करना चाहिए। कभी मैंने लिखा था, कहाँ राजकीय भोग कहाँ चंद जूठे बेर, कहाँ राजकीय भोग कहाँ चंद जूठे बेर, दीन बंधु बैठ गए शबरी के पक्ष में। कहाँ राजकीय भोग कहाँ चंद जूठे बेर, दीन बंधु बैठ गए शबरी के पक्ष में, राजभवनों के कक्ष कक्ष में तलाशा गया, राजभवनों के कक्ष कक्ष में तलाशा गया, राजा रामचंद्र मिले मारुति के वक्ष में। राजभवनों के कक्ष कक्ष में तलाशा गया, राजा रामचंद्र मिले मारुति के वक्ष में, राजा रामचंद्र मिले मारुति के वक्ष में। और राम हमारी दृष्टि में क्या है, कवि समाज की दृष्टि में क्या है? राम हमारे लिए राष्ट्र है, राष्ट्र हमारे लिए राम है। उनका अनुचिंतन ललाम है, उनका अभिव्यंजन विराम है। राम हमारे लिए राष्ट्र है, राष्ट्र हमारे लिए राम है।
1: अभी आप सुन रहे थे शिव ओम अंबर का काव्य पाठ। हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत, हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की गाई गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ।

ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, खुशबू ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, हैरान हूँ तुझको देख के मैं क्या कहूँ तुझे।

0: संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की गाई गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं आतिफ असलम और साथियों की आवाज में रेस फिल्म का ये गीत।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर

0: दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा

0: तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation, and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister

अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है। जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का

0: कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को समाजी काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूथी और प्लेबैक्स गुलुकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबु सोरेन को बादजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत नैनो की वजह से कमजोर मॉनसून के इम्कानी असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबा बंदी और ज़िला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताज़ा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तज्जिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर अबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद

खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया, क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत, लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचमबरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयानात पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अब नाए हुरमुज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क़यादत ने जारी सिफारती मुज़ाकरात में अहम रियायतें दी हैं, जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज़ किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तिलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवाना एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली NCR में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई, क्योंकि खित्ते में तेज बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थीं। IMD के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्ज हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब IMD ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा।

0: बोल ऐसे है, दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ, ऐसे करके गाने
1: बिल्कुल
0: है। और कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ
1: जी, जल्दी से नाम ले लीजिए।
0: पहले है हमारे प्यारे प्यारे सिस्टर जिसका नाम है बबीता शर्मा जी, और है उसका नाम बसंती लाल सूर्यवंशी जी, अविनाश जी है, अमर सिंह साहू जी है, और पुरुषोत्तम कुमार जी फ्रॉम कश्मीर, और विजय सिंह लखेरा जी, और श्रीकांत जोशी जी फ्रॉम महाराष्ट्र, और है हमारे बहुत बहुत दिल के करीब दोस्त है जिसका नाम है प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो बहरहाल बातचीत को यही पे विराम देता हूँ, और सबको अंबुबा जी के ढेर सारे शुभकामना, क्योंकि आज अंबुबा जी मेला हो रहा है हमारे यहाँ पे, और सब भक्तों सज्जन मंडली उसमें आएंगे, मतलब बहुत एक धार्मिक वातावरण
1: जी,
0: वातावरण क्या कहे, मतलब हो जाएंगे, है ना
1: जी। तो चलिए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, आपने हमें फोन किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। थैंक यू मैम, थैंक यू।

0: साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी, जय सियाराम।
0: जय सियाराम, अपना परिचय दीजिए।
1: मध्य प्रदेश से देवीदास तिवारी बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी देवीदास तिवारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप?
1: मैडम जी सुन रहा हूँ और साथ में मेरे जो लोग बैठे वो भी सुन रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
1: मेरे साथ में बहुत सारे लोग बैठे हैं दुकान पे।
0: अच्छा, कौन कौन सुन रहे हैं आपके साथ?
1: वो भी सुन रहे हैं और मैं एक ढोलक बांटर हूँ।
0: अच्छा,
1: भजन कीर्तन में ढोलक बजाता हूँ मैडम।
0: अरे वाह,
1: भजन कीर्तन में ढोलक भी बजाता हूँ, दुकान चलाता हूँ।
0: जी किस चीज की दुकान चलाते हैं आप? हेलो, किस चीज की दुकान चलाते हैं आप?
1: जी दोनों आपको दिखाई देता है, फिर भी मैं दुकान चलाता हूँ।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आप आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: जी मुझे फिल्म का नाम तो मुझे पता नहीं है।
0: जी जी,
1: आकार मोहम्मद रफी
0: जी,
1: और गीत के बोले मेरे देश में पवन चली पुरवाई।
0: बिल्कुल, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी मैडम, सबको राम राम, जय सियाराम।
0: जी जय सियाराम, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आकाशवाणी लखनऊ से अपनी रेडियो साथी शिवानी वर्मा के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। और इस कार्यक्रम में हमसे बातें करने के लिए और हम तक अपने फरमाइशी गीत पहुंचाने के लिए डायल करिए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 0522-223-8825। तो चलिए कार्यक्रम में अब वक्त है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो, कौन बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना
0: जी। हेलो हेलो हेलो, श्रोताओं लगता है हमारे श्रोता से संपर्क टूट गया है। चलिए जब तक अगली कॉलर से जुड़ेंगे आइए सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों वक्त है हमारे आज के अगले कॉलर से जुड़ने का। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: विजय पाल यादव, ग्राम ललुआ, जिला लखीमपुर खीरी से।
0: जी विजय पाल यादव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप? कैसे हैं आप?
1: ठीक है दीदी
0: जी। और क्या
1: बताएं कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या काम करते हैं आप?
1: वही दीदी, जो सबसे मेहनत वाला काम होता है वही हम लोग कर ही पाते हैं, खेती किसानी वाला।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और घर में कौन कौन है आपके?
1: घर में दो बच्चे हैं और हम दो लोग हैं।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: गाना दीदी सुनवा दीजिए, प्रेम रोग का, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार।
0: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी।

0: साथियों चलिए अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और कौन बात कर रहे हैं?
1: पूनम बात कर रही हूँ कानपुर से। कैसी हैं मैम? बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम में, आज आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: पूनम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, हमारी आपसे पहली बार बात हो रही है, तो बताइए कैसी हैं आप?
1: मैम एकदम खुश हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड
0: हूँ। बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपको?
1: मैम बहुत अच्छा लगता है जब कॉल कार्यक्रम में लग जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हैं।
0: जी,
1: तो क्या बहुत
0: बात है?
1: अच्छा लगता है क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ इतना अच्छा केंद्र है कि हर कोई इस केंद्र से जुड़ना पसंद करता है और अच्छा भी लगता है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैम मैं भी प्रोग्राम करती हूँ रेडियो आरएन में।
0: अरे वाह,
1: मॉर्निंग प्रोग्राम करती हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है। चलिए जी
1: जी मैम, और अच्छा लगता है आप सभी श्रोताओं से जब बातें करती है ना, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं भी सभी श्रोताओं से बातें करती हूँ तो प्रेम स्नेह सब कुछ मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि आज गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: मैम गीत सुना दीजिएगा, मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी।
0: जल्दी से गुनगुनाइए।
1: मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको
0: बहुत अच्छा
1: है डर।
0: चलिए आपको जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त है हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, तो चलिए देखते हैं आज के आखिरी कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं श्री चंद्र ग्राम जलालपुर जिला बांदा से बोल रहा हूँ।
0: जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं?
1: किराने की दुकान है दीदी।
0: अच्छा, आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: कार्यक्रम हमारा रेडियो सुबह से शाम तक चलता ही रहता है, जब तक सोते नहीं।
0: अच्छा, तो आपका इन सब में से पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: पसंदीदा सब यही ज्यादा करके हेलो फरमाइश है और जानकारी भरे कार्यक्रम है जो आते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी,
0: जी। चलिए बताइए, क्योंकि समय बहुत कम है तो जल्दी से अपना गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: गाना लगा दीजिए, साजन मेरा उस पार है।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद शुक्रिया।

साथियों, देखिए आपसे बातें करते करते और आपकी फरमाइशी गीत सुनवाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला, और अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा करने लगी हैं कि हम आपसे कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति लें। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये म्यूजिकल सफ़र खूब पसंद आया होगा। तो फिर किसी रोज़ इसी समय इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे यानी शिवानी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति है।
1: खेल दर्पण।

0: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाली साइक्लिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी कि मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
0: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है, हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी। जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा बच्चों का पढ़ाई से, और पेरेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है
0: जी।
1: इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए, ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को

0: मेडल लाके देना ये ही जरूरी नहीं है।
1: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आप के अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
0: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स हैं। जो हमारा गेम है एकदम उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके, यानी कि 15-16 ईयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। गर्ल्स, हम ऐसा नहीं करते फाइट, जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की हम कराते हैं, तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए और अपना आत्मरक्षा के लिए, तो ये है ही अच्छी चीज़।
1: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग, तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
0: कि 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल्स हैं वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
1: तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
0: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता। तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीजें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छूट भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30-35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
1: मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो? आप अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डाइट होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूं कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
0: 5 साल
1: से जी। तो आप ही मान के चलिए, तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीज़ों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस, चॉकलेट, चिप्स वगैरह बच्चे खाते, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए, यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूँगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीज़ें उसमें आप उसको प्लस क्या करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप 2 किलो जो है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में, क्या नहीं खाना है, तो ये चीज़ें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
1: ट्रेनिंग की बात आती है, तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती हैं?
0: मैं हूँ क्योर्गी। हमारे अब जो ताइक्वांडो है ना, वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है, एक होता है क्योर्गी, एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योर्गी ही खेला है, तो मैं क्योर्गी ही उनको खिलाती हूँ। क्योर्गी मीन्स होता है फाइट
1: जी।
0: तो फाइट के लिए हमें जरूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इम्प्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट, यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहाँ उनको मारना है, कहाँ कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहाँ फाइट खेलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें, ये चीजें बताई जाती है।
1: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है, कुछ इससे, तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे
0: जी।
1: तो इस तरह की सुविधा यहाँ पर है?
0: जी जी, टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है, यहाँ पे हम लोग कराते रहते हैं। हमारे स्टेडियम में भी 1 साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारे यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी, कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
1: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
0: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
1: आजकल

0: जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस का भी है, सब एक ही कोच की
1: सब एक ही कोच की जिम्मेदारी है।
0: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप ज्यादातर रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
1: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी दो हाथ दो पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत इनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है, कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें जो होता है ना सुबह से सुबह 8 बजे से जैसे शुरू हो जाता है तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा इस तरीके से, तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को।
0: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे?
1: नहीं, वेट एक दिन
0: तो
1: पहले,
0: फिर घबराने कोई बात नहीं है। नहीं। अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने
1: की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे, सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस ग्लूकॉन डी जो है इलेक्ट्रोल्स वगैरह ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
0: टूर्नामेंट के दौरान जब आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
1: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का, कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है कुछ बच्चों ने वेट बढ़ाना होता है, तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंद ही कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। ये तो हो गया विंग से पहले की बात, अब आ जाती है फाइट से, तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं। जिस बच्चे की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रोल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीज़ें बोलते हैं, स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम गोलापार गए थे, यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप की चीज़ें, और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा इस तरीके की चीज़ें, तो बहुत सी चीज़ों का हमें प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ जाती है।
0: जी, साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं, अब आप मैं चाहूँगा कि बताएं कि कैसे आपका सफ़र एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया?
1: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था, फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है
0: जी,
1: हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला उसको सुनाई नहीं दिया दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है, तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें एटी राजीव सर हैं बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो हमारा करवाते हैं, सो उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो उन्होंने मोटिवेट किया, तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया उड़ीसा हो गया सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि ये अपडेट होना जरूरी रहता है, हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरी कर चुकी हूँ।
0: आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी अरेना चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत इजी?
1: मैं कहूँगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है।

0: है, मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं. रेफरी का अच्छा है, लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूँगी कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है.
1: जी, तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूँगा.
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही, शुरू से ही ताइक्वांडो में काफ़ी अच्छा रहा है. आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, वो भूषान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे. तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है. और काफ़ी टाइम बाद हमारा, फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था. हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पर चलती है, उनके भी काफ़ी सर हैं हमारे विजय बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है. और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो हैं आगे नाम रोशन करते रहें, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले अल्मोड़ा का नाम रोशन करें.
1: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है. एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं, खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है मैं कहूँगा. तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं. हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन बनता कोई एक ही है. तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं. जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है. तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं. और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है. तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ. बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है.
1: ये थी वंदना सिंह, और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही. आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं. तो अखिलेश, बात यहीं से शुरू करते हैं, आपकी नेशनल चैंपियनशिप की, जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात ये आती है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल प्लेयर रही हैं, तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का.
1: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफ़र आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं, और कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है. तो उसके लिए बस गेम के, अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है टेम्प्ररी, पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो. तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ़ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है. तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज़ में एक्सेल करना है, अच्छे से बेस्ट देना है. तो टफ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स, उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप थी. और पर बस पैशन था अंदर, और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है. मेहनत करते गए,
1: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया. उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहाँ पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता. तो ये मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस?
2: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैम्पियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए. तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैम्पियनशिप्स में, और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैम्पियन बना मैं उस टाइम पे. और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया, और उसके बाद कैंप मिला हम,

0: वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का।
1: जी
0: तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया की बेस्ट कोचेस के साथ।
1: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले, आप नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
0: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है। अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
1: वहाँ पर जब आपके कोचेस होते हैं, तो एक आप जब स्थानीय स्तर पे आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, आप जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेस अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली, जिन कोचेस से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
0: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर। जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारी एक अलग रिलेशन होता है जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे

0: जिन कोचेस से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
1: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर। जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारी एक अलग रिलेशन होता है जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे सब पता होता है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़े अलग कोचेस मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है। पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो बस इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कोच तो अपना कोच ही होता है लास्ट में।
0: जी, इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, आप जब पहली बार फाइट करने गए तो क्या था? कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं
1: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती है।
0: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
1: मेरी पहली फाइट चाइना से थी। हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो प्लेयर्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि जो और कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं। तो उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है, उनकी फैसिलिटीज़ क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे, क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती। भले टैलेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है
0: जी, पर मैं ये जानना चाहूँगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका चाइनीज़ था, तो आप कैसे उसकी फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको कि क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहाँ उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ?
1: वही गेम पढ़ना था उसका, सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया। वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहाँ पे एडवांटेज लिया, वहाँ से पॉइंट निकाला।
0: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहाँ पर?
1: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
0: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
1: चाइनीज़ अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था।
0: अच्छा,
1: कोरिया से मैं हार गया था।
0: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहाँ लैक करें?
1: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था।
0: अच्छा,
1: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा, हाइट में भी बहुत ज़्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
0: टेक्निक वाइज
1: आप मैं कहूँगा
0: टैकल कर रहे थे मतलब?
1: टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई।
0: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है?
1: अभी नेक्स्ट मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को। और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफ़ी सारी रेलवे, इन सब चीज़ों में जॉब मिल जाती है
0: इजीली।
1: हाँ, तो उसके साथ तुम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके से।
0: तो अभी फ़िलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
1: फ़िलहाल तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो अब कंपटीशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है।
0: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में, अब आप शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पर कोच?
1: विक्रम भंडारी सर,
0: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो क्या चीज़ें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
1: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती है, और अपने आप को और

0: पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
1: अच्छा, स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है, आपको उतनी देर रिंग में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
0: स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टेमिना बिल्ड होता है।
1: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया। माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
2: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
3: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी। और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं, लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की, और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं, फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
2: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहां कहां तक की यात्राएं की हैं?
3: अनुभव तो साइकिल में जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है, तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे, और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
2: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
3: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं, और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है और यही मैंने महसूस।
2: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके, और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
1: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल, इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
1: राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति थी, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं अंकित सिंह का ख्याल गायन। राग है बिहाग, विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, रचना के बोल हैं कैसे सुख, और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं अबहू लालन।

0: अभी आप सुन रहे थे अंकित सिंह का ख्याल गायन। राग था बिहाग, विलंबित गत एक ताल मैंने बद थी, रचना के बोल थे कैसे सुख, और द्रुत गत तीन ताल मैंने बद थी जिसके बोल थे अबहुलालन। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे सौरभ सिंह और हारमोनियम पर दिनकर द्विवेदी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ। 8700

0: 0000142424 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा।

सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।